103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर ये एफएम शिमला है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 8वीं तिथि, तदनुसार 29 मई 2026। इस समय सुबह के 5:58 और 28 सेकेंड हुए हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

0: 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। 6 बजने को है, आइए अब आपको लेकर चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनजातीय समुदाय के प्रति जनजातीय सुरक्षा मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के

0: तीन दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वो आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति दावणगेरे में यूनिवर्सिटी बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में हिस्सा लेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। मॉस्को में आयोजित इस बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को ये तय करना होगा कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कल अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ खेल और ओलंपिक की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार देश में विश्व स्तरीय खेल अवसंरचना और अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार कर रही है। अहमदाबाद वर्ष 2030 के कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी करेगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
1: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
0: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। भारतीय जनता पार्टी ने केवल सिंह ढिल्लो को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। 76 वर्षीय केवल ढिल्लो पंजाब भाजपा के पहले जाट सिख अध्यक्ष होंगे। दो बार कांग्रेस विधायक रह चुके केवल सिंह ढिल्लो वर्ष 2022 में भाजपा में शामिल हुए थे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल त्रिशा शर्मा दहेज हत्या मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला त्रिशा की सास और सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक दिन पहले उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। दिल्ली में वर्ष 2025-26 के दौरान 370 आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू किए गए हैं। दिल्ली सरकार ने कहा है इन केंद्रों का विकास और संचालन केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों और तय वित्तीय मानकों के अनुसार किया गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि राजधानी में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार पूरी पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र में मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमरीकी हवाई अड्डे पर हमला किया है। यह हमला उस समय हुआ जब अमरीका ने ईरानी ड्रोन मार गिराए और दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मुकाबला न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. Prime Minister Narendra Modi met the representatives of the Tribal Security Forum in New Delhi yesterday. In a social media post, Mr. Modi said their dedication to the tribal community is truly commendable. He stated that during the meeting, meaningful discussions were held on various topics related to the development of tribal communities and their empowerment. Union Home Minister Amit Shah held a meeting yesterday to review preparations for the Commonwealth Games

इस गणपति वंदना के बाद आइए अब आराधना करते हैं भोलेनाथ शिवशंकर की और उनसे ये प्रार्थना करते हैं कि हे भोलेनाथ, आपकी कृपा से मेरा हर दिन शुभ हो, मन में शांति, बुद्धि में सद्बुद्धि और हृदय में भक्ति बनी रहे, हर मुश्किल आसान हो जाए और आपके आशीर्वाद से मेरा जीवन खुशहाल हो जाए।

भक्ति रस से सराबोर कार्यक्रम हिमांजलि सुन रहे हैं आप हमारे साथ एफएम शिमला पर। आइए अब सुनते हैं माता की ये भक्ति भी।

भक्ति रस से सराबोर कार्यक्रम हिमांजलि सुन रहे हैं आप इस वक्त हमारे साथ एफएम शिमला पर। तो आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति।

आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी मंगल कामना के साथ भक्ति रस पर आधारित कार्यक्रम हिमांजलि में आज बस इतना ही। आप सुन रहे हैं FM शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं FM शिमला की एक और भक्तिमयी प्रस्तुति, मानस गान। गायन स्वर हैं लता मंगेशकर, पंडित जसराज और साथियों के संगीतकार हैं सतीश भाटिया। आइए सुनते हैं।

श्री रामचरितमानस का स्थान हिंदी में ही नहीं जगत के साहित्य में निराला है। ऐसा सर्वांग सुंदर श्रेष्ठतम काव्य के सभी लक्षणों से युक्त, साहित्य के सभी रसों से परिपूर्ण तथा काव्य कला की दृष्टि से सर्वोच्च कोटि का ग्रंथ अन्यत्र दुर्लभ है। प्रथम प्रकरण के रूप में प्रस्तुत है बाल कांड का प्रारंभिक श्लोक मंगलाचरण, जिसमें भक्त कवि ने सर्वप्रथम अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों की कर्त्री सरस्वती तथा मंगलकारी गणपति की वंदना की है। तत्पश्चात श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप पार्वती और शंकर की स्तुति की गई है। भक्त कवि की उक्ति है कि उसने अनेक पुराणों, वेद और शास्त्र से सम्मत आदि रामायण में वर्णित तथा अन्यत्र उपलब्ध राम कथा को अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत किया है। स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल मात नौती।

अभी आप सुन रहे थे मानस गान 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप सुन रहे हैं FM शिमला का प्रसारण। आइए अब सुनते हैं देशगान।

अभी आप सुन रहे थे देशगान 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप सुन रहे हैं FM शिमला। लीजिए अब पेश है FM न्यूज हेडलाइंस। नमस्कार, FM न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं पूनम भारद्वाज। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के दूसरे चरण का चुनाव कल शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। इस दौरान बम्पर वोटिंग हुई और मतदान 80% रहा। प्रदेश में अब तक हुए पंचायती राज चुनाव में ये सर्वाधिक मतदान है। दूसरे चरण के तहत प्रदेश की कुल 1276 पंचायतों में वोट डाले गए। दूसरे चरण में कुल्लू जिला में सर्वाधिक 86%, सिरमौर जिले में 85%, सोलन जिले में 84%, ऊना जिला में 80%, कांगड़ा व किन्नौर जिले में 76%, लाहौल स्पीति में 69%, हमीरपुर में 75%, बिलासपुर में 79%, चंबा 78% और मंडी व शिमला जिला में 81% मतदान ने अपना मताधिकार का प्रयोग किया। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के दूसरे चरण के लिए कल हुए मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा गया। खासकर बुजुर्ग मतदाताओं और पहली बार मतदान करने वाले युवाओं ने लोकतंत्र के इस महापर्व में जोरदार उत्साह दिखाया। पहले चरण की तरह दूसरे चरण में भी मतदान में महिलाओं की भागीदारी अधिक रही। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के लिए 30 मई को होने वाले मतदान के लिए सक्रिय चुनाव प्रचार कल दोपहर 3 बजे समाप्त हो गया। इसके बाद अब उम्मीदवार घर घर जाकर व्यक्तिगत रूप से मतदाताओं से वोट मांगकर अपनी अपनी जीत पक्की करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रदेश में तीसरी चरण में 1187 पंचायतों में प्रधान, उपप्रधान व सरपंचों का चुनाव होगा। कुल्लू जिला की लग घाटी की बड़ई बाग पीज सड़क पर कल एक टैक्सी वाहन के गहरी खाई में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से 3 महिलाओं की मौत हो गई और 9 अन्य घायल हो गए। घायलों में एक बच्चा और वाहन चालक शामिल है। ये लोग पंचायत चुनाव में वोट डालने के बाद शिरड़ मेला देखने जा रहे थे। नेता

0: दीपक जयराम ठाकुर ने कहा है कि पंचायती राज चुनाव में अपनी हार देखकर कांग्रेस पार्टी मैदान छोड़कर भाग गई है। मंडी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पंचायत चुनावों से इसलिए दूरी बना ली है क्योंकि उसे पहले ही अपनी हार का आभास हो गया था। इस अंक में इतना ही, नमस्कार।
1: सूचना, मनोरंजन, शिक्षा और विविध रंगों से परिपूर्ण पिटारा आकाशवाणी शिमला।

0: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज़ और डीटीएच पर आकाशवाणी शिमला एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर एफएम शिमला।
1: 7 बजने को है हिंदी में समाचार, अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। मॉस्को में आयोजित इस बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
3: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
2: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनजाति समुदाय के प्रति जनजातीय सुरक्षा मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति दावणगेरे में यूनिवर्सिटी ऑफ बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में भाग लेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में प्रस्तावित कॉमनवेल्थ गेम और ओलंपिक की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। श्री शाह ने कहा कि अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप खेल सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। अहमदाबाद वर्ष 2030 के कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी करेगा। भारतीय जनता पार्टी ने केवल सिंह ढिल्लो को पंजाब का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। 76 वर्षीय केवल ढिल्लो पंजाब भाजपा के पहले जाट सिख अध्यक्ष होंगे। 2 बार कांग्रेस विधायक रह चुके केवल सिंह ढिल्लो वर्ष 2022 में भाजपा में शामिल हुए थे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल त्विशा शर्मा दहेज हत्या मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला त्विशा की सास और सेवानिवृत्त जिला और सत्र न्यायाधीश हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक दिन पहले उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। दिल्ली में वर्ष 2025-26 के दौरान 370 आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू किए गए हैं। दिल्ली सरकार ने कहा है कि इन केंद्रों का विकास और संचालन केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों और तय वित्तीय मानकों के अनुसार किया गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि राजधानी में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार पूरी पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है।

0: पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा बढ़ा दी है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमरीकी हवाई अड्डे पर हमला किया है। ये हमला उस समय हुआ जब अमरीका ने ईरानी ड्रोन मार गिराए और दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। पिछले 3 दिनों में ये दूसरी बार है जब अमरीका ने ईरान पर कार्रवाई की है। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ₹103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:05 हुए हैं। ये समय है चिंतन का। आइए सुनते हैं प्रस्तुति डॉक्टर हुकम शर्मा की है।

ठाकुर मेघ सिंह बड़े प्रजाप्रिय और न्यायकारी जागीरदार थे। भगवान के विश्वासी भक्त थे। वे इतने साधु स्वभाव के थे कि बुरा करने वालों में भी भलाई देखते थे। भगवत कृपा और भगवान के मंगल विधान में उनका अटूट विश्वास था। ठाकुर मेघ सिंह के एक ही कुमार था, साजन सिंह। 16 वर्ष की उम्र थी। वो शील, सौंदर्य और गुणों का भंडार था। अभी 3 महीने पहले ही उसका विवाह हुआ था। भगवान के विधान से वो एक दिन घोड़े से गिर पड़ा और उसके मस्तक में गहरी चोट आई। थोड़ी देर के लिए तो वो चेतना शून्य ही हो गया, परंतु कुछ ही समय बाद उसको होश आ गया। यथासाध्य पूरी चिकित्सा हुई, पर घाव में कोई सुधार नहीं हुआ। होते होते घाव बढ़ गया और उसका जहर सारे शरीर में फैल गया। अब सबको निश्चय हो गया कि साजन सिंह के प्राण नहीं बचेंगे। साजन सिंह से भी ये बात छिपी नहीं रही। उसके चेहरे पर उदासी आ गई। ठाकुर मेघ सिंह पास बैठे विष्णु सहस्रनाम का पाठ कर रहे थे। उसे उदास देखकर उन्होंने हंसते हुए कहा, बेटा, तुम्हारे चेहरे पर उदासी क्यों है? अभी तुम मेरे पुत्र हो, मेरी जागीर के मालिक हो। तुम्हें मेरे कुंवर का पद मिला है। ये सब तुम्हारे गोपाल जी के मंगल विधान से ही हुआ है। अब उन्हीं के मंगल विधान से तुम साक्षात उनके पुत्र बनने जा रहे हो। अब तुम्हें उनके कुंवर का पद मिलेगा और तुम दिव्य धाम की जागीर के अधिकारी बनोगे। ये तो बेटा हर्ष का समय है। तुम प्रसन्नता से जाओ, मंगलमय प्रभु से मेरा नमस्कार कहना और ये भी कहना कि मेघ सिंह के आपके धाम में तबादले की कोई व्यवस्था हो रही है क्या? वैसे मुझे कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि मुझे तो सदा चाकरी में रहना है, चाहे जहां रखे। परंतु इतना अवश्य होना चाहिए कि आपकी चाकरी में हूं, मुझे इसका स्मरण सदा बना रहे। यहां के संयोग वियोग सब उन लीलामय के लीला संकेत होते हैं और होते हैं हमारे मंगल के लिए। इस बात का जिसको पता है, वो ना तो दुख के संयोग से दुखी होता है और ना सुख के वियोग से। उसे तो हर समय सभी संयोग वियोगों में, सभी दुख और सुखों में सदा अखंड सुख, अखंड शांति और अखंड तृप्ति का अनुभव होता है। तुम भगवान के मंगल से ही यहाँ आए और उनके मंगल संकेत से ही मंगल समय की चरण धूली प्रत्यक्ष प्राप्त करने जा रहे हो, इसमें जरा भी संदेह मत करो। संशयवान का ही पतन होता है। विश्वासी तथा श्रद्धालु तो हंसते हंसते प्रभु के धाम में चला जाता है। तुम श्रद्धा को दृढ़ता के साथ पकड़े रहो, विश्वास को जरा भी इधर उधर मत होने दो। यहाँ से जाकर तुम वहाँ उस अपरिसीमित आनंद को प्राप्त करोगे कि फिर यहाँ की सभी सुख चीजें उसके सामने तुम्हें तुच्छ दिखाई देंगी। रही कुंवरानी की बात, तो उसकी कोई चिंता मत करो। वो पतिव्रता है, यहाँ साधु भाव से जीवन बिताकर वो भी दिव्य धाम में तुम्हारे साथ ही श्री गोपाल जी के चरणों का पद प्राप्त करेंगी। विषयों का चिंतन ही पतन का हेतु होता है। फिर स्त्री पुरुष के विषय जीवन में तो प्रत्यक्ष विष सेवन होता है। प्रत्यक्ष नरक द्वारों में अनुराग हो जाता

है। अतएव ये पतन का निश्चय हेतु है। भगवान ने दया करके उन नरक द्वारों की अनुरक्ति और सेवा से कुंवरानी को मुक्त कर दिया है। ये परम भाग्यवती और साध्वी है, इसी से उस पर ये अनुग्रह हुआ है। वो तपोमय जीवन बिताएगी और समय पर भगवान के दिव्य धाम में तुमसे आकर मिलेंगी। तुम्हारी माता को तो भगवान के मंगल विधान पर अखंड विश्वास है ही। ठाकुर जी की इन सच्ची बातों का सज्जन सिंह पर बड़ा प्रभाव पड़ा। उसका मुखमंडल दिव्य आनंद की निर्मल ज्योति से उद्भासित हो उठा। उसके होंठों पर मधुर हंसी छा गई। उसका ध्यान भगवान गोपाल जी के मधुर श्री विग्रह में लग गया और उसके मुख से भगवान नाम का उच्चारण होने लगा। फिर देखते ही देखते उसके प्राण निकलकर दिव्य धाम में पहुंच गए।

अभी आप सुन रहे थे चिंतन, प्रस्तुति डॉक्टर हुकम शर्मा की थी। 103.7 MHz पर आप सुन रहे हैं FM शिमला का प्रसारण। आज है शुक्रवार, तो आइए अब सुनते हैं गांधी चर्चा। प्रस्तुतिकरण एक बार फिर डॉक्टर हुकम शर्मा का है।

नमस्कार। साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा में प्रस्तुत है महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग से धारावाहिक पाठ। आज आप सुनेंगे चौथे भाग का 28वां अध्याय। शीर्षक है उपवास।

जिन दिनों मैंने दूध और अनाज छोड़कर फलाहार का प्रयोग शुरू किया, उन्हीं दिनों संयम के हेतु से उपवास भी शुरू किए। मिस्टर किलनबेक इसमें भी मेरे साथ हो गए। पहले मैं उपवास केवल आरोग्य की दृष्टि से करता था। एक मित्र की प्रेरणा से मैंने ये समझा कि देह दमन के लिए उपवास की आवश्यकता है। चूंकि मैं वैष्णव कुटुंब में पैदा हुआ था और चूंकि माताजी कठिन व्रतों का पालन करने वाली थीं, इसलिए देश में एकादशी आदि व्रत मैंने किए थे, किंतु वे देखा देखी अथवा माता पिता को प्रसन्न करने के विचार से किए थे। ऐसे व्रतों से कोई लाभ होता है, इसे ना तो मैं उस समय समझता था न मानता ही था। किंतु उक्त मित्र को उपवास करते देखकर और अपने ब्रह्मचर्य व्रत को सहारा पहुंचाने के विचारों से मैंने उनका अनुकरण करना शुरू किया और एकादशी के दिन उपवास रखने का निश्चय किया। साधारणतः लोग एकादशी के दिन दूध और फल खाकर समझते हैं कि उन्होंने एकादशी की है, पर फलाहारी उपवास तो अब मैं रोज ही करने लग गया था। इसलिए मैंने पानी पीने की छूट रखकर पूरे उपवास शुरू किए। उपवास के प्रयोगों के आरंभिक दिनों में श्रावण का महीना पड़ता था। उस साल रमजान और श्रावण दोनों एक साथ पड़े थे। गांधी कुटुंब में वैष्णव व्रतों के साथ शैव व्रत भी पाले जाते थे। कुटुंब के लोग वैष्णव देवालयों की भांति शिवालयों में भी जाते थे। श्रावण महीने का प्रदोष व्रत कुटुंब में कोई ना कोई प्रतिवर्ष करता ही था, इसलिए इस श्रावण मास का व्रत मैंने रखना चाहा। इस महत्वपूर्ण प्रयोग का आरंभ टॉलस्टॉय आश्रम में हुआ था। वहां सत्याग्रही ही कैदियों के कुटुंबों की देखरेख करते हुए किलनबेक और मैं दोनों रहते थे। उनमें बालक और नौजवान भी थे। उनके लिए स्कूल चलाना था। इन नौजवानों में 4-5 मुसलमान थे। इस्लाम के नियमों का पालन करने में मैं उनकी मदद करता था और उन्हें बढ़ावा देता था, नमाज वगैरह की सहूलियत कर देता था। आश्रम में पारसी और ईसाई भी थे। इन सबको अपने अपने धर्मों के अनुसार चलने के लिए प्रोत्साहित करने का आश्रम में नियम था। अतएव मुसलमान नौजवानों को मैंने रोजे रखने के लिए उत्साहित किया। मुझे तो प्रदोष व्रत करना ही था, किंतु मैंने हिंदुओं, पारसियों और ईसाइयों को भी मुसलमान नौजवानों का साथ देने की सलाह दी।

मैंने उन्हें समझाया कि संयम में सबके साथ सहयोग करना स्तुत्य है। बहुतेरे आश्रमवासियों ने मेरी बात मान ली। हिंदू और पारसी मुसलमान साथियों का पूरा पूरा अनुकरण नहीं करते थे, करना आवश्यक भी न था। मुसलमान सूरज डूबने की राह देखते थे, जबकि दूसरे उससे पहले खा लिया करते थे, जिससे वे मुसलमानों को परोस सकें और उनके लिए विशेष वस्तुएं तैयार कर सकें। इसके सिवा मुसलमान जो सहरी यानी वो हल्का भोजन जो रमज़ान के दिनों में रोज़ा रखने वाले मुसलमान कुछ रात रहते कर लेते हैं, खाते थे, उसमें दूसरों के सम्मिलित होने की आवश्यकता ना थी। और मुसलमान दिन में पानी भी न पीते थे, जबकि दूसरे लोग छूट से पानी पीते थे। इस प्रयोग का एक परिणाम ये हुआ कि उपवास और एकाशन का महत्व सब समझने लगे। एक दूसरे के प्रति उदारता और प्रेम भाव में वृद्धि हुई। आश्रम में अन्नाहार का नियम था। ये नियम मेरी भावना के कारण स्वीकार किया गया था।

0: जबकि दूसरे लोग छूट से पानी पीते थे। इस प्रयोग का एक परिणाम ये हुआ कि उपवास और एकाशन का महत्व सब समझने लगे। एक दूसरे के प्रति उदारता और प्रेम भाव में वृद्धि हुई। आश्रम में अन्नाहार का नियम था। ये नियम मेरी भावना के कारण स्वीकार किया गया था। ये बात मुझे आभारपूर्वक स्वीकार करनी चाहिए। रोजे के दिनों में मुसलमानों को मांस का त्याग कठिन प्रतीत हुआ होगा, पर नव युवकों में से किसी ने मुझे उसका पता नहीं चलने दिया। वे आनंद और रसपूर्वक अन्नाहार करते थे। हिंदू बालक आश्रम में अशोभनीय ना लगने वाला स्वादिष्ट भोजन भी उनके लिए तैयार करते थे। इस प्रकार सहज ही आश्रम में संयम का वातावरण बढ़ा। दूसरे उपवासों और एकाशनों में भी आश्रमवासी सम्मिलित होने लगे और मैं मानता हूं कि इसका परिणाम शुभ निकला। सबके हृदयों पर संयम का कितना प्रभाव पड़ा, सबके विषयों में संयत करने में उपवास आदि ने कितना हाथ बंटाया, ये मैं निश्चयपूर्वक नहीं कह सकता। पर मेरा अनुभव ये है कि उपवास आदि से मुझ पर तो आरोग्य और विषय नियमन की दृष्टि से बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। फिर भी मैं ये जानता हूँ कि उपवास आदि से सब पर इस तरह का प्रभाव पड़ेगा ही, ऐसा कोई अनिवार्य नियम नहीं है। इंद्रिय दमन के हेतु से किए गए उपवास से ही विषयों को संयत करने का परिणाम निकल सकता है। कुछ मित्रों का ये अनुभव भी है कि उपवास की समाप्ति पर विषेच्छा और स्वाद तीव्र हो जाते हैं। मतलब ये है कि उपवास के दिनों में विषय को संयत करने और स्वाद को जीतने की सतत भावना बनी रहने पर भी उसका शुभ परिणाम निकल सकता है। ये मानना निराभ्रम है कि बिना किसी हेतु के और बेमन किए जाने वाले शारीरिक उपवास का स्वतंत्र परिणाम विषय वासना को संयत करने में आएगा। गीता के दूसरे अध्याय का ये श्लोक यहाँ बहुत विचारणीय है। विषया विनिर्वन्ते निराहारस्य देहिनः रसम वर्जः रसोपस्य परम दृष्टवा निवर्ते। उपवासी के विषय उपवास के दिनों में शांत होते हैं, पर उसका रस नहीं जाता। रस तो ईश्वर दर्शन से ही, ईश्वर प्रसाद से ही शांत होता है। तात्पर्य यह है कि संयमी के मार्ग में उपवास आदि एक साधन के रूप में हैं, किंतु ये ही सब कुछ हैं। और यदि शरीर के उपवास के साथ मन का उपवास ना हो तो उसकी परिणीति दंभ में होती है और वो हानिकारक सिद्ध होता है। साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा में अभी आप सुन रहे थे महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग से धारावाहिक पाठ। आज आपने चौथे भाग का 28वां अध्याय सुना। शीर्षक था उपवास। और आइए अब सुनते हैं गांधी जी का प्रिय राम भजन।
1: राम

0: आप सुन रहे थे गांधी चर्चा 103.7 मेगाहर्ट्ज पर. आप सुन रहे हैं FM शिमला का प्रसारण.
1: हिमाचल के युवाओं, अब सिर्फ सोशल मीडिया पर ओपिनियन देने का नहीं, वोट देने का भी वक्त आ गया है.
2: इस पंचायत इलेक्शन में 50 लाख से ज्यादा वोटर्स अपने मत का अधिकार इस्तेमाल करेंगे और हजारों फर्स्ट टाइम वोटर्स भी बनेंगे इस बदलाव का हिस्सा. 26 मई, 28 मई और 30 मई, याद रखिए ये तारीखें.
1: आपकी एक वोट आपके गाँव की सोच, विकास और लीडरशिप को तय करेगी. तो निकलिए घर से और बनिए जिम्मेदार नागरिक. पंचायत चुनाव 2026, वोट जरूर करें.

एफएम शिमला सुन रहे हैं आप 103.7 मेगाहर्ट्ज पर और एफएम शिमला पर अब वक्त है प्रोग्राम गुड मॉर्निंग शिमला का।

बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। ठीक वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास और छोटी छोटी कोशिशें भी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। जी हाँ, आप सुन रहे हैं FM शिमला 103.7 MHz पर और प्रोग्राम है वही पुराना, आपका अपना जाना पहचाना, गुड मॉर्निंग शिमला। तो माय डियर लिसनर्स, आज फिर यहाँ पर बातें होंगी प्यारी प्यारी ढेर सारी, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर आपके लिए प्ले होंगे कुछ लवली सॉन्ग्स भी। तो बस आपने कहीं नहीं जाना है, आप तो बस यूं ही रहिए हमारे साथ FM शिमला पर, और बस यूं ही सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और FM शिमला पर आज का ये सुहाना सफर आप इंजॉय करेंगे अपनी दोस्त रेडियो एंकर वीना नरवाल के साथ।

जी हाँ, FM शिमला सुन रहे हैं आप 103.7 MHz पर। और लिसनर्स, आज है 29 मई 2026, शुक्रवार का दिन है आज। और आइए जानते हैं आज की तारीख से जुड़ी कुछ ऐसी ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में जो कि आज के दिन को खास बनाती हैं। आज का दिन और आज की जो तारीख है वो कई वजहों से खास है। दरअसल 29 मई 1953 के दिन दो लोगों ने वो कारनामा करके दिखाया था जो कि एक सपना बना हुआ था। और आपको हम बताएं कि एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे ने आज ही के दिन बर्फ से ढकी हुई ऊंची और दुर्गम चोटी एवरेस्ट पर फतेह हासिल की थी। और हिलेरी को इस सफलता के लिए ब्रिटेन की महारानी ने नाइट की उपाधि दी थी। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो कि आज की तारीख को खास बनाती हैं, उनका जिक्र हम जरूर करेंगे अपने इसी प्रोग्राम में। बस आपने कहीं भी नहीं जाना है, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और एंजॉय कीजिए प्रोग्राम में नेक्स्ट लवली म्यूजिकल नंबर।

0: हिमाचल में फिर से सज गया है लोकतंत्र का महापर्व, पंचायत चुनाव 2026।
1: 26, 28 और 30 मई को तीन चरणों में होने जा रहे हैं पंचायत इलेक्शंस, जहां आपकी एक वोट तय करेगी आपके गांव का कल।
0: सड़क, पानी, सफाई, रोजगार और गांव के विकास से जुड़े फैसलों में आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है।
1: इस बार बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए और चुनिएगा ईमानदार, योग्य और जिम्मेदार प्रतिनिधि। हिमाचल पंचायत इलेक्शंस 2026, मजबूत पंचायत, मजबूत हिमाचल।
2: जी हाँ, FM शिमला पर इस वक्त हमारे साथ आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम गुड मॉर्निंग शिमला। और आज की तारीख के बारे में बात करें तो बहुत सारी घटनाएं सामने आती हैं। आपको हम बता दें कि 1658 में सामूगढ़ की लड़ाई में औरंगजेब ने दारा शिकोह को शिकस्त दी थी और दिल्ली के तख्त पर कब्जा कर लिया था। 1922 में एक्वाडोर को आज़ादी मिली थी, आज ही की तारीख में।

0: 1968 में दारा सिंह ने पहलवानी में विश्व चैंपियनशिप अपने नाम की थी। 1970 की बात करें तो सोवियत संघ ने भूमिगत परमाणु परीक्षण किया था और 1972 में मशहूर रंगकर्मी एवं भारतीय सिनेमा के महान कलाकार पृथ्वीराज कपूर का निधन हुआ था। इसके अलावा 1985 में यूरोपीय फुटबॉल कप के दौरान दो टीम के प्रशंसकों के बीच हुई झड़प में 39 लोगों की मौत हो गई थी। आज की तारीख में कई बड़े दिग्गज सेलिब्रिटीज और लोगों का जन्म हुआ, उनके बारे में भी हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन पहले आप सुनिए ये संदेश।
1: हिमाचल प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण हेतु वचनबद्ध है, आइए सुनते हैं माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का संदेश।
2: नमस्कार। विश्व पर्यावरण दिवस हमें प्रकृति के संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास करवाने का महत्वपूर्ण अवसर है। हिमाचल प्रदेश को प्रकृति ने सुंदर पहाड़, साफ पानी और शुद्ध हवा का अनमोल उपहार दिया है। आइए हम सब मिलकर अपने पर्यावरण को स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित बनाने का संकल्प लें। पेड़ लगाएं, पानी बचाएं और प्रकृति की रक्षा में अपना योगदान दें। स्वस्थ पर्यावरण ही आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। आइए प्रकृति से प्रेम करें और हिमाचल को हरियाली और स्वच्छता का आदर्श बनाएं। जय हिंद, जय हिमाचल।
3: हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जनहित में जारी।
0: जी हाँ, आपको हम बता दें कि 1981 में भारतीय फिल्म अभिनेता एजाज खान का जन्म आज ही की तारीख में हुआ था। और इसके अलावा भारतीय फिल्म अभिनेता और संगीतकार श्रीनाथ भासी का जन्म भी आज की तारीख में हुआ था 1988 को, जो कि मलयालम फिल्मों में नजर आते हैं। और आपको बता दें कि 1988 में भारतीय टेलीविजन की अभिनेत्री सुरभि ज्योति का भी जन्म हुआ था, जिन्हें कि आपने कबूल है सीरियल में जरूर देखा होगा। तो ये कुछ ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं हैं, ऐसी कुछ खास बातें हैं जो आज की तारीख से जुड़ी हैं और आज की तारीख को खास बनाती हैं। और ये बातें हमारी जानकारी में भी इजाफा करती हैं, अपने इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो इस तरह की बातें, इस तरह की जानकारियां और इसी तरह की खास इन्फॉर्मेशंस हम आपके लिए लेकर आते हैं। और साथ में एंटरटेनमेंट भी हमारे इस प्रोग्राम में रोज़ाना आपके लिए हम लेकर आते हैं, इसलिए शायद ये प्रोग्राम जो है आपका पसंदीदा है। तो चलिए जी, आपके पसंदीदा इस प्रोग्राम में अब सुनते हैं एक और लवली सॉन्ग सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में।

0: गांव की पहचान होती है उसकी मजबूत पंचायत से, और पंचायत मजबूत बनती है आपके एक वोट से।
1: क्योंकि ईमानदारी और बिना किसी के प्रभाव में आए दिए गए आपके वोट ही तय होते हैं गांव, और बनती है सड़क, पानी, स्वच्छता और रोजगार संबंधी नीतियाँ।
0: इसीलिए 26 मई, 28 मई और 30 मई को होने वाले पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर अपनी भागीदारी निभाएं।
1: अपने परिवार और गांव वालों को भी जागरूक बनाएं और 100% मतदान के संकल्प को हासिल करने का लक्ष्य बनाएं।
0: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।
2: जी हाँ लिसनर्स, एफएम शिमला पर इस वक्त हमारे साथ गुड मॉर्निंग शिमला प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। जी हाँ, समस्याएं, परेशानियां, दिक्कत और तकलीफें हर किसी की लाइफ में होती हैं। ऐसा कोई शख्स नहीं है जिसे कोई परेशानी ना हो, कोई समस्या ना हो, लेकिन समस्याओं के बारे में सोचते रहने से उसका समाधान नहीं मिलता है, बल्कि समस्या और बढ़ जाती है। जी हाँ, समस्या के बारे में सोचने पर बहाने मिलते हैं और समाधान के बारे में सोचने पर रास्ते मिलते हैं। ज़िंदगी कभी भी आसान नहीं होती, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। और अच्छा वक्त कभी नहीं आता, बल्कि वक्त को अच्छा बनाना पड़ता है। तो बस आप भी कोशिश कीजिए वक्त के साथ चलने की, वक्त के मुताबिक ढलने की और ख़ुद को थोड़ा सा बदलने की। चेंजेस को एक्सेप्ट कीजिए, नई नई चीज़ों को अपनाना सीखिए।

0: खुद में विश्वास जगाइए और अपने सपनों को पूरा कीजिए बिना रुके बिना थके।
1: नींद के बादलों के पीछे है मुस्कुराता हुआ कोई चेहरा, चेहरे पर
0: आप सुन रहे हैं FM शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: और दो आंखें हैरान हैरान सी,

मुलाकात एक हसीन लम्हा, झील का ठहरा ठहरा सा पानी, पेड़ पर चहचहाती एक चिड़िया,

चलते चलते प्रोग्राम के आखिर में चलिए मौसम का भी जिक्र कर लेते हैं। तो माय डियर लिसनर्स, मौसम का जो मिजाज है वो इन दिनों काफ़ी गर्माया हुआ है और यकीनन प्रदेश के हर एक इलाके में गर्मियां जो हैं वो पूरे जोरों शोरों से हावी हैं इन दिनों, और पहाड़ी इलाके भी इस गर्मी से अछूते नहीं रहे हैं। जो लोग बाहर से घूमने के लिए हिमाचल के पहाड़ी इलाकों में आ रहे हैं उन्हें भी आजकल यहाँ पर गर्मियाँ देखने को मिल रही हैं। हालांकि हमारे पहाड़ी इलाकों में क्लाइमेट जो है वो नेचुरली काम रहता है, नेचुरल एयर जो है यहाँ पर वो तेज़ गर्मी से कुछ राहत ज़रूर देती है, लेकिन फिर भी आपको अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, लगातार पानी पीते रहिए, छाता साथ में ज़रूर लेकर जाइए घर से बाहर अगर जा रहे हैं तो, और साथ ही साथ मौसमी फल आप खा सकते हैं जिससे गर्मी का असर कुछ कम हो सके। और इसके अलावा हमारे साथ आप बस यूं ही सुनते जाइए FM शिमला 103.7 MHz पर, और अब इंजॉय कीजिए आज के इस प्रोग्राम का ये लास्ट म्यूजिकल नंबर।

0: तो लिसनर्स, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग शिमला में आज बस इतना ही। अब से कुछ देर बाद समाचार प्रभात के लिए आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र हम आपको लेकर चलेंगे 8:30 पर। एफएम न्यूज़ हेडलाइंस आप सुनेंगे हमारे साथ, 8:32 पर लोक संगीत, 8:45 पर फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं, और 9:30 पर आपके लिए हम लेकर आएंगे आपका पसंदीदा प्रोग्राम कुदरत के रंग, और 10:00 हमारे साथ चंद दिलकश गीतों के साथ सुनना ना भूलेगा प्रोग्राम संगम। इसके अलावा भी बहुत सारे एंटरटेनिंग प्रोग्राम्स हमारे पास हैं आपके लिए, तो बस कहीं नहीं जाना है आपने, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और रहिए हमारे साथ यूं ही शिमला एफएम पर। और फिलहाल एफएम शिमला पर वक्त हो चला है एफएम न्यूज हेडलाइंस का।
1: नमस्कार, एफएम न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं पूनम भारद्वाज। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिक्षा विभाग को राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों की स्थापना में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने शिमला में कहा कि सरकार प्रत्येक विधानसभा में कम से कम एक ऐसा स्कूल स्थापित करने का प्रयास कर रही है जिससे दूर दराज क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित की जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महीने के आखिरी रविवार यानी 31 मई को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपना विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज़, DD न्यूज़, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। आकाशवाणी के द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण किया जाएगा। शिमला के गेटी थिएटर में 8 से 12 जून तक अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव 2026 के तहत रंगमंच उत्सव का भी आयोजन किया जाएगा। उपायुक्त जिला शिमला अनुपम कश्यप ने कहा कि ये आयोजन हिमाचल की सांस्कृतिक विरासत, लोक कला और रंगमंच परंपरा को बढ़ावा देने का महत्वपूर्ण मंच बनेगा। उन्होंने लोगों से बड़ी संख्या में कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है। शिमला शहर के कॉलेजों में 1 जून से दाखिलों के लिए आवेदन शुरू होंगे। शहर के सभी कॉलेजों ने स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रक्रिया का शेड्यूल जारी कर दिया है। BA, BSc, BCom और BVoc प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश प्रक्रिया 1 जून से शुरू होकर 19 जून तक चलेगी। छात्रों की प्री एडमिशन काउंसलिंग 13 से 19 जून तक होगी और प्रथम मेरिट सूची 20 जून को जारी की जाएगी। प्रदेश भाजपा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा एक बार फिर आदर्श चुनाव आचार संहिता का कथित उल्लंघन करने पर चुनाव आयोग से उनकी शिकायत की है। भाजपा मीडिया संयोजक करण नंदा ने राज्य के मुख्य निर्वाचन आयोग को भेजी शिकायत में कहा है कि मुख्यमंत्री ने 27 मई को शिमला जिला के नेरवा में स्कूल के लिए 5 करोड़ रुपए की लागत से भवन निर्माण की घोषणा कर आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया है। इस अंक में इतना ही, नमस्कार।
2: सूचना, मनोरंजन, शिक्षा और विविध रंगों से परिपूर्ण पिटारा आकाशवाणी शिमला।

0: आकाशवाणी शिमला FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर FM शिमला जन जन की वाणी ये है आकाशवाणी।
1: 8 बजने को है समाचार प्रभात के लिए आइए।
2: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों पर केंद्र की उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का आह्वान किया, कहा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए। एयर इंडिया ने पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच इसराइल के लिए अपनी उड़ानें जुलाई के अंत तक स्थगित की। और आईपीएल क्रिकेट में आज न्यू चंडीगढ़ में दूसरे क्वालिफायर में राजस्थान रॉयल्स का सामना गुजरात टाइटंस से। और अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अवैध घुसपैठ और अन्य अस्वाभाविक कारणों से होने वाले कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता वाली समिति 1 वर्ष में अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर घुसपैठिए की पहचान कर उसे देश के बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है।
3: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसांख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
1: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की और कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद स्थिति बदली है। उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सराहना करते हुए कहा कि सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 7 दिनों में 600 हेक्टेयर जमीन BSF को सौंप दी गई।
3: भाजपा बंगाल सरकार ने डिटेंशन सेंटर बनाए हैं मगर हम सब लोग चाहते हैं कि जो घुसपैठ कर अवैध तरीके से आए हैं वो अपने आप जहां से आए हैं वहां वापिस चले जाए। अगर वो अपने आप चले जाते हैं तो बंगाल सरकार भी उन पर कोई केस नहीं करेगी, जाने के लिए उनकी सहायता भी करेगी।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन कच्छ के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हरामी नाला और खाड़ी क्षेत्रों का दौरा करेंगे। ये क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। इस दौरान गृह मंत्री सीमा सुरक्षा बल के सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीमा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। श्री शाह सीमा चौकी G7 का उद्घाटन करेंगे और BSF के जवानों से मुलाकात करेंगे। श्री अमित शाह का पिछले 6 महीनों में कच्छ का ये दूसरा दौरा है। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।
4: आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक है। राष्ट्रपति पुतिन ने हाल ही में इसे बहुत ही प्रभावशाली ढंग से रेखांकित किया है। उन्होंने महसूस किया है कि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सभी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों को ध्यान देने की जरूरत है। ये मानवता के सभी मूल्य

0: पर प्रहार करता है। भारत खुद ही इस प्रायोजित आतंकवाद का शिकार रहा है। अप्रैल 2025 में पूरी दुनिया ने जम्मू कश्मीर में 26 निर्दोष नागरिकों की जघन्य हत्या देखी है।
1: श्री डोभाल ने पश्चिम एशिया की स्थिति का उल्लेख करते हुए होर्मुज, जलडमरू मध्य और लाल सागर जैसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों में व्यापार की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने पर भी बल दिया। इस दौरान उन्होंने रूस के सुरक्षा परिषद सचिव सर्गेई शोइगू से भी मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए नए प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति की है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को पार्टी का दिल्ली इकाई अध्यक्ष नियुक्त किया है। डॉ अर्चना गुप्ता को हरियाणा भाजपा अध्यक्ष और श्री केवल सिंह ढिल्लो को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री अभिषेक देवराय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इन नियुक्तियों के साथ ही श्री नवीन ने राज्यों और राष्ट्रीय स्तर पर नए पदाधिकारियों के चयन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केरलम में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हारलेकर आज विधानसभा को संबोधित करेंगे। ये 10 वर्षों बाद केरलम में नई यूडीएफ सरकार का पहला नीति संबोधन है। राज्यपाल के संबोधन के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाएगी। सदन राज्यपाल के संबोधन पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए 1 जून को एकत्रित होगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल त्विशा शर्मा हत्या मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला त्विशा की सास और सेवानिवृत्त जिला और सत्र न्यायाधीश हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: भोपाल में एक्ट्रेस त्विशा शर्मा की मौत के मामले में सीबीआई ने कल रिटायर्ड जज और त्विशा की सास गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया। करीब 7 घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई ने ये कार्रवाई की है। आज उन्हें सीबीआई कोर्ट में पेश किया जाएगा। गिरफ्तारी से एक दिन पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी थी। कोर्ट का कहना था कि मामले की गंभीरता और सबूतों को देखते हुए उन्हें राहत नहीं दी जा सकती। 12 मई की रात भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में त्विशा की संदिग्ध हालत में मौत हुई थी। ससुराल पक्ष इसे आत्महत्या बता रहा है, जबकि मायके वालों ने पति और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
3: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
5: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
3: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति दावटगेरे में यूनिवर्सिटी बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में भाग लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। आज दौरे के दूसरे दिन वे विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। दौरे के पहले दिन देहरादून स्थित पार्टी कार्य

0: कार्यालय में राज्य मंत्री समूह और कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण एयरलाइंस को महंगे ईंधन और हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे परिचालन लागत बढ़ गई है। उधर उड़ानें बंद होने से इसराइल में रह रहे 40,000 से अधिक भारतीयों की चिंता बढ़ गई है। सीमित उड़ान विकल्पों के कारण यात्रा खर्च भी काफी बढ़ गया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमरीकी हवाई अड्डे पर हमला किया है। ये हमला उस समय हुआ जब अमरीका ने ईरानी ड्रोन मार गिराए और दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। पिछले 3 दिनों में ये दूसरी बार है जब अमरीका ने ईरान पर कार्रवाई की है। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से मुकाबला खेलेगी। राजस्थान रॉयल्स ने एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर दूसरे क्वालिफायर में जगह बनाई, जबकि गुजरात टाइटंस पहले क्वालिफायर मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से हार का सामना करना पड़ा। 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय महिला टीम ने 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। पहले मैच में भारत ने इंग्लैंड को 38 रन से हरा दिया। ये मुकाबला चेम्सफोर्ड स्थित काउंटी क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने चेतावनी दी है कि अगले 5 वर्षों में वैश्विक तापमान रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में बादल गरजने और बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। कल रात राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में हुई बारिश ने उमस और भीषण गर्मी से राहत दिलाई। विभाग के अनुसार आज बिहार, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में तेज हवाएं चलने का अनुमान है। छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और कर्नाटक में भी इसी तरह का मौसम रहेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
1: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान ने CBSE प्रकरण में शिक्षा मंत्री के बयान को प्रमुखता दी है। समस्याओं का समाधान करेंगे, दोषियों को नहीं बख्शेंगे। राजस्थान पत्रिका ने 21 जून को होने वाली नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों पर लिखा है, सरकार सख्त, पहली बार सेना पहुंचाएगी नीट के पेपर, हालांकि अभी इस पर अंतिम फैसला होना बाकी है। अमर उजाला ने कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन को अहमियत दी है, सिद्धरमैया ने छोड़ी मुख्यमंत्री की कुर्सी, कर्नाटक में अब शिव कुमार का होगा राज। दैनिक ट्रिब्यून ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को प्रथम पृष्ठ पर दिया है, ट्रॉमा केयर का अधिकार जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग। न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को 3 महीने के भीतर आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए हेल्पलाइन नंबर 112 पर शुरू करने और एक प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करने का निर्देश दिया है। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर सीमा सुरक्षा का विश्लेषण किया है। पत्र लिखता है, आज भी सीमा पर भारत को अक्सर घुसपैठ और आतंकी हमलों का सामना करना पड़ता है। इसकी बड़ी वजह सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था के तार और निगरानी तंत्र का अपेक्षित स्तर पर मजबूत न होना माना जाता है। दैनिक जागरण ने मौसम में हुए बदलाव पर लिखा है, तेज हवा और वर्षा ने तोड़ा गर्मी का गुरूर। नवभारत टाइम्स ने पद्मश्री से सम्मानित मशहूर शायर बशीर बद्र के निधन की खबर प्रथम पृष्ठ पर दी है, और फिर जिंदगी की शाम हो गई, थम गया अल्फाज का जादू, अलविदा बशीर बद्र। दैनिक भास्कर ने हार्वर्ड के एक शोध को विशेष खबर बनाया है, जीन क्लॉक बताएगी किस उम्र में थमेगी जिंदगी।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों पर केंद्र की उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का आह्वान किया। कहा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए। एयर इंडिया ने पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच

103.7 मेगाहर्ट्ज पर 8:30 हुए हैं। लीजिए पेश हैं एफएम न्यूज हेडलाइंस। नमस्कार, एफएम न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं पूनम भारद्वाज। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा कल 30 मई को जिला बिलासपुर के विजयपुर में पंचायत चुनाव में अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी स्वदेश ठाकुर ने बताया कि नड्डा राजकीय प्राथमिक पाठशाला विजयपुर स्थित अपने बूथ पर परिवार सहित मतदान करेंगे। कल पंचायतीराज संस्थाओं के तीसरे और आखिरी चरण का मतदान होगा। ये चुनाव सुबह 7 बजे शुरू होगा, जो दोपहर बाद 3 बजे तक चलेगा। गोविंद सागर और कोल डैम जलाशयों में 16 जून से 15 अगस्त तक मछलियों के पकड़ने पर पूरी तरह से रोक रहेगी। मत्स्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस दौरान मछली का शिकार करने की अनुमति नहीं होगी। विभाग के अनुसार प्रतिबंध का उद्देश्य मछलियों की प्राकृतिक प्रजनन प्रक्रिया को सुरक्षित रखना और जलाशयों में मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देना है। तिब्बती धर्म गुरु दलाई लामा के 90वें जन्मदिन को समर्पित 3 दिवसीय तिब्बती सांस्कृतिक उत्सव कल धर्मशाला में शुरू हुआ। इस मौके पर निर्वासित तिब्बत सरकार के राष्ट्रपति पेम्पा सेरिंग ने कहा कि इस सांस्कृतिक उत्सव का उद्देश्य भारत के लोगों को तिब्बत के इतिहास, संस्कृति और उसके भू राजनीतिक महत्व से अवगत करवाना है। ईद उल अजहा यानी बकरीद का पर्व कल प्रदेश भर में उत्साहपूर्वक और भाईचारे के साथ मनाया गया। इस मौके पर मुस्लिम समाज के लोगों ने ईदगाहों में जाकर ईद की नमाज अता की और एक दूसरे को मुबारकबाद दी। इस दौरान लोगों ने अमन, शांति और खुशहाली की दुआ भी मांगी। राजधानी शिमला के ईद की मुख्य नमाज ईदगाह मैदान में अता की गई। प्रदेश में पंचायतीराज संस्थाओं के दूसरे चरण का चुनाव कल शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। इस दौरान बम्पर वोटिंग हुई और मतदान 80% रहा। प्रदेश में अब तक हुए पंचायतीराज चुनाव में ये सर्वाधिक मतदान है। दूसरे चरण के तहत प्रदेश के कुल 1276 पंचायतों में वोट डाले गए। इस अंक में इतना ही। नमस्कार।

एफएम शिमला पर आइए अब सुनते हैं लोक संगीत कार्यक्रम। ज्योति वर्मा की आवाज में आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला लोक।

अमरनाथ शर्मा की आवाज़ में अभी आपने ये लोकगीत सुना। कार्यक्रम के अंत में आइए अब सुनते हैं निम्मो देवी की आवाज़ में ये लोकगीत।

कार्यक्रम के अंत में आपने सुना नेमो देवी का गाया हुआ ये लोकगीत। आप सुन रहे हैं एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए पेश है फिल्म संगीत।

गीत और संगीत का ये सुहाना सफ़र आप इंजॉय कर रहे हैं हमारे साथ, और अगर आप इंजॉय कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप FM शिमला सुन रहे हैं।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, एफएम शिमला सुन रहे हैं आप 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। तो आइए अब आपको बता दें कि आकाशवाणी शिमला यानी कि हमारे प्राइमरी चैनल से आज कौन कौन से खास प्रोग्राम्स आप सुन सकते हैं। अब से कुछ ही देर बाद

लेकिन 9:31 पर कार्यक्रम सुरबेला में आज आप सुनेंगे वीजी जोग का वायलन वादन राग अहीर भैरव पर आधारित। दस बजे कुछ चुनिंदा फिल्मी गीतों के साथ हम लेकर आएंगे आपके लिए आपका पसंदीदा रिमझिम कार्यक्रम। 11 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और 11:30 पर NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग पेश किया जाएगा। 12:10 पर फिल्म संगीत और 12:20 पर सुनना ना भूलिए महिलाओं का खास कार्यक्रम महिला सम्मेलन। सैनिकों के लिए ये खास कार्यक्रम आप सुनते हैं 1:10 पर, जहां पर कुछ बेहतरीन फिल्मी गीत हम आपको सुनवाते हैं। 2 बजे का समय रहेगा सुनहरी किरणें कार्यक्रम का। इस कार्यक्रम में आज आप जानेंगे भिंडी की उन्नत काश्त के बारे में।

लिए ये खास कार्यक्रम आप सुनते हैं दोपहर 1:10 पर, जहां पर कुछ बेहतरीन फिल्मी गीत हम आपको सुनवाते हैं। 2 बजे का समय रहेगा सुनहरी किरणें कार्यक्रम का। इस कार्यक्रम में आज आप जानेंगे भिंडी की उन्नत काश्त के बारे में।

3:03 पर प्रादेशिक समाचार सुनना ना भूलें। 3:05 पर आप सुनेंगे सामयिक चर्चा। शाम 4:20 से लेकर शाम 7:05 के दरमियान विभिन्न हिमाचली बोलियों के कार्यक्रमों का आप लुत्फ उठा सकते हैं। शाम 7:10 पर कृषि जगत कार्यक्रम पेश किया जाएगा। इस कार्यक्रम में आज हम आपको बताएंगे सिंचाई की विभिन्न विधियों के बारे में। रात 8:00 धारारे गीत के तहत कुछ लोकगीत हम आपको सुनवाएंगे और 8:15 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत।

रात 10 बजे आकाशवाणी शिमला से आप सुनेंगे फिल्मी कव्वालियां। और सदाबहार गीतों के शौकीन अगर आप हैं तो सुनिएगा रात 10:30 पर पुरानी फिल्मों से कुछ यादगार सदाबहार फिल्मी गीत। तो ये थी जानकारी आकाशवाणी शिमला से आज प्रसारित किए जाने वाले कुछ खास कार्यक्रमों की। FM शिमला सुन रहे हैं आप 103.7 MHz पर। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। कुछ ही देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ एफएम शिमला पर भी रिले किया जाएगा। हमारा प्रसारण मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर बट डीटीएच पर भी उपलब्ध है।
1: हिमाचल में फिर से सज गया है लोकतंत्र का महापर्व, पंचायत चुनाव 2026।
2: 26, 28 और 30 मई को तीन चरणों में होने जा रहे हैं पंचायत इलेक्शंस, जहां आपकी एक वोट तय करेगी आपके गांव का कल।
1: सड़क, पानी, सफाई, रोजगार और गांव के विकास से जुड़े फैसलों में आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है।
2: इस बार बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए और चुनिएगा ईमानदार, योग्य और जिम्मेदार प्रतिनिधि। हिमाचल पंचायत इलेक्शंस 2026, मजबूत पंचायत, मजबूत हिमाचल।

0: गाइडलाइंस की नीति के तहत की जा रही कड़ी कार्रवाई। और प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी, मौसम विभाग ने आज कई जिलों में बारिश, अंधड़ और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट किया जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के दूसरे चरण का चुनाव कल संपन्न हो गया। इस दौरान मतदान 80% रहा। प्रदेश में अब तक हुए पंचायती राज चुनावों में ये सर्वाधिक मतदान है। दूसरे चरण के तहत प्रदेश की कुल 1,279 पंचायतों में वोट डाले गए। अधिक ब्यौरे के साथ हमारी सहयोगी।
1: पंचायती राज चुनाव के दूसरे चरण में प्रदेश भर में मतदाताओं में भारी उत्साह देखा गया। खासकर बुजुर्ग मतदाताओं और पहली बार मतदान करने वाले युवाओं ने लोकतंत्र के इस महापर्व में जोरदार उत्साह दिखाया। इस दौरान कुल्लू जिला में सर्वाधिक 86%, जबकि सबसे कम लाहौल स्पीति में 79% मतदान दर्ज किया गया। पहले चरण की तरह दूसरे चरण में भी मतदान में महिलाओं की भागीदारी अधिक रही। कुल्लू जिला में सर्वाधिक महिला मतदान दर्ज किया गया, जो लगभग 86% रहा। पंचायत स्तर पर सोलन जिला के नालागढ़ के ढेला पंचायत में सबसे अधिक 96% मतदान दर्ज किया गया। 9 जिलों में महिला मतदाताओं का मतदान प्रतिशत पुरुष मतदाताओं से ज्यादा रहा। ये मतदान प्रतिशत वर्ष 2021 के चुनाव के दूसरे चरण की तुलना में 4% अधिक रहा। प्रादेशिक समाचारों के लिए समाचार कक्ष से मैं पूनम भारद्वाज।
0: प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के लिए 30 मई को होने वाले मतदान के लिए सक्रिय चुनाव प्रचार कल समाप्त हो गया। इसके बाद अब उम्मीदवार घर घर जाकर व्यक्तिगत रूप से मतदाताओं से वोट मांगकर अपनी अपनी जीत पक्की करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रदेश में तीसरे चरण में 1,187 पंचायतों में प्रधान, उपप्रधान और सरपंचों का चयन होगा। इस दौरान इन पंचायतों में जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्यों के लिए भी वोट डाले जाएंगे। जिला परिषद, पंचायत समितियों और 4 नगर निगमों सोलन, मंडी, और धर्मशाला के वोटों की गिनती 31 मई को होगी और इसी दिन चुनाव परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिक्षा विभाग को राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल की स्थापना में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने शिमला में कहा कि सरकार प्रत्येक विधानसभा में कम से कम एक ऐसा स्कूल स्थापित करने का प्रयास कर रही है, जिससे दूरदराज क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिए गुणात्मकपूर्ण शिक्षा सुनिश्चित की जा सके। इन स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक समग्र शिक्षा प्रदान की जाएगी और इनमें स्मार्ट कक्षाएं, खेल मैदान, इंडोर स्टेडियम, स्विमिंग पूल और अन्य आधुनिक सुविधाओं सहित आधारभूत ढांचा उपलब्ध करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा ये पहल राज्यों में शिक्षा की गुणवत्ता को मजबूत करने के लिए किए जा रहे सुधारों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार बड़े पैमाने पर शिक्षकों के पद भर रही है, ताकि इनकी कमी के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो। चंबा जिले में नशे एवं नशा तस्करी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। नशीली दवाओं, मादक द्रव्यों की रोकथाम तथा उनकी धरपकड़ हेतु कार्यतंत्र को अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रशासन ने आवश्यक पग उठाए हैं। वहीं संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अपने कार्यक्षेत्र में विशेष रूप से स्कूलों और कॉलेजों में चिट्टाव एवं अन्य मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए ठोस और प्रभावी कदम उठाए। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे कुल्लू जिला संवाददाता।
2: जिला चंबा में नशा विरोधी अभियान के तहत NDNDPS एक्ट के तहत वर्ष 2026 में अब तक 43 मामले दर्ज किए गए हैं। इन मामलों में कुल 64 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस अपनाते हुए चंबा द्वारा शिक्षा विभाग को विद्यालयों में नशे से दूर रखने के लिए विद्यार्थियों को जागरूक करने, उचित स्थानों पर शिकायत पेटियां स्थापित करने तथा समय समय पर काउंसलिंग सत्र आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं इसके अतिरिक्त हिमाचल पथ परिवहन के अधिकारियों को बस अड्डों पर डिजिटल स्क्रीन स्थापित कर नक्शा मुक्ति और नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता फैलाने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके अलावा नशे की तस्करी रोकने हेतु विशेष रूट्स पर परिवहन निगम की बसों में कैमरे स्थापित करवाने को भी कहा गया है। आकाशवाणी के लिए चंबा से विकास ठाकुर।
0: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार हमारी DTH सेवा और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी सुने जा सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा का कल 30 मई को हिमाचल दौरे पर रहने का कार्यक्रम है। इस दौरान वे बिलासपुर जिला के विजयपुर में पंचायत चुनाव में अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी स्वदेश ठाकुर ने बताया कि नड्डा राजकीय प्राथमिक पाठशाला विजयपुर स्थित अपने बूस्तर पर परिवार सहित

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रियंका ठाकुर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में पंचायती राज चुनाव के दूसरे चरण का मतदान संपन्न, 80% रहा मतदान। पंचायती राज संस्थाओं के तीसरे चरण का मतदान कल 30 मई को 1187 पंचायतों में डाले जाएंगे वोट। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिक्षा विभाग को राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों की स्थापना में तेजी लाने के दिए निर्देश। चंबा जिला में नशा तस्करी के खिलाफ जीरो

0: अतिरिक्त मतदान करेंगे। कल पंचायती राज संस्थाओं के तीसरे और आखिरी चरण का मतदान होगा। यह चुनाव सुबह 7 बजे शुरू होगा, जो दोपहर बाद 3 बजे तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने के आखिरी रविवार यानी 31 मई को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। आकाशवाणी के द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण किया जाएगा। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज भी मौसम साफ बना हुआ है। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। खासकर राज्यों के मैदानी जिलों ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा, सोलन और सिरमौर के अलग अलग स्थानों पर लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों में बारिश, अंधड़ और ओलावृष्टि को लेकर ऑरेंज अलर्ट, जबकि अन्य जिलों में येलो अलर्ट किया है। गोविंद सागर और कोल डैम जलाशय में 16 जून से 15 अगस्त तक मछलियों के पकड़ने पर पूरी तरह से रोक रहेगी। मत्स्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस दौरान मछली का शिकार करने की अनुमति नहीं होगी। विभाग के अनुसार प्रतिबंध का उद्देश्य मछलियों की प्राकृतिक प्रजनन प्रक्रिया को सुरक्षित रखना और जलाशयों में मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देना है। शिमला के गेटी थिएटर में 8 से 12 जून तक अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव 2026 के तहत रंगमंच उत्सव का आयोजन किया जाएगा। उपायुक्त जिला शिमला अनुपम कश्यप ने कहा कि यह आयोजन हिमाचल की सांस्कृतिक विरासत, लोककला और रंगमंच परंपरा को बढ़ावा देने का महत्वपूर्ण मंच बनेगा। उन्होंने लोगों से बड़ी संख्या में कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है। अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर। आज अधिकांश समाचार पत्रों ने कल हुए मतदान से जुड़ी खबर को सचित्र प्रकाशित किया है। अमर उजाला की सुर्खी है, दूसरे चरण में रिकॉर्ड 80% मतदान, 1276 पंचायतों में चुने गए जनप्रतिनिधि। दैनिक भास्कर, पंजाब केसरी और दिव्य हिमाचल की एक जैसी सुर्खी है, पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में 80% मतदान, कुल्लू में सबसे ज्यादा 86%। दैनिक जागरण के शब्द है, बादलों की छाव में मतदान के लिए उत्साह। हिमाचल दस्तक की खबर है, 1 जून से फिर शुरू होगा भारत चीन बॉर्डर ट्रेड, शिपकिला दर्रे के माध्यम से पुनर्जीवित होगा सीमा व्यापार। मौसम पर दैनिक भास्कर लिखता है, गर्मी से राहत, आज से बारिश, ओलावृष्टि के साथ तेज तूफान चलने की चेतावनी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में पंचायती राज चुनावों के दूसरे चरण का मतदान संपन्न, 80% रहा मतदान। पंचायती राज संस्थाओं के तीसरे चरण का मतदान कल 30 मई को 1187 पंचायतों में डाले जाएंगे वोट। मुख्यमंत्री सुखिंदर सिंह सुक्खू ने शिक्षा विभाग को राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों की स्थापना में तेजी लाने के दिए निर्देश। चंबा जिला में नशा तस्करी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत की जा रही कड़ी कार्रवाई। और प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी, मौसम विभाग ने आज कई जिलों में बारिश, अंधड़ और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट किया जारी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
1: अभी आप प्रादेशिक समाचार सुन रहे थे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ FM शिमला पर भी रिले किया जा रहा था। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
2: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 MHz FM शिमला।
3: हर खुशी अब लगे नमी,
2: मस्त चुनो, मस्त सुनो, जानकारी और मनोरंजन के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए FM शिमला।

103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। जी हाँ, 9:30 हो गए हैं और FM शिमला पर ये वक्त है हमारे उस खास प्रोग्राम का जिसका नाम है कुदरत के रंग। और कुदरत ने सच में हमारे खूबसूरत हिमाचल को बेइंतहा खूबसूरती से नवाजा है। यहाँ के खूबसूरत कुदरती नज़ारे जो यहाँ के प्राकृतिक वातावरण और माहौल को खुशनुमा और दिलकश बनाते हैं, वहीं यहाँ पर कई ऐसे पौराणिक मंदिर भी हैं जो कि ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टिकोण से हिमाचल को देवभूमि कहलाने का गौरव दिलाते हैं। यकीनन देवभूमि हिमाचल में देवी देवताओं के कई ऐसे प्रसिद्ध मंदिर हैं जिनके बारे में हम अक्सर ही आपको बताते रहते हैं, लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं मुरलीधर भगवान कृष्ण के उस मंदिर के बारे में जिसे दुनिया भर में भगवान कृष्ण का सबसे ऊंचा मंदिर होने का गौरव प्राप्त है। और ये मंदिर वृंदावन में नहीं बल्कि हमारे खूबसूरत हिमाचल में है। और कहां पर है ये प्राचीन कृष्ण मंदिर, ये हम आपको ज़रूर बताएंगे आज के अपने इस प्रोग्राम में जिसका नाम है कुदरत के रंग। लेकिन आपको कहीं नहीं जाना है, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बस यूं ही रहिए हमारे साथ शिमला FM पर।

जी हाँ लिसनर्स, वृंदावन में नहीं हिमाचल में है दुनिया का सबसे ऊंचा श्री कृष्ण मंदिर। यहाँ जाने से चमक जाती है लोगों की किस्मत। जी हाँ बिल्कुल सही सुना है आपने, भारत में श्री कृष्ण के कई फेमस मंदिर हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में

श्री कृष्ण का सबसे ऊंचा मंदिर स्थित है। यहाँ जाने के लिए आपको ट्रैकिंग करनी पड़ती है, जो कि थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन अगर आप ट्रैकर्स हैं और ट्रैकिंग पसंद करते हैं तो आपको यहाँ जाने के लिए ये सफ़र काफ़ी पसंद आएगा। और लिसनर्स, भारत में सबसे फेमस जगहों में से एक है हिमाचल प्रदेश। हर उम्र के लोगों और हर तरह के लवर्स के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर ज़रूर होता है। अगर आप नेचर लवर हैं तो यहाँ पर कई हिल स्टेशंस हैं जहाँ पर आप जाकर अपनी वेकेशंस को एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर घूमने के लिए आप जा सकते हैं, या फिर अगर आपको रोमांच का बेहद शौक़ है तो आप यहाँ पर कई तरह की एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। और अगर आपको धार्मिक चीज़ों से लगाव है तो यहाँ पर कई मंदिर हैं जो कि काफ़ी प्राचीन हैं, जहाँ लोगों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल जाती है। उन्हीं में से एक है श्री कृष्ण मंदिर, जिसे दुनिया के सबसे ऊंचे मंदिर के रूप में जाना जाता है। जो यहाँ ये मंदिर जो है हिमाचल प्रदेश के किन्नौर ज़िले में स्थित है। किन्नौर के निचार में यूलाकांडा नाम का ये कृष्ण मंदिर है, जहाँ लोगों के दर्शन करने के लिए खूब भीड़ लगी रहती है। तो चलिए आज के इस प्रोग्राम में आपको इसी मंदिर के बारे में बताते हैं।

0: जी हाँ, भारत में भगवान श्री कृष्ण का सबसे ऊंचा मंदिर हिमाचल प्रदेश के किन्नौर ज़िले में मौजूद है। यूला कांदा ट्रैकिंग एक ट्रैक का नाम है और आप हिमालय के रास्ते में लंबी पैदल यात्रा करके भगवान कृष्ण को समर्पित दुनिया के सबसे ऊंचे इस मंदिर तक पहुंच सकते हैं।
1: हर प्रेमी को श्री कृष्ण और प्रेमिका को राधा जी के रूप में देखा जाता है।

चलिए बात करते हैं युला कुंडा ट्रैकिंग के बारे में। तो ट्रैक युला जो है खास गांव से शुरू होता है और खूबसूरत भगवान कृष्ण मंदिर तक आपको लेकर के जाता है। वैसे यहां तक जाने के कई दूसरे ऑप्शंस भी हैं और आप अगर चाहें तो गशांग दर्रे से ट्रैक कर सकते हैं। और यहां पर एक खूबसूरत झील भी है जो, और इस झील तक जाने के लिए आप अगर चाहें तो लिस्ट गरंग दर्रा भी आप ले सकते हैं। यह ट्रैक आपको थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर लगेगा लेकिन इतना मुश्किल नहीं है कि आपसे किया ही ना जाए। आप आराम से इस ट्रैक को कर सकते हैं और इस ट्रैक को अनुभव करने का सबसे अच्छा जो मौसम होता है वो आजकल ही है, जो यहाँ मई से नवंबर के बीच में आप यहाँ पर जा सकते हैं। सबसे अच्छा ये मौसम रहता है इस ट्रैक पर ट्रैकिंग करने के लिए। आपको बताएं कि इस कृष्ण मंदिर में जन्माष्टमी का जो त्यौहार है बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। हर साल जन्माष्टमी के दौरान किन्नौर और हिमाचल प्रदेश के दूसरे इलाकों के लोग इस मंदिर में आते हैं और किन्नौर गांव और श्री कृष्ण मंदिर की जो दूरी है वो लगभग 12 किलोमीटर है। आप यहाँ पर अगर बाय एयर आना चाहते हैं तो हम आपको बता दें कि यहाँ पास का जो एयरपोर्ट है वो शिमला में है, जो कि कल्पा से लगभग 267 किलोमीटर दूर है। शिमला एयरपोर्ट दिल्ली और कुल्लू से जुड़ा है। शिमला से किन्नौर के लिए टैक्सीज भी आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। बाय ट्रेन अगर आप आना चाहते हैं तो पास का रेलवे स्टेशन है जी देहरादून, वहीं पास का रेलवे स्टेशन शिमला भी है और ये किन्नौर से लगभग 244 किलोमीटर दूर है। अब अगर आप बाय रोड का ऑप्शन चुनते हैं यहाँ पर आने के लिए तो आपको हम बता दें कि शिमला और रामपुर से किन्नौर के लिए रेगुलर बसेज और टैक्सीज जो हैं वो अवेलेबल हैं। आप लाहौल और स्पीति से किन्नौर भी पहुँच सकते हैं आराम से। दूर दूर से लोग आते हैं इस मंदिर के दर्शन करने के लिए और ऐसा कहा जाता है कि दिल से मांगी गई मुरादें यहाँ पर ज़रूर पूरी होती हैं। तो अगर आपको भी मौका मिले तो ज़रूर जाइए एक बार इस कृष्ण मंदिर में।

0: हिमाचल प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण हेतु वचनबद्ध है। आइए सुनते हैं माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का संदेश।
1: नमस्कार। विश्व पर्यावरण दिवस हमें प्रकृति के संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास करवाने का महत्वपूर्ण अवसर है। हिमाचल प्रदेश को प्रकृति ने सुंदर पहाड़, साफ पानी और शुद्ध हवा का अनमोल उपहार दिया है। आइए हम सब मिलकर अपने पर्यावरण को स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित बनाने का संकल्प लें। पेड़ लगाएं, पानी बचाएं और प्रकृति की रक्षा में अपना योगदान दे। स्वस्थ पर्यावरण ही आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। आइए प्रकृति से प्रेम करें और हिमाचल को हरियाली और स्वच्छता का आदर्श बनाएं। जय हिंद, जय हिमाचल।
2: हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जनहित में जारी।
0: FM शिमला पर हमारे साथ इस वक्त आप सुन रहे हैं कुदरत के रंग प्रोग्राम। तो आइए अब सुनते हैं आज के इस प्रोग्राम का ये आखिरी।

0: तो लिसनर्स, प्रोग्राम कुदरत के रंग में आज बस इतना ही। FM शिमला सुन रहे हैं आप 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए और पेश हैं FM न्यूज़ हेडलाइंस। नमस्कार, FM न्यूज़ हेडलाइंस के साथ मैं पूनम भारद्वाज। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कल 30 मई को होने वाले मतदान के लिए सक्रिय चुनाव प्रचार कल समाप्त हो गया। इसके बाद अब उम्मीदवार घर घर जाकर व्यक्तिगत रूप से मतदाताओं से वोट मांगकर अपनी अपनी जीत पक्की करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रदेश में तीसरे चरण में 1187 पंचायतों में प्रधान, उप प्रधान और सरपंचों का चयन होगा। इस दौरान इन पंचायतों में जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्यों के लिए भी वोट डाले जाएंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिक्षा विभाग को राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों की स्थापना में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने शिमला में कहा कि सरकार प्रत्येक विधानसभा में कम से कम एक ऐसा स्कूल स्थापित करने का प्रयास कर रही है, जिससे दूर दराज क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित की जा सके। इन स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक समग्र शिक्षा प्रदान की जाएगी और इनमें स्मार्ट कक्षाएं, खेल मैदान, इंडोर स्टेडियम, स्विमिंग पूल और अन्य आधुनिक सुविधाओं सहित आधार भूत ढांचा उपलब्ध करवाया जाएगा। चंबा जिला में नशे एवं नशा तस्करी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। नशीली दवाओं, मादक द्रव्यों की रोकथाम तथा उनकी धरपकड़ हेतु कार्यतंत्र को अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रशासन ने आवश्यक पग उठाए हैं। वहीं संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अपने कार्यक्षेत्र में, विशेष रूप से स्कूलों और कॉलेजों में चिट्टा एवं अन्य मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए ठोस और प्रभावी कदम उठाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने के आखिरी रविवार यानी 31 मई को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज़, DD न्यूज़, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। आकाशवाणी के द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण किया जाएगा। शिमला शहर के कॉलेजों में 1 जून से दाखिलों के लिए आवेदन शुरू होंगे। शहर के सभी कॉलेजों में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रक्रिया का शेड्यूल जारी कर दिया है। BA, BSc, BCom और BVOC प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश प्रक्रिया 1 जून से शुरू होकर 19 जून तक चलेगी। छात्रों की प्री एडमिशन काउंसलिंग 13 से 19 जून तक होगी और प्रथम मेरिट सूची 20 जून को जारी की जाएगी। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज भी मौसम साफ बना हुआ है। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर भी जारी है। खासकर राज्य के मैदानी जिलों ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा, सोलन और सिरमौर के अलग अलग स्थानों पर लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिले में बारिश, अंधड़ और ओलावृष्टि को लेकर ऑरेंज अलर्ट, जबकि अन्य जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। इस अंक में इतना ही। नमस्कार।
1: सुरीला सफर संगीत का साथ हो मनमीत का, घर आंगन में महके जो क्या कहना उस प्रीत का।

0: सुबह हो या शाम आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज एफएम शिमला। मस्त चुनो, मस्त सुनो, जानकारी और मनोरंजन के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: जी हाँ, एफएम शिमला पर बहुत सारे एंटरटेनिंग प्रोग्राम्स हम आपके लिए लेकर आते हैं।

हैं और 11:05 पर पुराने फिल्मी गीत आप सुन सकते हैं पुरानी फिल्मों से, और 11:30 पर आप सुनेंगे पहाड़ी लोक गीतों पर आधारित लोक संगीत कार्यक्रम। और इस वक्त FM शिमला पर आप हैं हमारे साथ और अब वक्त हो गया है संगम प्रोग्राम का। अपने सभी सुनने वालों का फिर एक बार हम स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। लेकर हाजिर हैं आपके लिए कुछ चुनिंदा फिल्मी गीतों के साथ आपका पसंदीदा संगम प्रोग्राम। कुछ लवली डुएट सॉन्ग्स हम आपके लिए प्ले करते हैं अपने इस प्रोग्राम में, तो आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं इस बहुत ही प्यारे से गीत के साथ जो हमने आपके लिए चुना है कयामत से कयामत तक फिल्म में से, और इस सॉन्ग को गाया है अलका याग्निक के साथ उदित नारायण ने। ऐसे ही सॉन्ग सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ FM शिमला पर अभी से लेकर 11 बजे तक हमारे साथ। हमारा ये प्रोग्राम आप इंजॉय कर सकते हैं।

0: चुनाव सिर्फ एक शब्द नहीं, ये है सच्चे लोकतंत्र की नींव, और मतदान है एक जागरूक नागरिक की पहचान, जिसे इस्तेमाल कर वो तय करते हैं अपने क्षेत्र, राज्य और देश की दशा व दिशा।
1: तो आइए अपनी जिम्मेदारी निभाएं, आगामी पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लें और गांव के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।
0: आपका एक एक वोट तय करेगा पंचायत का भविष्य। तो निर्धारित तिथि को अपने नजदीकी मतदान केंद्र पर जाकर सोच समझ कर और बिना किसी प्रभाव के मतदान जरूर करें, क्योंकि ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारी ही नहीं अधिकार है।
1: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

एफएम शिमला पर इस वक्त आप सुन रहे हैं संगम प्रोग्राम और आशिकी फिल्म का गीत आपको हम सुनवाने जा रहे हैं। अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाजें हैं। उठी ही नहीं नजर किसी और की तरफ, उठी ही नहीं नजर किसी और की तरफ, पाबंद कर गई किसी की नजर मुझे।

0: आपका गांव है आपका गर्व, इसको विकसित बनाने के लिए आइए मिलके मनाएं लोकतंत्र का पर्व।
1: हो चुकी है देवभूमि हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा। ये मतदान 3 चरणों में 26, 28 और 30 मई को होगा। ऐसे में आए एक सच्चा नागरिक बनकर मिलकर निभाएं जिम्मेदारी और भारी संख्या में मतदान देकर दिखाएं अपनी भागीदारी।
0: आपका हर एक कीमती वोट आपके गाँव की दशा और दिशा तय करेगा, तो अपने मताधिकार का प्रयोग करना ना भूलें। राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: और प्रकृति की रक्षा में अपना योगदान दे। स्वस्थ पर्यावरण ही आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। आइए प्रकृति से प्रेम करें और हिमाचल को हरियाली और स्वच्छता का आदर्श बनाएं। जय हिंद, जय हिमाचल।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जनहित में जारी।
2: दयावान फिल्म का गीत अभी आपने सुना और इस गीत में जो आवाजें थी वो थी पंकज उदास और अनुराधा पौडवाल की। अपने इस प्रोग्राम में अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं सिंदूर फिल्म का गीत और इसे गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज ने।

0: हिमाचल प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण हेतु वचनबद्ध है। आइए सुनते हैं माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का संदेश।
1: नमस्कार। विश्व पर्यावरण दिवस हमें प्रकृति के संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास करवाने का महत्वपूर्ण अवसर है। हिमाचल प्रदेश को प्रकृति ने सुंदर पहाड़, साफ पानी और शुद्ध हवा का अनमोल उपहार दिया है। आइए हम सब मिलकर अपने पर्यावरण को स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित बनाने का संकल्प लें। पेड़ लगाएं, पानी बचाएं

0: हमारा गांव है हमारी पहचान, हमारा गांव है हमारा अभिमान। आइए मिलकर दें इसके विकास में अपना योगदान।
1: हम सब ने ठाना है कि 100% मतदान के लक्ष्य को पाना है।
0: पंचायत चुनाव आ रहे हैं, जहां आपका हर ईमानदारी से दिया गया वोट तय करता है गांव की दशा और दिशा, साथ ही बनता है गांव के विकास का आधार।
1: तो 26, 28 और 30 मई को होने वाले पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और अपने परिवार और आस पास के हर वोटर को मतदान के लिए प्रेरित करे।
0: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।

0: आशा भोसले की आवाजों में।
1: रे गा मा।
0: जी हाँ, सुरीले गीतों का ये सुहाना सफर आप इंजॉय कर रहे हैं हमारे साथ FM शिमला पर। और अब आपको हम सुनवाने जा रहे हैं भ्रष्टाचार फिल्म का गीत। इस गीत में आप सुनेंगे सुरेश वाडेकर के साथ अनुराधा पौडवाल की आवाज़।

जी हाँ, जिंदगी में गीत संगीत ना हो तो जीने में क्या मजा। अजी मजा तो तब है जब आपको मिले वही गाने जो अब तक नहीं हुए पुराने। और हमारे साथ इस वक्त आप सुन रहे हैं ऐसे ही दिलकश तराने।

तो अब हम आपको जा रहे हैं सुनाने आज के सुहाने सफर का ये आखिरी गीत, जिसे लिया है हमने मिस्टर इंडिया फिल्म से। आवाजें हैं किशोर कुमार और कविता कृष्णमूर्ति की। आप सुन रहे हैं FM शिमला 103.7 MHz पर।

0: तो लिसनर्स, ये था हमारे आज के सफ़र का आखिरी गीत। उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ एफएम शिमला पर सुरीले गीतों का यह सुहाना सफ़र आज आपने ज़रूर इंजॉय किया होगा। तो अब आपसे इजाज़त लेते हैं इसी वादे के साथ कि जल्द ही आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और रहिए एफएम शिमला के साथ। 11 बजने को हैं, कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
1: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। 11 बजने को हैं, अब प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्र भी रिले करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी की डीटीएच सेवा और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुने जा सकते हैं।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रियंका ठाकुर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश में पंचायतीराज संस्थाओं के दूसरे चरण का चुनाव कल संपन्न हो गया। इस दौरान मतदान 80% रहा। प्रदेश में अब तक हुए पंचायतीराज चुनावों में ये सर्वाधिक मतदान है। दूसरे चरण के तहत प्रदेश की कुल 1,279 पंचायतों में वोट डालेंगे। अधिक ब्यौरे के साथ हमारी सहयोगी।
3: पंचायती राज चुनाव के दूसरे चरण में प्रदेश भर में मतदाताओं में भारी उत्साह देखा गया। खासकर बुजुर्ग मतदाताओं और पहली बार मतदान करने वाले युवाओं ने लोकतंत्र के इस महापर्व में जोरदार उत्साह दिखाया। इस दौरान कुल्लू जिला में सर्वाधिक 86% जबकि सबसे कम लाहौल स्पीति में 69% मतदान दर्ज किया गया। पहले चरण की तरह दूसरे चरण में भी मतदान में महिलाओं की भागीदारी सबसे अधिक रही। कुल्लू जिले में सर्वाधिक महिला मतदान दर्ज किया गया जो लगभग 86% रहा। पंचायत स्तर पर सोलन जिला के नालागढ़ के ढेला पंचायत में सबसे अधिक 96% मतदान दर्ज किया गया। 9 जिलों में महिला मतदाताओं का मतदान प्रतिशत पुरुष मतदाताओं से ज्यादा रहा। ये मतदान प्रतिशत वर्ष 2021 के चुनाव के दूसरे चरण की तुलना में 4% अधिक

0: दिख रहा। प्रधान, उपप्रधान और वार्ड सदस्यों के नतीजे कल देर रात घोषित किए गए। प्रादेशिक समाचारों के लिए समाचार कक्ष से मैं पूनम भारद्वाज।
1: प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कल 30 मई को होने वाले मतदान के लिए सक्रिय चुनाव प्रचार कल समाप्त हो गया। इसके बाद अब उम्मीदवार घर घर जाकर व्यक्तिगत रूप से मतदाताओं से वोट मांगकर अपनी अपनी जीत पक्की करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रदेश में तीसरे चरण में 1187 पंचायतों में प्रधान, उपप्रधान और सरपंचों का चयन होगा। इस दौरान इन पंचायतों में जिला परिषद और पंचायत समितियों के सदस्यों के लिए भी वोट डाले जाएंगे। जिला परिषद, पंचायत समितियों और 4 नगर निगमों मंडी, पालमपुर और धर्मशाला के वोटों की गिनती 31 मई को होगी और इसी दिन चुनाव परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा का कल 30 मई को हिमाचल दौरे पर आने का कार्यक्रम है। इस दौरान वे बिलासपुर जिला के विजयपुर में पंचायत चुनाव में अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी स्वदेश ठाकुर ने बताया कि नड्डा राजकीय प्राथमिक पाठशाला विजयपुर स्थित अपने बूथ पर परिवार सहित मतदान करेंगे। कल पंचायती राज संस्थाओं के तीसरे और आखिरी चरण का मतदान होगा। यह चुनाव सुबह 7 बजे शुरू होगा जो दोपहर बाद 3 बजे तक चलेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिक्षा विभाग को राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों की स्थापना में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने शिमला में कहा कि सरकार प्रत्येक विधानसभा में कम से कम एक ऐसा स्कूल स्थापित करने का प्रयास कर रही है जिससे दूरदराज क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिए गुणात्मक पूर्ण शिक्षा सुनिश्चित की जा सके। इन स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक समग्र शिक्षा प्रदान की जाएगी और इनमें स्मार्ट कक्षाएं, खेल मैदान, इंडोर स्टेडियम, स्विमिंग पूल और अन्य आधुनिक सुविधाओं सहित आधारभूत ढांचा उपलब्ध करवाया जाएगा। चंबा जिले में नशा एवं नशा तस्करी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। नशीली दवाओं, मादक द्रव्यों की रोकथाम तथा उनकी धरपकड़ हेतु कार्यतंत्र को अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रशासन ने आवश्यक पग उठाए हैं। वहीं संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अपने कार्यक्षेत्र में विशेष रूप से स्कूलों और कॉलेजों में चिट्टा और अन्य मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए ठोस और प्रभावी कदम उठाए। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे चंबा जिला संवाददाता।
2: जिला चंबा में नशा विरोधी अभियान के तहत एनडी एंड एनडीपीएस एक्ट के तहत वर्ष 2026 में अब तक 43 मामले दर्ज किए गए हैं। इन मामलों में कुल 64 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस अपनाते हुए चंबा द्वारा शिक्षा विभाग को विद्यालयों में नशे से दूर रखने के लिए विद्यार्थियों को जागरूक करने, उचित स्थानों पर शिकायत पेटियां स्थापित करने तथा समय समय पर काउंसलिंग सत्र आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं इसके अतिरिक्त हिमाचल पथ परिवहन निगम के अधिकारियों को बस अड्डों पर डिजिटल स्क्रीन स्थापित कर नशा मुक्ति और नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता फैलाने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके अलावा नशे की तस्करी रोकने हेतु विशेष रूट्स पर परिवहन निगम की बसों में कैमरे स्थापित करवाने को भी कहा गया है। आकाशवाणी के लिए चंबा से विकास ठाकुर।
1: राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज भी मौसम साफ बना हुआ है। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। खासकर राज्यों के मैदानी जिलों ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा, सोलन और सिरमौर के अलग अलग स्थानों पर लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है जिससे अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों में बारिश, अंधड़ और ओलावृष्टि को लेकर ऑरेंज अलर्ट जबकि अन्य जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं दोपहर बाद 3 बजे। नमस्कार।
0: मीडियम वेव और FM शिमला, हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों पर आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
3: शुभवाणी, लाभवाणी, जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी। माटी की महक है जहां, खेतों खलियानों की वही आवाज घाटियों में गूंजती है। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, FM शिमला।

103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम शिमला का प्रसारण। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एफएम शिमला पर। 11:05 हुए हैं और हाजिर हैं हम आपके लिए लेकर ढेर सारे गाने, कुछ नए तो कुछ पुराने। साथ ही सुनवाएंगे आपको हिमाचल के लोकगीत भी। और कार्यक्रम युववाणी में कुछ खास लेकर आएंगे अपने युवा साथियों के लिए। समय समय पर आपको अवगत करवाते रहेंगे देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से, समाचारों के माध्यम से। तो बस यूं ही सुनते रहिए एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सफर का आगाज करते हैं कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। कार्यक्रम में लीजिए सुनिए लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाज़ों में सगाई फिल्म का गीत। गीत के बोल राजेंद्र कृष्ण के, संगीत सी रामचंद्र का।

0: लीजिए सुनिए गीता दत्त और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में मंजिल फिल्म का गीत, गीत के बोल मजरूह के संगीत एस टी बर्मन का।
1: से मिले प्यासे प्यासे कुछ हम कुछ तुम, क्या हो जो घटा खुल के बरसे रुम झुम रुम झुम।

0: हिमाचल में फिर से सज गया है लोकतंत्र का महापर्व, पंचायत चुनाव 2026।
1: 26, 28 और 30 मई को तीन चरणों में होने जा रहे हैं पंचायत इलेक्शंस, जहां आपकी एक वोट तय करेगी आपके गांव का कल।
0: सड़क, पानी, सफाई, रोजगार और गांव के विकास से जुड़े फैसलों में आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है।
1: इस बार बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए और चुनिएगा ईमानदार, योग्य और जिम्मेदार प्रतिनिधि।

0: हिमाचल पंचायत इलेक्शंस 2026, मजबूत पंचायत, मजबूत हिमाचल।
1: एफएम शिमला पर आप सुन रहे हैं पुरानी फिल्मों से कार्यक्रम। लीजिए सुनिए मन्ना डे और लता मंगेशकर की आवाजों में फिल्म कवि कालिदास का ये गीत।

0: गांव की पहचान होती है उसकी मजबूत पंचायत से, और पंचायत मजबूत बनती है आपके एक वोट से।
1: क्योंकि ईमानदारी और बिना किसी के प्रभाव में आए दिए गए आपके वोट ही तय होते हैं गांव, और बनती है सड़क, पानी, स्वच्छता और रोजगार संबंधी नीतियाँ।
0: इसीलिए 26 मई, 28 मई और 30 मई को होने वाले पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर अपनी भागीदारी निभाएं।
1: अपने परिवार और गांव वालों को भी जागरूक बनाएं और 100% मतदान के संकल्प को हासिल करने का लक्ष्य बनाएं।
0: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।
2: FM शिमला पर आप सुन रहे हैं पुरानी फिल्मों से कार्यक्रम। लीजिए सुनिए मुकेश की आवाज़ में छलिया फिल्म का ये गीत।

लीजिए सुनिए लता मंगेशकर की आवाज़ में चोरी चोरी फिल्म का गीत। गीत के बोल हसरत जयपुरी के, संगीत शंकर जयकिशन का।

0: पुरानी फिल्मों से कार्यक्रम में आज बस इतना ही। आप यूं ही सुनते रहिए FM शिमला का प्रसारण।
1: चुनाव सिर्फ एक शब्द नहीं, ये है सच्चे लोकतंत्र की नींव, और मतदान है एक जागरूक नागरिक की पहचान, जिसे इस्तेमाल कर वो तय करते हैं अपने क्षेत्र, राज्य और देश की दशा व दिशा।
2: तो आइए अपनी जिम्मेदारी निभाएं, आगामी पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़ कर भाग लें और गांव के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।
1: आपका एक एक वोट तय करेगा पंचायत का भविष्य। तो निर्धारित तिथि को अपने नजदीकी मतदान केंद्र पर जाकर सोच समझ कर और बिना किसी प्रभाव के मतदान जरूर करें, क्योंकि ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारी ही नहीं अधिकार है।
2: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: एक सौ 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं FM शिमला का प्रसारण। 11:30 हुए हैं। लीजिए पेश है पहाड़ी संगीत कार्यक्रम। कार्यक्रम में लीजिए सुनिए पूनम शर्मा और कुमारी संतोष तनवर की आवाज़ों में ये लोकगीत।

0: हिमाचल प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण हेतु वचनबद्ध है। आइए सुनते हैं माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का संदेश।
1: नमस्कार। विश्व पर्यावरण दिवस हमें प्रकृति के संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास करवाने का महत्वपूर्ण अवसर है। हिमाचल प्रदेश को प्रकृति ने सुंदर पहाड़, साफ पानी और शुद्ध हवा का अनमोल उपहार दिया है। आइए हम सब मिलकर अपने पर्यावरण को स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित बनाने का संकल्प लें। पेड़ लगाएं, पानी बचाएं और प्रकृति की रक्षा में अपना योगदान दे। स्वस्थ पर्यावरण ही आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। आइए प्रकृति से प्रेम करें और हिमाचल को हरियाली और स्वच्छता का आदर्श बनाएं। जय हिंद, जय हिमाचल।
2: हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जनहित में जारी।
3: FM शिमला पर आप सुन रहे हैं पहाड़ी संगीत कार्यक्रम। लीजिए सुनिए विद्या देवी की आवाज में ये लोकगीत।

0: आपका गांव है आपका गर्व, इसको विकसित बनाने के लिए आइए मिलके मनाएं लोकतंत्र का पर्व।
1: हो चुकी है देवभूमि हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा। ये मतदान 3 चरणों में 26, 28 और 30 मई को होगा। ऐसे में आए एक सच्चा नागरिक बनकर मिलकर निभाएं जिम्मेदारी और भारी संख्या में मतदान देकर दिखाएं अपनी भागीदारी।
0: आपका हर एक कीमती वोट आपके गांव की दशा और दिशा तय करेगा, तो अपने मताधिकार का प्रयोग करना ना भूलें। राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: लीजिए सुनिए टेकचंद और ओम प्रकाश की आवाजों में ये लोकगीत।

0: सुनते हैं माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का संदेश।
1: नमस्कार। विश्व पर्यावरण दिवस हमें प्रकृति के संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास करवाने का महत्वपूर्ण अवसर है। हिमाचल प्रदेश को प्रकृति ने सुंदर पहाड़, साफ पानी और शुद्ध हवा का अनमोल उपहार दिया है। आइए हम सब मिलकर अपने पर्यावरण को स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित बनाने का संकल्प लें। पेड़ लगाएं, पानी बचाएं और प्रकृति की रक्षा में अपना योगदान दे। स्वस्थ पर्यावरण ही आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। आइए प्रकृति से प्रेम करें और हिमाचल को हरियाली और स्वच्छता का आदर्श बनाएं। जय हिंद, जय हिमाचल।
2: हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जनहित में जारी।
3: FM शिमला पर आप सुन रहे हैं पहाड़ी संगीत कार्यक्रम। लीजिए सुनिए ब्रह्मदत्त और साथियों की आवाजों में ये लोग।

0: हमारा गांव है हमारी पहचान, हमारा गांव है हमारा अभिमान। आइए मिलकर दें इसके विकास में अपना योगदान।
1: हम सब ने ठाना है कि 100% मतदान के लक्ष्य को पाना है।
0: पंचायत चुनाव आ रहे हैं, जहां आपका हर ईमानदारी से दिया गया वोट तय करता

0: है गांव की दशा और दिशा, साथ ही बनता है गांव के विकास का आधार।
1: तो 26, 28 और 30 मई को होने वाले पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और अपने परिवार और आसपास के हर वोटर को मतदान के लिए प्रेरित करें।
0: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।
2: आप सुन रहे हैं पहाड़ी संगीत कार्यक्रम, लीजिए सुनिए प्रवीण कुमार की आवाज में ये लोकगीत।

0: हिमाचल के युवाओं, अब सिर्फ सोशल मीडिया पर ओपिनियन देने का नहीं, वोट देने का भी वक्त आ गया है।
1: इस पंचायत इलेक्शन में 50 लाख से ज्यादा वोटर्स अपने मत का अधिकार इस्तेमाल करेंगे और हजारों फर्स्ट टाइम वोटर्स भी बनेंगे इस बदलाव का हिस्सा। 26 मई, 28 मई और 30 मई, याद रखिए ये तारीखें।
0: आपकी एक वोट आपके गाँव की सोच, विकास और लीडरशिप को तय करेगी। तो निकलिए घर से और बनिए जिम्मेदार नागरिक। पंचायत चुनाव 2026, वोट जरूर करें।
2: लीजिए सुनिए विनय अबरोल की आवाज में ये लोकगीत।

0: पहाड़ी संगीत कार्यक्रम में आज बस इतना ही। आप सुनते रहिए FM शिमला का प्रसारण। दोपहर के 12 बजने को हैं अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 12:05 पर अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अवैध घुसपैठ और अन्य अस्वाभाविक कारणों से होने वाले कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों की जांच के लिए गठित उच्चस्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता वाली समिति एक वर्ष में अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर घुसपैठी की पहचान कर उसे देश के बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है।
2: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसांख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
1: गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की और कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद स्थिति बदली है। उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सराहना करते हुए कहा कि सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 7 दिन में 600 हेक्टेयर जमीन BSF को सौंप दी गई। श्री शाह गुजरात दौरे के दूसरे दिन आज कच्छ के अंतर्राष्ट्रीय

0: सीमा से सटे हरामी नाला और खाड़ी क्षेत्रों का दौरा करेंगे। ये क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। इस दौरान गृहमंत्री सीमा सुरक्षा बल के सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीमा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। श्री शाह सीमा चौकी G7 का उद्घाटन करेंगे और BSF के जवानों से मुलाकात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन आज वे विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत इस वर्ष के अंत तक पूरी कर लेने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने महत्वाकांक्षी और परस्पर लाभकारी CEPA समझौते के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों देशों के मंत्रियों ने आर्थिक विकास और व्यवसायों के लिए व्यावसायिक अवसरों में वृद्धि करने पर द्विपक्षीय व्यापार तथा निवेश संबंधों की पुष्टि की। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह फैसला किया गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण एयरलाइंस को महंगे ईंधन और हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे परिचालन लागत बढ़ गई है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि सामाजिक न्याय, ग्रामीण विकास और किसान समुदायों के सशक्तिकरण के प्रति चौधरी चरण सिंह की अटूट प्रतिबद्धता को हमेशा याद रखा जाएगा। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मिला जुला असर देखा गया। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 36 अंक बढ़कर 75,904 पर था। निफ्टी 25 अंक की गिरावट के साथ 23,882 पर कारोबार कर रहा था। IPL क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. National Security Advisor Ajit Doval called for decisive action against terrorism and has said there cannot be double standards in the fight against it. Addressing an international security forum in Russia, Mr. Doval said, Responsible nations have to evaluate their choices and decide whether they support sponsors of terrorism or counter them with decisive action.
2: Terrorism constitutes as one of the most serious threats to international security. And he felt that this is something for which all international security experts must address this threat. It is an antithesis of everything that humanity stands for. India has been a victim of state-sponsored terrorism.
1: Union Home Minister Amit Shah will visit the strategically significant and sensitive Harami Nala and Creek areas along the international border in Kutch on the second day of his Gujarat tour today. During the visit, he will review the security arrangements made by Border Security Force and discuss border security challenges with senior officials. The Home Minister will inaugurate Border Outpost G7 and interact with BSF personnel. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today paid tribute to United Nations peacekeepers serving across the world on the International Day of UN Peacekeepers. In a social media post, Dr. Jaishankar lauded the brave women and men serving under

0: हिमाचल में फिर से सज गया है लोकतंत्र का महापर्व, पंचायत चुनाव 2026।
1: 26, 28 और 30 मई को तीन चरणों में होने जा रहे हैं पंचायत इलेक्शंस, जहां आपकी एक वोट तय करेगी आपके गांव का कल।
0: सड़क, पानी, सफाई, रोजगार और गांव के विकास से जुड़े फैसलों में आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है।
1: इस बार बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए और चुनिएगा ईमानदार, योग्य और जिम्मेदार प्रतिनिधि। हिमाचल पंचायत इलेक्शंस 2026, मजबूत पंचायत, मजबूत हिमाचल।

लीजिए सुनिए सूर्या फिल्म का गीत, आवाज़ें मोहम्मद अजीज़ और अनुराधा पौडवाल की हैं। संतोष आनंद ने गीत के बोल लिखे हैं और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM शिमला का प्रसारण। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलो हर्ट्स और FM 103.7 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। 12:20 हुए हैं, लीजिए पेश है कार्यक्रम महिला सम्मेलन।

0: लीजिए बहनों, हाजिर हैं आपका मनपसंद कार्यक्रम महिला सम्मेलन लेकर। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपकी रेडियो सखी मीनाक्षी शर्मा
1: और मैं हूं दीक्षा वर्मा। आप सभी को हमारा
0: नमस्कार।
1: मीनाक्षी, देखो कहते हैं ना कि दुख बांटने से कम होता है
0: जी,
1: है ना। और इंसान जब किसी को अपना समझने लगता है तो अपने मन की सारी बातें, सारे राज तक उसके सामने खोल के रख देता है। बिल्कुल खुली किताब की तरह हम अपने आप को किसी इंसान के सामने रख देते हैं जिस पर हम भरोसा करते हैं।
0: जी बिल्कुल सही भी है दीक्षा, जिसे हम अपना समझते हैं तो उसके सामने हम अपने जो दिल की बात है ना वो बेझिझक कह देते हैं ना। और लेकिन अपना दुख कम करने के लिए साझा की गई बातें जो कई बार हमें मुश्किल में भी डाल देती हैं, इसलिए हमेशा ओवर शेयरिंग से हमें बचना है। और जब भी हमें अपनी बात कहनी है तो सोच समझकर कहनी है।
1: ये बिल्कुल सही बात कही मीनाक्षी कि कई बार हम जो दुख बांटते हैं ना, अपनी समस्या दूसरों से साझा करते हैं तो हमें हल मिलने की बजाय हम सोचते हैं कि हमें हल मिलेगा, मन हल्का होगा। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि अपनी समस्या को हम कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा के बोल देते हैं। और जो ऐसा करने से क्या होता है कि एक तो दूसरों के बीच में हम कई बार हंसी के पात्र भी बन जाते हैं ना, खुद ही मुश्किल में पड़ जाते हैं उल्टा।
0: और देखिए साथ में क्या होता है ना, एक तो हंसी के पात्र बन जाते हैं, दूसरा ये कि उनका जो है जो भी बात शेयर कर रहा है उसका जो निजी जीवन होता है ना, हर आदमी का एक निजी जीवन होता
1: सही
0: है,
1: बात है।
0: उसके कहीं ना कहीं एक तरह से वो
1: नुमाइश
0: लग जाती है। इसलिए अपना दुख साझा करते हुए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, ये हमें पता होना चाहिए
1: जी। जैसे कि हमें बहनों समस्याएं, हम जानते हैं कि ये समस्याएं सभी के जीवन में आती हैं, है ना, और हमें ऐसा मानना भी चाहिए। और उन समस्याओं से हमें कैसे निपटना है ये सिर्फ और सिर्फ हम ही तय कर सकते हैं और हमें ही तय करना पड़ता है ना मीनाक्षी।
0: बिल्कुल,
1: कई बार चीजें जो मर्जी हो, हम जिस मर्जी से राय भी ले लें, लेकिन

0: तक हम खुद पहल नहीं करते अपनी समस्या को सुलझाने की, तब तक वो समस्या, वो मुश्किल हल नहीं हो पाती है।
1: बिल्कुल सही कह रही हैं दीक्षा आप। क्या होता है ना, जब हम खुद इनिशिएटिव लेते हैं ना, जो
0: हाँ
1: हमारी जो समस्याएं होती है उसे निपटने के लिए, तो क्या
0: खुद
1: होता
0: ही
1: है ना, मुश्किल हालात में जो हमारी जो क्षमताएं होती है ना,
0: जी
1: उसकी पहचान भी तो होती है। क्या
0: बिल्कुल
1: होता है ना, कई बार बड़ा जो मन है वो बेचैन हो जाता है, और कई तरह के विचार जो हमारे मन में आ जाते हैं, और कई तरह के सवाल भी होते हैं, और
0: बिल्कुल
1: ऐसे में मन की बात किसी से साझा करना हमारे को बड़ी राहत
0: राहत
1: भी तो
0: देता
1: देता
0: है।
1: है ना,
0: हाँ हम हमें लगता है कि हम किसी और से बात करेंगे तो हमारा मन हल्का होगा,
1: हल्का हो जाएगा।
0: लेकिन बार बार अगर हम ऐसा ही करते रहते हैं तो कहीं ना कहीं हम दूसरों के ऊपर भावनात्मक रूप से निर्भर हो जाते
1: जी जी
0: हैं। और यहाँ पर हमें ये बात भी समझनी होगी कि हम किसी से अपने मन की बात सिर्फ जी हल्का करने के लिए ही थोड़ी करना चाहिए,
1: जी
0: मतलब
1: जी
0: हमको, हमें चाहिए कि हल निकले हमारी समस्या
1: बिल्कुल
0: का। इसीलिए हमें ऐसे इंसान का चुनाव करना चाहिए जो हमारी समस्या को सुने भी, मतलब हमारा मन भी हल्का करे, और साथ में वो हमें कोई ना कोई हल भी दे जो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी तो समस्या का समाधान है ना।
1: जी बहनों, जिंदगी में दोस्त वो भरोसेमंद शख्स होता है जिसके सामने आप अपने मन की सारी बातें रखती हैं, और एक सच्चा दोस्त आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा भी तो देता है, मदद भी करता है।
0: बिल्कुल
1: लेकिन दोस्तों को अपनी बात बताने का भी एक, जो हम
0: हाँ
1: कहते हैं कि सीमा
0: सीमा
1: होनी
0: सही
1: चाहिए,
0: बात है बिल्कुल
1: और चाहे वो आपकी सबसे अच्छी सहेली ही क्यों ना हो, कुछ बातें देखिए जैसा कि हमने पहले भी कहा निजी होती हैं, उसमें किसी की जो दखल अंदाजी वो ठीक नहीं होती।
0: हाँ
1: जैसे
0: बिल्कुल
1: कि मतलब हम ये ले सकते हैं कि हमारे परिवार का फाइनेंशियल मैटर क्यों ना हो।
0: जी। और कई बार ऐसा होता है कि निजी बातों को जब हम बार बार साझा करते रहते हैं तो जो सामने वाला व्यक्ति है, चाहे हमारा कितना ही अच्छा दोस्त, कितनी ही अच्छी सहेली या रिश्तेदार क्यों ना हो, वो जज करने लग जाते हैं,
1: जी
0: है ना। और कई बार वो हमें हमारी बताई गई बातों के द्वारा हमारी ज़िंदगी में भी अपने ही फैसले देने लग जाते हैं, कंट्रोल
1: बिल्कुल
0: करने की कोशिश भी करने लग जाते
1: बिल्कुल
0: हैं। उन्हें भी ऐसा लगता है कि अच्छा, हर बात तो मुझसे शेयर करती थी, है ना, और
1: बिल्कुल,
0: आज शेयर
1: और
0: नहीं
1: आज
0: किया,
1: शेयर
0: देखो
1: नहीं कर रहे हैं
0: इतना बड़ा
1: ना,
0: फैसला ले लिया,
1: बिल्कुल। यानी कि जो आप पर वो अपनी जो
0: हावी हो
1: सोच है
0: जाता है।
1: ना वो थोपने की कोशिश करना शुरू कर देते
0: जी
1: हैं,
0: जी
1: इसलिए किसी को भी आप अपने जीवन पर कंट्रोल करने का हक ना
0: बिल्कुल
1: दें।
0: ना दे।
1: इसलिए बातें उतनी ही साझा करें जितनी आप राय लेना चाहती हैं।
0: हाँ बिल्कुल सही।
1: देखिए बहनों, आज का जो टाइम है, डिजिटल युग का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, और हमारी ज़िंदगी में ये एक अहम हिस्सा बन चुका है सोशल मीडिया।
0: बिल्कुल
1: लोग क्या करते हैं ना, देखिए हम देखते हैं ना दीक्षा की अपनी हर छोटी बड़ी बात जो है इंटरनेट पर साझा कर देते हैं, कि जैसे किसी ने क्या खाया, क्या पहना, कब कहाँ गए, जरूरत से ज़्यादा
0: हाँ
1: जो जानकारी है ना, पर्सनल जानकारी, वो हम साझा कर देते हैं, और ये कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसानदायक भी है।
0: जी, ये नुकसानदायक ज़रूर हो सकता है, क्योंकि इंटरनेट का उपयोग जितना सोच समझ कर किया जाए उतना ठीक है, वहाँ पर बहुत तरह के लोग हैं, हमें नहीं पता कि उन लोगों पर विश्वास किया जा
1: किया
0: सकता
1: जा
0: है या
1: सकता
0: नहीं। तो उस नुकसान से बचने के लिए ज़रूरी है कि बिना सोचे समझे अपनी कोई भी जानकारी, अपनी निजी जानकारी, चाहे फ़ोटो हो, लोकेशन हो, है ना, मोबाइल नंबर हो, अपना एड्रेस है, ऐसी चीज़ों को हम ज़्यादा सोशल मीडिया पर भी शेयर ना करें, ताकि हमारी जो निजता है, जो सुरक्षा है, वो हमारी बनी रहे,
1: जी
0: है ना।
1: जी और ओवर शेयरिंग केवल आपने जो सामने की बातचीत में ही नहीं दिखी होगी, बल्कि ये
0: हाँ
1: ओवर
0: सोशल
1: शेयरिंग
0: मीडिया पे
1: तो
0: भी
1: सोशल
0: करते हैं,
1: मीडिया पे भी होती है,
0: हाँ चैट
1: चैटिंग
0: पे
1: करते
0: करते
1: हैं
0: हैं,
1: हम लोग,
0: बिल्कुल
1: है ना,
0: बिल्कुल
1: कई बार फ़ोन कॉल पे भी हम मतलब इतनी बात
0: घंटों
1: कर घंटों बिता देते हैं और हमें पता ही नहीं चलता, या ऑनलाइन कोई घटना घट जाती है तो हम क्या सोचते हैं कि ऑनलाइन पोस्ट एकदम से डाल देते हैं, और इसलिए लोग अपनी जो बात दूसरों के साथ जल्दी साझा कर लेते हैं क्योंकि उनके पास मीडिया है बात शेयर करने के लिए।
0: बिल्कुल। तो बहनों, 100 बात की एक बात ये है कि जब भी आपको कुछ जानकारी अपनी साझा करनी है, शेयरिंग करनी है अपने दोस्तों से, घर वालों से, निजी लोगों से, तो बस ये ध्यान रखें कि ये देखें कि समय सही हो, व्यक्ति सही हो, यानी कि भरोसेमंद व्यक्ति हो, और एक तय सीमा में ही आपको बातें साझा करनी चाहिए, है
1: जी,
0: ना।
1: तो दीक्षा दीक्षा जानकारी का सिलसिला तो यूं ही चलता रहेगा, लेकिन
0: बिल्कुल
1: अब बहनों को सुनवाती एक गीत।
0: गीत।

0: देखो मीनाक्षी, गर्मियाँ अपनी चरम सीमा पर पहुँच गई हैं.
1: बिल्कुल
0: है ना, आजकल आप बाहर बिना छाते के आप जा ही नहीं सकते हैं, और बाहर काम करना या बाहर धूप में रहना तो बहुत दूर की बात है. एकदम से आपको इतनी प्यास लग जाएगी, आप नहीं रह पाएंगे बाहर, है ना, दम घुटने लगता है. इतनी गर्मियाँ हो चुकी हैं, हवा भी बंद है.
1: जी देखिए ना, एकदम से प्यास तो लगती है जब हम धूप में जाते हैं, लेकिन जो इंसान है ना, अगर उसको प्यास लगती है तो कहीं से भी पानी
0: मांग सकता है. कम से कम, बिल्कुल
1: लेकिन
0: सही.
1: अगर पशु पक्षी की बात कर रहे हैं तो ऐसी व्यवस्था नहीं होती है, बल्कि इंसानों के लिए तो कई जगह प्याऊ भी, सुना होगा आपने, प्याऊ भी लगाए होते हैं. बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जगह जगह इस तरह की व्यवस्था
0: बिल्कुल
1: करके रखते हैं, लेकिन पशु पक्षियों के लिए ऐसी व्यवस्था कम ही होती है.
0: बिल्कुल ठीक कहा मीनाक्षी. हम तो बोल सकते हैं,
1: हाँ
0: लेकिन
1: जी
0: ऐसे बेचारे पशु पक्षी जो बोल नहीं सकते, मूक होते हैं, है ना, वो किससे कहें अपनी व्यथा कि उनको भी प्यास लग रही है, उनको भी भूख लग रही है. तो ऐसे में बहनों, हम ही लोग हैं सबसे समझदार. जो धरती पर जो प्राणी है वो इंसान है ना. हम
1: जी
0: अपनी बात दूसरों के मन की बात तक हम समझ सकते हैं. तो पशु पक्षी और जो प्रकृति है उसकी तरफ को भी हमारा जो हमारा बर्ताव है वो ऐसा होना चाहिए जैसा हम किसी भी और व्यक्ति के साथ करते हैं.
1: ये
0: क्यों?
1: देखिए ना दीक्षा, जो अगर पेट्स की हम बात कर रहे हैं ना, जो पालतू जानवर होते हैं उनकी देख रेख तो
0: हम
1: मतलब हम
0: करते
1: लोग कर
0: हैं,
1: लेते हैं,
0: बिल्कुल.
1: लेकिन जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं या पशु पक्षियाँ हैं, तो उनके भोजन और पानी के लिए उनकी व्यवस्था
0: कोई
1: कुछ
0: नहीं
1: ठीक नहीं
0: होता.
1: होती है ना. देखा होगा आपने कई बार गली में कुत्ते वगैरह जो है बहुत जोर से हांफ रहे होते हैं
0: हाँ,
1: या
0: और
1: लार टपक रही होती है ना,
0: बिल्कुल
1: और पानी की कमी हो जाती है.

0: जी, और इसके साथ आजकल देखो मीनाक्षी कितनी, मतलब आग भी बहुत लग रही है क्योंकि
1: बिल्कुल
0: गर्मी इतनी है, जंगल भी तपे हुए हैं, और गांव में शायद कुछ लोग भी जंगल की सफाई इसलिए कर देते हैं कि वहां पर अगली बार को घास अच्छे से हो जाए।
1: जी बिल्कुल, और ये बहुत ही गलत सोच है। अगर ऐसा करते हैं तो इसे देखो प्रकृति को कितना नुकसान होता है, साथ ही
0: हाँ,
1: में जो कितने
0: हमारे
1: पशु पक्षियों का आश्रय होता है वो
0: बिल्कुल
1: भी छिन जाता
0: छिन
1: है।
0: जाता है। अगर कितना बुरा लगेगा हमें भी बहनों, अगर अचानक से कोई हमें भी हमारे घर से बाहर निकाल दे, है ना, तो फिर ऐसी स्थिति में फिर भी जहाँ पर कभी कभी खुद भी आग लग जाती है, तो ऐसे में जो पशु पक्षी हैं वो भी कई बार हमें मिलते हैं गिरे हुए, कहीं प्यास से
1: जी
0: तड़प
1: जी
0: कर गिरे हुए, थोड़े से झुलसे हुए, तो ऐसे में हमें एक इंसान होने के नाते थोड़ा सा प्रकृति की तरफ, उन बेजुबान पशु पक्षियों की तरफ को भी ध्यान देना चाहिए, उनकी मदद के लिए भी हमें कोशिश करनी चाहिए, क्यों?
1: जी बिल्कुल, ये तो देखिए हमारे हाथ में, और हम बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे हाथ में हम कर सकते हैं और हमें करनी भी चाहिए। क्या होता है ना कि गर्मी के कारण ज़मीन और जो जल के जो स्रोत होते हैं
0: हाँ,
1: वो सूख
0: सूखने
1: जाते
0: लगते हैं,
1: हैं,
0: बिल्कुल।
1: और जिससे क्या होता है चिड़ियों को भोजन नहीं मिल पाता है। इसके लिए हम गर्मी में अपने घरों के बाहर, अपने छतों पर, अपने आंगन में मिट्टी के बर्तन में पानी रख सकते हैं।
0: बिल्कुल, और साथ ही साथ जो है वो हम घर के आसपास लगे पेड़ों पर मिट्टी के बने हुए हम वो जल के बर्तन रख सकते हैं, है ना। इतने सारे हमारे पास छोटे छोटे, क्या कहते हैं उन्हें, हम मटके से छोटे छोटे से नहीं होते,
1: बिल्कुल है
0: कितने
1: ना,
0: इकट्ठे
1: बिल्कुल
0: हो जाते हैं हमारे पास, उसमें से किसी में भी हम पानी भरकर उस ऊंचाई तक टांग सकते हैं जहां तक हम रोज उसमें पानी भर सके।
1: जी। साथ में देखिए हम उनके लिए गर्मियों में मतलब छाया की व्यवस्था भी कर सकते
0: हाँ
1: हैं। हमारे पास होता है ना कि घर पे जैसे गत्ते हो गए, पुराने फर्नीचर होता है, उन्हें उसके लिए
0: हाँ
1: मतलब
0: छोटे
1: घर
0: छोटे,
1: बना सकते हैं,
0: बिल्कुल
1: छोटे छोटे घर बना सकते हैं। और घर के आसपास पेड़ हमारे को देखिए लगाने
0: लगाने
1: ही
0: भी
1: चाहिए।
0: चाहिए। हाँ
1: क्या
0: बिल्कुल
1: होगा
0: सही,
1: उससे जो पक्षी होंगे वो वहाँ पर आकर बैठेंगे और अपना घोंसला भी बनाएंगे।
0: बिल्कुल। और मीनाक्षी, गर्मियों की, मतलब वैसे एक बात कहूँ, मेरे हिसाब से गर्मियों की सुबह की सबसे खूबसूरत बात ही ये होती है कि पक्षियों का चहचहाना सुनाई देता
1: बहुत
0: है,
1: अच्छा लगता है
0: और
1: ना।
0: हाँ, और अपने घर के आसपास जो पशु पक्षी या पक्षी हमारे आसपास घूमते हैं, वहाँ पर जो हम छोटे छोटे उनके लिए कुछ घर बनाएंगे, उसमें रहेंगे, अंडे देंगे, और रोज़ सुबह शाम इतना सुंदर हमें अपना गीत सुनाएंगे, तो वो और भी ज़्यादा हमारे घर के आसपास के वातावरण को भी और खुशनुमा बना देता है।
1: बिल्कुल, और सुबह बहुत ही अच्छी शुरुआत होती है ना। और गर्मियों में क्या होता है ना कि गाय और दूसरे जो
0: जानवर है,
1: जानवर होते हैं उनके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, पानी का बड़ा मिट्टी का बर्तन रखें ताकि वो अपना मुंह उसमें आसानी से डाल सकें। हो सके तो आप क्या कर सकते हैं, एक टिन का शेड देखा होगा ना, दीक्षा आपने भी
0: हाँ,
1: कई
0: वो
1: बार
0: बनाया जा
1: बनाया होता
0: सकता
1: है ना, वो
0: है,
1: बनाया जा सकता है। उसमें भी आपको देखिए कि आप पानी का छिड़काव कर सकती हैं ताकि वो जगह थोड़ी सी ठंडी रहे।
0: बिल्कुल। और मीनाक्षी, खाना भी हमारे घरों में कई बार बच जाता है,
1: हाँ
0: अब अगर
1: हाँ
0: तो गांव में है तो वहाँ तो पशु पक्षी वैसे ही पशु मिल जाते हैं, शहर में भी अगर हम रहते हैं बहनों, खाना बच जाता है तो उस खाने को, मतलब आप साफ किसी थैली में डालकर किसी ऐसी साफ जगह पर रखें जहाँ पर आवारा पशु उसको खा सके, कम से कम उनका पेट भर जाए,
1: जी बिल्कुल
0: और खाने को साफ ही रखें, है ना,
1: बिल्कुल
0: खराब खाना भी ना डालें या उसमें कुछ कूड़ा वगैरह भी मिलाकर ना डालें,
1: जी,
0: कोशिश करें साफ खाने को साफ जगह पर रखें, तो
1: क्योंकि
0: कितना
1: देखिए
0: फायदा
1: सड़ा
0: होगा।
1: खाना अगर हम देते
0: हाँ
1: हैं तो,
0: हाँ
1: या खराब खाना हम देते हैं तो उसे पशुओं को फूड पॉइजनिंग भी हो
0: बिल्कुल,
1: सकती है। तो
0: बेचारे,
1: देखिए बहनों, ये जो छोटे छोटे जो हमारे प्रयास हैं ये किसी का जीवन जो है बचा सकते हैं।
0: जी, और हमारा छोटा प्रयास बड़ा फल दे सकता है।
1: बिल्कुल।

0: मीनाक्षी, देखो वैसे ये बात तो सही है कि हम कई बार उस चीज़ को कह देते हैं कि बड़ी अच्छी लगती है जो हमको आंखों से देख के अच्छी लग जाती
1: जी
0: है
1: जी
0: ना। जैसे कि हम अक्सर ये बोल देते हैं या सुन लेते हैं कि भाई फलाना व्यक्ति बहुत सुंदर
1: बहुत
0: है ना, ये
1: सुंदर है।
0: लड़की बड़ी सुंदर है इसीलिए इसीलिए लोग ज़्यादा उसको पसंद करते हैं, या फिर वो अच्छी ही होगी है ना, या ये अच्छा ही होगा क्योंकि देखने में देखो कितना सुंदर
1: सुंदर
0: है ना,
1: उसका
0: इसका
1: रंग
0: रंग
1: अच्छा
0: कितना अच्छा है, ये
1: बिल्कुल।
0: तो बढ़िया ही होगा लड़का
1: देखिए
0: या
1: दीक्षा,
0: लड़की।
1: ऐसी बात जो है कभी कभार हो जाती है और
0: हाँ
1: हमारे सामने ही होती है
0: हाँ
1: कि नए नक्शे अच्छे हैं या उसके
0: हाँ
1: नए
0: या
1: नक्शे
0: अच्छे
1: कुछ
0: नहीं
1: अच्छे
0: है।
1: नहीं हैं। ऐसे सेगमेंट्स तो कहीं ना कहीं किसी अपने या अनजान या दोनों के मुंह से हम लोगों ने सुनी ही है।
0: हाँ, और लेकिन बहनों, जो इंसान की असली पहचान है वो सिर्फ उसके चेहरे मोहरे से नहीं होती है ना। हम आंख तो लेते हैं कि सिर्फ चेहरे मोहरे और नैन नक्श से, लेकिन ये बहुत अधूरी सी पहचान है। क्यों मीनाक्षी?
1: बिल्कुल, बाहरी सुंदरता तो ज़्यादा दयालुता, ईमानदारी, मेहनत और समझदारी जैसी
0: खूबियाँ
1: खूबियां
0: जरूरी
1: जरूरी
0: है, ये
1: है ना।
0: बिल्कुल सही कहा।
1: लेकिन देखो ना, समाज में कई बार जो बाहरी सुंदरता को हम लोग ज़्यादा महत्व दे देते हैं।
0: बिल्कुल, पर सबसे अच्छी बात पता क्या है इसमें मीनाक्षी, कि हम आज जिस समाज में रह रहे हैं ना, ये लोगों की सुंदरता से ज़्यादा जानते हैं हम कि उनकी सुंदरता से ज़्यादा उनका संपूर्ण व्यक्तित्व, उनका जो कौशल है ना, उसको ज़रूरी है पहचान देना, उसको हम ज़्यादा तहरीज देते हैं।
1: जी बिल्कुल सही कहा दीक्षा।

0: और देखो, हमें भी जरूरत है सुंदरता
1: हम्म,
0: की, इस नई परिभाषा के हिसाब से खुद
1: खुद को
0: को और
1: बदलने,
0: खुद की सोच को जरूर बदलना चाहिए
1: जी
0: हमें।
1: जी और इसकी शुरुआत होगी तब जब हम सबसे पहले अपने आप को स्वीकार करेंगे।
0: जी
1: अब समाज क्या कहता है, हमें देखकर क्या सोचता है, उससे वो हमारे हाथ में नहीं है।
0: जी
1: फर्क तो हमें पड़ता है उसे, लेकिन वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन खुद के बारे में अच्छा सोचना है ना, अपने आप को स्वीकार करना कि हम जैसे हैं वैसे हम बहुत अच्छे हैं, वो हमारे हाथ में ज़रूर है।
0: देखिए ना, दीक्षा क्या होता है कि अगर हम हमेशा हर समय अपनी तुलना दूसरों से ही करते रहेंगे तो हमें खुद में संतुष्टि मिलेगी नहीं,
1: हाँ
0: कोई ना कोई
1: बिल्कुल,
0: कमी हमें नजर
1: दिखाई
0: आती
1: देती
0: ही रहेगी,
1: रहेगी।
0: है ना।
1: बिल्कुल सही
0: बेहतर
1: मीनाक्षी,
0: क्या है कि जो हमारे अंदर
1: खूबियाँ
0: खूबियां
1: हैं
0: हैं उसको
1: उसको,
0: हमें पहचानना है।
1: बिल्कुल। और जो खूबियाँ, देखो खूबियाँ पहचानने के साथ साथ मीनाक्षी हमें ये भी कोशिश करनी है कि हमारे अंदर जो कुछ कमियाँ हैं है ना, उसको भी हम पहचानें और उसको खूबियों में बदलने की कम से कम हम
0: बिल्कुल,
1: कोशिश तो कर ही सकते हैं।
0: कमियों को
1: क्योंकि
0: निखारना
1: हाँ,
0: चाहिए हमें
1: कमियों को
0: ना।
1: हमें निखारना, बिल्कुल सही, निखारने की हमें कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि तुलना तो कभी भी संतुष्टि नहीं देने वाली है।
0: बिल्कुल, और साथ ही में एक और चीज़ है कि हमें ऐसे लोगों की संगत करनी चाहिए जो आपको आपके स्वभाव और जो आपका व्यक्तित्व है
1: बिल्कुल
0: उसके लिए पसंद करते हैं, ना कि आपके रंग रूप की वजह से आपको पसंद करते हैं।
1: बिल्कुल, ये बड़ी सही बात कही मीनाक्षी, क्योंकि संगत जैसी होती है वैसा हमारा, वैसे कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी हो
0: रंगत
1: रंगत। तो अगर संगत अच्छी होगी, हम खुश मिजाज लोगों के बीच में रहेंगे, मतलब प्रोग्रेसिव लोगों के बीच में
0: जी
1: रहेंगे, जिनकी सोच उदार हो है
0: उदार
1: ना,
0: हो,
1: जिनकी
0: बिल्कुल
1: सोच उदार हो, उनके साथ रहेंगे तो हम खुद भी वैसे ही चरित्र के बनेंगे, अच्छा व्यक्तित्व हमारा बन के निखर के सामने आएगा। क्योंकि वैसे सच्चे रिश्ते जो होते हैं वो चेहरे से ही नहीं बल्कि हमारे व्यवहार से ही तो बनते हैं।
0: कई बार ऐसा होता नहीं है कि क्या कोई व्यक्ति जो है शुरू में होता है ना कि साधारण सा लगता है, लेकिन जब हम उसे बार बार मिलते हैं, जब हम उसको जानने लगते हैं, तो
1: हाँ,
0: वो व्यक्ति हमें
1: अच्छा
0: अच्छा
1: लगता है,
0: लगने लगता
1: बिल्कुल,
0: है
1: वो
0: ना।
1: हमें सुंदर लगने लगता है ना। सुंदरता की परिभाषा बड़ी अलग है बहनों। सुंदर क्या है, जिस जो सिर्फ चेहरे से दिखाई दे रहा है, या सुंदर वो है जिसके, जिससे मिलकर, जिससे बात करके, जिसके व्यक्तित्व में इतनी ताकत है कि वो आकर्षित करे हमको, है ना,
0: जी
1: वो है असली
0: बिल्कुल,
1: सुंदरता।
0: जैसे लोगों की जो अच्छाई है, उनकी
1: हाँ
0: उदारता है, ये तो उनकी जो है असली खूबसूरती हम कह सकते हैं।
1: बिल्कुल, काम के
0: और
1: प्रति उनकी लगन है ना
0: बिल्कुल
1: मीनाक्षी। अब अगर कोई खेत में कोई काम कर रही है कोई महिला, और वो धूल से सनी हुई है, लेकिन वो उसकी सुंदरता, वो धूल उसकी सुंदरता छुपा नहीं रही है, वो हमारी आंखों में है। वो धूल तो दिखा रही है कि उसकी काम के प्रति कितनी लगन
0: लगन
1: है,
0: है,
1: उनका
0: वो कितनी
1: संघर्ष,
0: मेहनत कर रही है
1: मेहनत।
0: ना।
1: हाँ, वही तो असली उनकी सुंदरता और पहचान है जो हमें देखनी चाहिए।
0: जी बिल्कुल, यानी कि हमें सुंदरता किसी के नए नक्श के आधार पर कभी भी नहीं आंकनी
1: हाँ
0: चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: और देखिए, घर से ही हम जो ये प्रीटी प्रिविलेज की शुरुआत कर सकते हैं। क्या करना चाहिए हमें, बच्चों के सामने किसी के रंग रूप, नए नक्श और कदकाठी प्रक्रमण करके हम क्या करते हैं, जाने अनजाने में उन्हें भी भीतरी
1: शुरू
0: सुंदरता
1: से ही,
0: देखने से
1: हाँ
0: दूर ही कर देते हैं।
1: बिल्कुल। और ये हर घर में होता है, तो कोशिश ये करनी है हमें बहनों कि हमें कम से कम बच्चों को और खुद को ये समझाना है कि हर व्यक्ति की कहानी अलग है, उसका
0: बिल्कुल
1: संघर्ष, उसकी काबिलियत और उसकी जो संवेदनशीलता है, उसके दम पर हमें उसे सम्मान देना है, ना कि सिर्फ रंग रूप देख के या नैन नक्श या कदकाठी देख कर। क्योंकि कहा भी है किसी ने कि अगर चरित्र में मीनाक्षी उदारता नहीं होगी
0: जी
1: ना,
0: जी
1: तो फिर बाहरी सुंदरता व्यर्थ
0: व्यर्थ
1: है।
0: है जी,
1: और वैसे ही हमारे कार्यक्रम की जो मधुरता है ना, क्या कहेंगे उसको,
0: हाँ
1: वो भी
0: जी
1: व्यर्थ हो जाएगी अगर हम बहनों को कोई बढ़िया सा गीत ना सुना दे तो।
0: जी

0: मीनाक्षी, देखो जिस हिसाब से गर्मियां हैं ना, पांव तो सच में जमीन पर नहीं
1: नहीं पड़
0: पड़ते
1: रहे
0: हैं।
1: हैं।
0: लेकिन एक चीज है, अगर इन गर्मियों में भी हमारी त्वचा की और हमारी सेहत बढ़िया बनी रहे ना, एकदम चमकदार त्वचा के साथ हम रहें, तो फिर हम हवा में भी उड़ने लग जाते हैं। मतलब बड़ा खुश हो जाता है मन अंदर से, है ना।
1: बिल्कुल दीक्षा, और इस मौसम में थोड़ी सी सावधानी और सही देखभाल से त्वचा को स्वस्थ तो हम बना ही सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो त्वचा को स्वस्थ और तरोताजा बनाए रखने के लिए कुछ ब्यूटी टिप्स भी बहनों के साथ शेयर कर देते हैं।
0: क्यों नहीं बहनों, गर्मी में देखिए हमारे शरीर से पसीने के रूप में बहुत पानी निकल जाता
1: जी
0: है
1: जी।
0: और ये हम सब जानते हैं। बहनें आप जानती हैं बहुत अच्छी तरीके से ना, और आप मुस्कुरा भी रही होंगी ज़रूर सुनकर कि पानी पीने के लिए आपको कितनी बार कहा जाता है, लेकिन फिर भी हम लोग, हम और आप कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं उसको, है ना। हम
1: बहाना बना देते हैं
0: हाँ काम का बहाना या कुछ भी मीनाक्षी, पर बड़ा मुश्किल है वैसे खुद को बार बार हाइड्रेटेड करते रहना। तो बहनों ये

0: कोशिश रखनी है कि जो हमारे गर्मी की वजह से पसीने के रूप में जो इतना पानी निकल गया है उसकी पूर्ति भी हम करें, खूब सारा पानी पिए दिन भर। इससे क्या होगा, एक तो त्वचा हाइड्रेटेड रहेगी और चेहरे पर प्राकृतिक जो चमक है वो बनी रहेगी।
1: जी, और साथ में ऐसे फ्रूट जो है अपने आहार में आप शामिल कर सकती हैं जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है।
0: बिल्कुल,
1: और आपको दिन में 2 या 3 बार हल्के यानी कि माइल्ड फेस वॉश से आपको अपना चेहरा धोना है, और इससे क्या होता है कि धूल और तेल और पसीना साफ हो जाता है, और धूल पसीना और अगर तेल होना तो उससे पिंपल्स भी की समस्या हो जाती है दीक्षा।
0: बिल्कुल, तो इसीलिए चेहरे की सफाई ज़रूरी है।
1: जी,
0: और इसके लिए आप जब फेस वॉश यूज़ करते हैं तो आप कोई प्राकृतिक क्लिंजर भी ले सकती हैं, है ना, उससे भी आप चेहरे को साफ़ करें, क्योंकि जितना चेहरा साफ होगा ये जो हमारे रोम छिद्र हैं ना जिसको हम पोर्स बोलते हैं उससे निकलने वाले तेल से ही हमारे ब्लैक हेड्स बनते हैं, तो वो जितना साफ़ रहेगा हमारा वो अच्छा है। इसीलिए आप हफ्ते में स्क्रबिंग भी करिए साथ साथ में, एक बार तो आप स्क्रबिंग कर सकते हैं हफ्ते में।
1: जी, साथ ही में त्वचा को हेल्दी बनाने के लिए डाइट भी अच्छी होनी चाहिए, खासकर उसमें एंटीऑक्सीडेंट होने चाहिए, ऐसा हमारे को अपना आहार लेना
0: चाहिए,
1: चाहिए,
0: बिल्कुल।
1: है ना, जैसे लहसुन है, गाजर है, टमाटर है ना, ये सारी चीज़ें जो अपने डाइट में हम शामिल कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, और आजकल मीनाक्षी सर्दियों में ठंडे ठंडे हमें तरबूज खाने का कितना मज़ा आता है ना, एक तो उसमें पानी इतना सारा होता है तो वो भी हमारे लिए अच्छा है। साथ में जो जैसे माल्टा संतरा वगैरह, माल्टा आजकल होते हैं है ना, मौसमी आजकल हैं, वो चीज़ें हम खाएं, अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें, और कोई ना कोई फ्रूट आप दिन भर में ज़रूर लें, वो गर्मी को भी मात देगा और हमारे चेहरे के लिए भी अच्छा है।
1: जी, साथ ही में धूप में निकलने से पहले सनस्क्रीन लोशन लगाना ना भूलें,
0: जी
1: चेहरे को ये क्या करता है कि तेज़ धूप से भी बचाता है और साथ में झुर्रियों की समस्या से भी राहत देता है।
0: बिल्कुल, तो ऐसी ही कुछ चीज़ें हैं बहनों, इनको आप जब अपने रूटीन में शामिल करेंगे तो गर्मियों के मौसम में भी जो हमारी त्वचा है वो ऐसी ही चमकदार और स्वस्थ बनी रहेगी।
1: जी।

0: बहनों, हमारी भी यही कामना है कि आपके जीवन का हर जो मोड़ है वो एक खुशहाल भविष्य की तरफ ही जाए। और इसी के साथ मीनाक्षी, कार्यक्रम का समय भी अब संपन्न होने को है। लेते हैं बहनों से अनुमति।
1: नमस्कार।

0: महिला सम्मेलन कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी शिमला से। एक बजने को है अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार रिले होंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत अब तक 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये योजना सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा की पहल नहीं है, बल्कि ये नागरिकों को बिजली उपभोक्ता से बिजली उत्पादक बना रही है। इस योजना से परिवारों को बिजली के खर्च में कमी लाने, सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने और शून्य बिजली बिल की ओर बढ़ने में मदद मिल रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज देश के सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने के निर्देश दिए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय की आवश्यकता पर बल दिया। पीठ ने कहा कि जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। विचाराधीन कैदी को उसी दिन या अधिकतम अगले दिन रिहा किया जाना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सबस्ट्रेट निर्माण तकनीक को भारत में लाने के लिए ओडिशा सरकार, इंटेल और 3DGS को समझौता ज्ञापन पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि इससे भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को और बढ़ावा मिलेगा। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बंगलुरु में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। हालांकि श्री सिद्धारमैया को कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पद पर बने रहने के लिए कहा गया है। इस दौरान उन्हें कोई भी कार्यकारी निर्णय लेने से मना किया गया है। श्री सिद्धारमैया ने कल लोकभवन में अपना इस्तीफा सौंपा था। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की

0: आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।
1: आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक है। राष्ट्रपति पुतिन ने हाल ही में इसे बहुत ही प्रभावशाली ढंग से रेखांकित किया है। उन्होंने महसूस किया है कि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सभी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों को ध्यान देने की जरूरत है। ये मानवता के सभी मूल्यों पर प्रहार करता है। भारत खुद ही इस प्रायोजित आतंकवाद का शिकार रहा है। अप्रैल 2025 में पूरी दुनिया ने जम्मू कश्मीर में 26 निर्दोष नागरिकों की जघन्य हत्या देखी है।
0: भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत इस वर्ष के अंत तक पूरी कर लेने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने महत्वाकांक्षी और परस्पर लाभकारी CEPA समझौते के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। भारत के लिए पेट्रोलियम ला रहा एक टैंकर होर्मुज जलडमरू मध्य से सफलतापूर्वक निकल चुका है। ये जानकारी समुद्री यातायात पर नजर रखने वाली कई वेबसाइट से मिली है। टैंकर निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर विशाखापट्टनम की ओर बढ़ रहा है। इसके 3 जून को वहां पहुंचने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में कल देर रात आए तूफान में निर्माणाधीन पुल के ढहने से 6 मजदूरों की मौत हो गई। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल बचाव कार्य में लगे हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख दर्ज किया गया। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 69 अंक गिरकर 75,799 पर था, जबकि निफ्टी 54 अंक की गिरावट के साथ 23,854 पर कारोबार कर रहा था। एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन किया। महिला वर्ग में 100 मीटर दौड़ में निपम ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। The Supreme Court today directed all high courts across the country to pronounce judgments within 3 months of reserving them. The apex court also noted that delays in the delivery of judgments can cause irreparable harm to litigants. Underlining that faster decisions are required in cases of personal liberty, a bench comprising Chief Justice Suryakant and Justice Joymalia Bagchi said orders in bail applications should be pronounced the same day, and if they are reserved, they must be pronounced and uploaded the next day. Issuing a slew of directions, the top court said the order of bail or sentence suspension should be communicated to the jail authorities as soon as it is pronounced, and the under trial convict should be released preferably the same day or at most the next day. An India-bound oil tanker, Nisos Keros, has successfully crossed the Strait of Hormuz and is en route to Visakhapatnam with an expected arrival on the 3rd of next month. The Marshall Islands-flagged vessel departed from Sharjah on the 21st of this month and was tracked in the northern Arabian Sea off India's west coast this morning. Iran's news agency reported that the Islamic Revolutionary Guard Corps Navy had facilitated the passage of 23 commercial vessels through the strait in 24 hours amid ongoing tensions over proposed transit fees by Tehran. Iran has proposed regulating maritime traffic via a new authority, while the United Nations maintains that imposing transit fees in international waters is illegal. The United States has called for free navigation through the strategic waterway. Karnataka Governor Thawar Chand Gehlot has accepted the resignation of Chief Minister Siddaramaiah in Bengaluru today and dissolved the Council of Ministers with immediate effect. However, he has been asked to continue in office as caretaker Chief Minister until alternative arrangements are made, asking him not to take any executive decisions during this period. Siddaramaiah had submitted his resignation letter at the Lok Bhavan yesterday. In Uttar Pradesh, 6 workers were killed after an under-construction bridge collapsed during a late-night storm in Hamirpur. The bridge, which stretches from Morakandar to Kandor village, was being built over the Betwa River.

0: पंचायत से, और पंचायत मजबूत बनती है आपके एक वोट से,
1: क्योंकि ईमानदारी और बिना किसी के प्रभाव में आए दिए गए आपके वोट ही तय होते हैं गांव और बनती है सड़क, पानी, स्वच्छता और रोजगार संबंधी नीतियाँ।
0: इसीलिए 26 मई, 28 मई और 30 मई को होने वाले पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर अपनी भागीदारी निभाएं।
1: अपने परिवार और गांव वालों को भी जागरूक बनाएं और 100% मतदान के संकल्प को हासिल करने का लक्ष्य बनाएं।
0: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।
2: FM शिमला पर आप सुन रहे हैं म्यूजिक मस्ती कार्यक्रम। लीजिए सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में सौतन की बेटी फिल्म का ये गीत।

0: जी है, आइए प्रकृति से प्रेम करें और हिमाचल को हरियाली और स्वच्छता का आदर्श बनाएं। जय हिंद, जय हिमाचल।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जनहित में जारी।
2: FM शिमला पर आप सुन रहे हैं म्यूजिक मस्ती कार्यक्रम। लीजिए सुनिए आशा भोसले और सुरेश वाडकर की आवाज़ों में परिंदा फिल्म का ये गीत।

0: हिमाचल प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण हेतु वचनबद्ध है। आइए सुनते हैं माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का संदेश।
1: नमस्कार। विश्व पर्यावरण दिवस हमें प्रकृति के संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास करवाने का महत्वपूर्ण अवसर है। हिमाचल प्रदेश को प्रकृति ने सुंदर पहाड़, साफ पानी और शुद्ध हवा का अनमोल उपहार दिया है। आइए हम सब मिलकर अपने पर्यावरण को स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित बनाने का संकल्प लें। पेड़ लगाएं, पानी बचाएं और प्रकृति की रक्षा में अपना योगदान दें। स्वस्थ पर्यावरण ही आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी

0: चुनाव सिर्फ एक शब्द नहीं, ये है सच्चे लोकतंत्र की नींव, और मतदान है एक जागरूक नागरिक की पहचान, जिसे इस्तेमाल कर वो तय करते हैं अपने क्षेत्र, राज्य और देश की दशा व दिशा।
1: तो आइए अपनी जिम्मेदारी निभाएं, आगामी पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़ कर भाग लें और गांव के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।
0: आपका एक एक वोट तय करेगा पंचायत का भविष्य। तो निर्धारित तिथि को अपने नजदीकी मतदान केंद्र पर जाकर सोच समझ कर और बिना किसी प्रभाव के मतदान जरूर करें, क्योंकि ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारी ही नहीं अधिकार है।
1: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: लीजिए सुनिए मुजरिम फिल्म का गीत, आवाजें मोहम्मद अजीज और साधना सरगम की हैं।
3: लिखना पढ़ना सीखा तो बस

0: आपका गांव है आपका गर्व, इसको विकसित बनाने के लिए आइए मिलके मनाएं लोकतंत्र का पर्व।
1: हो चुकी है देवभूमि हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा। ये मतदान 3 चरणों में 26, 28 और 30 मई को होगा। ऐसे में आए एक सच्चा नागरिक बनकर मिलकर निभाएं जिम्मेदारी और भारी संख्या में मतदान देकर दिखाएं अपनी भागीदारी।
0: आपका हर एक कीमती वोट आपके गाँव की दशा और दिशा तय करेगा, तो अपने मताधिकार का प्रयोग करना ना भूलें। राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

एफएम शिमला पर आप सुन रहे हैं म्यूजिक मस्ती कार्यक्रम। लीजिए सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज की आवाजों में प्यार का देवता फिल्म का गीत। गीत के बोल आनंद बख्शी के हैं। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: हमारा गांव है हमारी पहचान, हमारा गांव है हमारा अभिमान। आइए मिलकर दें इसके विकास में अपना योगदान।
1: हम सब ने ठाना है कि 100% मतदान के लक्ष्य को पाना है।
0: पंचायत चुनाव आ रहे हैं, जहां आपका हर ईमानदारी से दिया गया वोट तय करता है गांव की दशा और दिशा, साथ ही बनता है गांव के विकास का आधार।
1: तो 26, 28 और 30 मई को होने वाले पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और अपने परिवार और आस पास के हर वोटर को मतदान के लिए प्रेरित करे।
0: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।
2: FM शिमला पर आप सुन रहे हैं म्यूजिक मस्ती कार्यक्रम। लीजिए सुनिए दिल फिल्म का गीत। आवाजें उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की हैं। गीत के बोल समीर ने लिखे हैं और धुन बनाई है आनंद मिलिन ने।

0: मौसम क्या कहता है?
1: पता नहीं,
0: गौर से देखो।
2: लीजिए सुनिए कविता कृष्णमूर्ति और शब्बीर कुमार की आवाजों में जान पहचान फिल्म का गीत।

0: हिमाचल के युवाओं, अब सिर्फ सोशल मीडिया पर ओपिनियन देने का नहीं, वोट देने का भी वक्त आ गया है।
1: इस पंचायत इलेक्शन में 50 लाख से ज्यादा वोटर्स अपने मत का अधिकार इस्तेमाल करेंगे और हजारों फर्स्ट टाइम वोटर्स भी बनेंगे इस बदलाव का हिस्सा। 26 मई, 28 मई और 30 मई, याद रखिए ये तारीखें।
0: आपकी एक वोट आपके गाँव की सोच, विकास और लीडरशिप को तय करेगी। तो निकलिए घर से और बनिए जिम्मेदार नागरिक। पंचायत चुनाव 2026, वोट जरूर करें।
2: लीजिए सुनिए कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में प्यार दीवाना होता है फिल्म का ये गीत।

103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम शिमला का प्रसारण। दोपहर के 2 बजे हैं एफएम शिमला पर, वक्त है सबरंग कार्यक्रम का।

0: हिमाचल प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण हेतु वचनबद्ध है। आइए सुनते हैं माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का संदेश।
1: नमस्कार। विश्व पर्यावरण दिवस हमें प्रकृति के संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास करवाने का महत्वपूर्ण अवसर है। हिमाचल प्रदेश को प्रकृति ने सुंदर पहाड़, साफ पानी और शुद्ध हवा का अनमोल उपहार दिया है। आइए हम सब मिलकर अपने पर्यावरण को स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित बनाने का संकल्प लें। पेड़ लगाएं, पानी बचाएं और प्रकृति की रक्षा में अपना योगदान दे। स्वस्थ पर्यावरण ही आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। आइए प्रकृति से प्रेम करें और हिमाचल को हरियाली और स्वच्छता का आदर्श बनाएं। जय हिंद, जय हिमाचल।
2: हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जनहित में जारी।
3: FM शिमला पर आप सुन रहे हैं सबरंग कार्यक्रम। लीजिए सुनिए गुलाम अली की आवाज में ये गजल।

सबरंग कार्यक्रम अभी आपने सुना। 2:15 होने को हैं। अब दोपहर हिंदी समाचार आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से प्रसारित होंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने का निर्देश दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई और योग्य छात्रों के हितों की सुरक्षा का आश्वासन। पीएम सूर्य घर योजना को महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल, इसके अंतर्गत 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए गए। मौसम विभाग का जून में पूरे देश में सामान्य से कम वर्षा का अनुमान, कई राज्यों में लू की संभावना। हांगकांग में आयोजित अंडर 20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने आज देश के सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। एक रिपोर्ट।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय की आवश्यकता पर बल दिया। पीठ ने कहा कि जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। विचाराधीन कैदी को उसी दिन या अधिकतम अगले दिन रिहा किया जाना चाहिए। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। डीडी न्यूज को दिए एक विशेष साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनर्परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के सम्पन्न की जाएगी।
2: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने री नीट की घोषणा किया है और री नीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
0: छात्रों को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार उनकी चिंताओं को समझती है और उन्होंने स्वीकार किया कि छात्रों के विश्वास को ठेस पहुंची है। श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि परीक्षा प्रक्रिया को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच त्रुटि रहित परीक्षा आयोजित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।
2: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है, हमारी ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है। जो रक्षक था वही भक्षक हुआ, जो शिक्षक को हमने

0: जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए, उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, उनके षड्यंत्र के शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारी प्रयास।
1: परीक्षा प्रक्रिया में भविष्य में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए उठाए जा रहे ठोस कदमों के बारे में श्री प्रधान ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सबस्ट्रेट निर्माण तकनीक को भारत में लाने के लिए समझौता करने पर ओडिशा सरकार, इंटेल और 3DGS को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि इससे भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को और बढ़ावा मिलेगा। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत मजबूत अर्थव्यवस्था

0: को भारत में लाने के लिए समझौता करने पर ओडिशा सरकार इंटेल और 3DGS को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि इससे भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को और बढ़ावा मिलेगा। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है और सुधारों तथा नीतिगत समर्थन के माध्यम से वस्त्र क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हो रही है। आंध्र प्रदेश के 2 दिन की यात्रा के दौरान आश्रय सिंह ने कृष्णा जिले के मल्लावल्ली औद्योगिक पार्क में स्थित मोहन स्पिनटेक्स कंपनी का दौरा किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भारत के वस्त्र बाजार का कारोबार 15 लाख करोड़ रूपये से अधिक है और सरकार वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक करने पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर उन्होंने कहा कि भारत को वैश्विक स्तर पर अधिक पहचान मिली है।
1: 12 साल अगर कंपेयर करूं मैं तो एक ही चीज कहा, इकोनॉमी में, एक्सपोर्ट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो जो बेसिक चीजें हैं एजुकेशन में, IIT, एम्स, मेडिकल कॉलेज, ये कई ऐसे सवाल हैं। मोदी ने बेसिक चीजों को 12 साल में ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत अब तक 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये योजना सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा की पहल नहीं है बल्कि नागरिकों को बिजली उपभोक्ता से बिजली उत्पादक बना रही है। इस योजना से परिवारों को बिजली के खर्च में कमी लाने, सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने और शून्य बिजली बिल की ओर बढ़ने में मदद मिल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर एक अभूतपूर्व सफलता थी जिसमें भारत ने पाकिस्तान को 4 दिन में ही युद्ध विराम के लिए विवश कर दिया। ये भारत के अब तक के लड़े गए सभी युद्धों से अलग था। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर स्मृति प्रकाशन जारी करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये प्रकाशन केवल ऐतिहासिक विवरण तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसमें वीर सैनिकों के व्यक्तिगत अनुभवों को भी समाहित किया गया है। श्री सिंह ने कहा कि ये आधुनिक युद्ध के मानवीय पहलू की भी झलक देता है जहां नेतृत्व, साहस, दबाव में निर्णय लेने की क्षमता और प्रतिबद्धता रणनीति को सफलता में बदल देती है। रक्षा मंत्री ने इस प्रकाशन से प्रेरणा लेने और देश की सुरक्षा तथा संप्रभुता को सुनिश्चित करने और बलिदान योग्य नागरिक बनने का आग्रह किया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आंतरिक और वैश्विक शांति प्राप्त करने के लिए भक्ति और ध्यान को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। आज बंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन इंटरनेशनल सेंटर के 45वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भक्ति स्वयं, परिवार, समाज, राष्ट्र और मानवता के प्रति समर्पण का प्रतीक है। रिजर्व बैंक ने आज अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। इसमें कहा गया है कि ऊर्जा की ऊंची कीमतों, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और वैश्विक बाजार में अस्थिरता जैसी चुनौतियों के बाद भी मजबूत व्यापक आर्थिक बुनियादी कारक चालू वित्त वर्ष में भारत के विकास गति को बनाए रखेंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि कॉरपोरेट और बैंकिंग क्षेत्रों की स्वस्थ बैलेंस शीट, साथ ही पूंजीगत व्यय पर सरकार का निरंतर ध्यान आर्थिक विकास को मजबूती प्रदान करेगा। इसमें भू राजनीतिक संकट और पश्चिम एशिया संघर्ष वैश्विक विकास तथा मुद्रास्फीति को प्रभावित करने वाली प्रमुख चिंताओं के रूप में उभरे हैं। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज संसद भवन परिसर में संसदीय कार्य मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मेघवाल ने कहा कि बैठक में सांसदों, विधायकों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सरकारी कार्यों में हिंदी के प्रभावी, सरल और व्यापक उपयोग पर सार्थक चर्चा हुई। श्री मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार हिंदी भाषा को सुशासन, जनभागीदारी और लोकतांत्रिक संवाद का एक सशक्त माध्यम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बंगलुरु में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। हालांकि श्री सिद्धारमैया को

0: कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पद पर बने रहने के लिए कहा गया है। इस दौरान उन्हें कोई भी कार्यकारी निर्णय लेने से मना किया गया है। श्री सिद्धारमैया ने कल लोकभवन में अपना इस्तीफा सौंपा था। भारत के लिए पेट्रोलियम ला रहा एक टैंकर होर्मुज जलडमरू मध्य से सफलतापूर्वक निकल चुका है। ये जानकारी समुद्री यातायात पर नजर रखने वाली कई वेबसाइट से मिली है। टैंकर निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर विशाखापट्टनम की ओर बढ़ रहा है। इसके 3 जून को वहां पहुंचने की उम्मीद है। ईरान की सरकारी एजेंसी ने बताया है कि ईरान के प्रस्तावित पारगमन शुल्क को लेकर जारी तनाव के बीच इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने 24 घंटों में 23 वाणिज्यिक जहाजों को जलडमरू मध्य से गुजरने की अनुमति दी। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत इस वर्ष के अंत तक पूरी कर लेने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने महत्वाकांक्षी और परस्पर लाभकारी CEPA समझौते के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। सशस्त्र सीमा बल ने 2 थाई महिला नागरिकों को भारत नेपाल सीमा के खारीबारी क्षेत्र से नेपाल में प्रवेश करने की कोशिश के दौरान गिरफ्तार कर लिया। ये महिलाएं फर्जी आवेदन मोहरों का इस्तेमाल कर नेपाल में प्रवेश करने की कोशिश कर रही थीं। जांच जारी है। दिल्ली सरकार 21 जून को होने वाली नीट UG परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को दिल्ली परिवहन निगम की सभी बसों में मुफ्त यात्रा प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उम्मीदवार वैध प्रवेश पत्र दिखाकर मुफ्त यात्रा कर सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत की पहली एकीकृत अगली पीढ़ी की विमानन मौसम और कोहरे की निगरानी प्रणाली स्काईकास्ट का उद्घाटन किया। यह उद्घाटन मिशन मौसम के अंतर्गत किया गया है। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि इस नई प्रणाली का उद्देश्य हवाई अड्डे पर मौसम की निगरानी और कोहरे के पूर्वानुमान को मजबूत करना है।
1: आज हम विमानन क्षेत्र के जरिए देश को एक इंटीग्रेटेड मौसम निगरानी सिस्टम समर्पित कर रहे हैं। यह सिस्टम हवाई यात्रियों, एयर क्रू और पायलटों को मौसम का सटीक अनुमान लगाने में सक्षम बनाएगा, खासकर उस समय जब कोहरे और धुंध वाले मौसम में प्रदूषण और हवा में मौजूद अन्य कणों के कारण दृश्यता काफी प्रभावित होती है। यह एक इंटीग्रेटेड उपकरण स्काईकास्ट के माध्यम से संभव होगा।
0: मौसम विभाग ने जून से सितंबर के बीच दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में देश भर में सामान्य से कम वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मीडिया को संबोधित करते हुए विभाग के महानिदेशक डॉ. मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि जून माह में देश की औसत वर्षा सामान्य से कम रहने की सबसे अधिक संभावना है।
2: 2026 के जून से सितंबर के दौरान पूरे देश में सामान्य से कम बारिश होने का सबसे ज्यादा संभावना है। उत्तर पूर्व भारत में सामान्य वर्षा होने का संभावना है। अभी जून महीने के तापमान की बात करें तो हरियाणा, पंजाब, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़, गुजरात और आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में तथा महाराष्ट्र, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ क्षेत्र में सामान्य से अधिक हीट वेव कंडीशन डेवलप होने का उम्मीद किया जा रहा है। हालांकि राजस्थान और झारखंड में सामान्य से कम उष्ण लहर होने का संभावना है।
0: मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों के लिए तूफान और बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिमी राजस्थान और विदर्भ के कुछ हिस्सों में आज भी लू चलने की आशंका है। रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन किया। महिला वर्ग में 100 मीटर दौड़ में निपम ने कांस्य पदक जीता। इस स्पर्धा में पदक जीतने वाली वे पिछले 25 वर्ष में पहली भारतीय महिला बनी। वहीं महिला ट्रिपल जंप में साधना रवि ने रजत पदक जीता। नितिन गुप्ता ने पुरुष वर्ग में 5000 मीटर पैदल चाल का खिताब जीता। पुरुषों के अंडर 18 एशिया कप में भारत ने आज जापान के काका मिगाहरा में कजाकिस्तान पर 13-0 की शानदार जीत दर्ज की। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला

0: मामला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने दिवंगत नेता की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर फैसला सुनाने का निर्देश दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई और योग्य छात्रों के हितों की सुरक्षा का आश्वासन। पीएम सूर्य घर योजना को महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल। इसके अंतर्गत 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए गए। मौसम विभाग का जून में पूरे देश में सामान्य से कम वर्षा का अनुमान। कई राज्यों में लू की संभावना। और हांगकांग में आयोजित अंडर-20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज़ और FM 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। 2:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है स्पीति कार्यक्रम।

था इलुनपु के कपला थिंग के लेरुम निपा दे थने स्पीति की अर्थव्यवस्था के कोलशे नहीं पीति हिमालय विरिथुंपु की जुंग दो छा दकन सचा चुकुन चिक हिंदुसिया पीति हिमाचल प्रदेश के छांगशर विछोला योकासिया पीति से न भेजे गया कन्य जुंग दो छा दकन सचल सेसिया पीति यूल मांग से तने पीति साउन ये थंदो नेर छा दकासिया पीति शर विछोला भेजे तने चांग विछोला लद्दाख छे नु विछोला खरजा छे लो विछोला कुल्लू छे लोशर विछोला तने किनोर खुनु योकासिया पीति सच मीनांग मत ठांगमो योगासिया तने इरु छर्व मीनांग मत न्युकुन छेजलो तने गुंग मीनांग मत ठांगमो छेज रिंबो योगासिया तने पीतिरु तने मिसतांगजे दे तने लेलामो मेकासिया तने पीतिरु मी देकन का मीनांग मांबु मेकासिया तने पीति के तने अर्थव्यवस्था तने पेंजोर के कोल शेन तने ngal la tene piti mi ge tene rang mi se tang na ki pila tene singa tap ka asia tene singa tap chi singa ne khang lo to yong ang ga rang o ti ge rang

था। इलुन्यपु के कपड़ा थिरिंग के खास लोन डरेंगे नाहीन प्रदेश पंचायती राज संस्थाओं की दूसरी चरण के चुनाव दांग सिंह सौसिया थे इस सेना थे वोटिंग गेचा गेचु दुखसिया प्रदेश तो ताकसांग रूप थे पंचायती राज चुनाव गेनेलो वोटिंग मांगशो दी दूसिया दूसरी चरण प्रदेश रू कुल चिकतोंग गेबग्या दुंजु थोरगु पंचायत गेरु वोट चुगवासिया प्रदेश तो पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की फिलत ने मतदान चुगना नांगमू सिंह डोसिया तेने ई की फिलत ने उम्मीदवार गया खम्बा खम्बा गेर पूछे तेने खम्बा गेलो वोट चुचे ज्ञान चुग डोजी से डोरुसिया प्रदेश तो तेने तीसरी चरण लतने चिकतों गेरा गेचु

0: स्पीति कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी के शिमला केंद्र से। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। 3 बजने को हैं, अब प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्र भी रिले करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी की डीटीएच सेवा और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी सुने जा सकते हैं।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश में कल 30 मई को पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के तीसरे व अंतिम चरण के लिए मतदान होगा। मतदान के लिए चुनाव आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतदान सुबह 7 बजे शुरू होगा और दोपहर 3 बजे तक चलेगा। मतदान के तुरंत बाद पंचायतों में प्रधान, उपप्रधान और सरपंचों के लिए पड़े वोटों की गिनती होगी, जबकि जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए हुए मतदान की गिनती 31 मई को होगी। 31 मई को ही प्रदेश के 4 नगर निगमों सोलन, मंडी, पालमपुर और धर्मशाला के लिए हुए चुनाव की मतगणना भी होगी। पंचायती राज संस्थाओं के तीसरे चरण के चुनाव के लिए कल 1187 पंचायतों में वोट डाले जाएंगे। इस बीच कल होने वाले अंतिम चरण के चुनाव के लिए आज उम्मीदवारों ने अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए राज्य के विभिन्न हिस्सों में घर घर जाकर वोट मांगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। उन्होंने आश्वासन दिया कि पुनर्परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के संपन्न की जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने इस कार्य को सुचारू रूप से संपन्न कराने में सभी से सहयोग की अपील भी की।
2: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने री नीट की घोषणा किया है, वो री नीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
1: केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने छात्रों को आश्वासन दिया कि सरकार उनकी चिंताओं को समझती है। उन्होंने गुणवत्ता और पारदर्शिता पर जोर देते हुए परीक्षा प्रणाली में निष्पक्षता बनाए रखने की प्रतिबद्धता भी जताई।
2: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है, हमारी ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है। जो रक्षक था वही भक्षक हुआ। जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए, उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, उनके षड्यंत्र के शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारी प्रयास है।
1: भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। केंद्रीय नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत अब तक 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये योजना सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा की पहल नहीं है, बल्कि ये नागरिकों को बिजली उपभोक्ता से बिजली उत्पादक बना रही है। इस योजना से परिवारों को बिजली के खर्च में कमी लाने, सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने और शून्य बिजली बिल की ओर बढ़ने में मदद मिल रही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सौर ऊर्जा से चलने वाले हर घर के साथ देश ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण स्थिरता और आत्मनिर्भर विकसित भारत के सपने को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। चंबा जिले में नशे व नशा तस्करी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। नशीली दवाओं, मादक द्रव्यों की रोकथाम और उनकी धरपकड़ के लिए प्रशासन ने आवश्यक कदम उठाए हैं। वहीं संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अपने कार्यक्षेत्र

0: क्षेत्र में विशेष रूप से स्कूलों और कॉलेजों में चिट्टा व अन्य मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए ठोस और प्रभावी कदम उठाएं। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे चंबा जिला संवाददाता।
1: जिला चंबा में नशा विरोधी अभियान के तहत एनडी एंड एनडीपीएस एक्ट के तहत वर्ष 2026 में अब तक 43 मामले दर्ज किए गए हैं। इन मामलों में कुल 64 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस अपनाते हुए शिक्षा विभाग को विद्यालयों में नशे से दूर रखने के लिए विद्यार्थियों को जागरूक करने, उचित स्थानों पर शिकायत पेटियां स्थापित करने तथा समय समय पर काउंसलिंग सत्र आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं इसके अतिरिक्त हिमाचल पथ परिवहन निगम के अधिकारियों को बस अड्डों पर डिजिटल स्क्रीन स्थापित कर नक्शा मुक्ति और नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता फैलाने के निर्देश भी दिए गए हैं। इस आकाशवाणी के लिए चंबा से विकास ठाकुर।
0: प्रदेश के निचले व मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी का दौर लगातार जारी है। ऊना में कल अधिकतम तापमान 43.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। संबंधित जिला प्रशासन ने अत्यधिक गर्मी के चलते एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने और स्वास्थ्य सुरक्षा उपाय अपनाने की सलाह दी है। इस बीच मौसम विभाग ने आज कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर जिलों में कुछ स्थानों पर वर्षा, ओलावृष्टि और 40-50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट, जबकि चंबा, कांगड़ा और सोलन जिले में कहीं कहीं वर्षा व अंधड़ का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर सहित जनजातीय जिले लाहौल स्पीति और किन्नौर में मौसम के साफ रहने की संभावना जताई है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 6:30 बजे। नमस्कार।
2: प्रादेशिक समाचारों के बाद आइए सुनते हैं सामयिक चर्चा। विषय है मिशन 32% वन विस्तार की ओर बढ़ते कदम। वाचिका है प्रभा शर्मा।
3: प्रदेश अपनी प्राकृतिक सुंदरता, घने जंगलों और समृद्ध जैव विविधता के लिए देश भर में जाना जाता है। बदलते जलवायु परिदृश्य, बढ़ते तापमान और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव के बीच पर्यावरण संरक्षण आज सबसे बड़ी आवश्यकता बन चुका है। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026-27 के बजट में एक दूरदर्शी पहल के रूप में मिशन 32% की घोषणा की है। इस मिशन का उद्देश्य वर्ष 2030 तक प्रदेश के वन आवरण को 32% तक पहुंचाना है। ये पहल केवल वन क्षेत्र बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन से मुकाबला, जैव विविधता संवर्धन और सतत विकास की व्यापक सोच को भी दर्शाती है। पर्वतीय राज्य होने के कारण हिमाचल प्रदेश के लिए वन केवल प्राकृतिक धरोहर नहीं, बल्कि जल स्रोतों, मिट्टी संरक्षण और स्थानीय आजीविका का आधार भी है। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 के अनुसार पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 2/3 भाग वन और वृक्ष आवरण के अंतर्गत होना चाहिए। इसी लक्ष्य की दिशा में प्रदेश सरकार निरंतर प्रयासरत है। मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना के तहत सरकार प्रदेश भर की बंजर और अनुपयोगी पहाड़ियों को फिर से हरित बनाने का अभियान चला रही है। इसके अंतर्गत लगभग 257 हेक्टेयर बंजर पहाड़ियों पर पर्यावरण अनुकूल प्रजातियों के पौधों का रोपण किया जाएगा। पिछले 3 वर्षों में प्रदेश सरकार ने वन विस्तार और संरक्षण को लेकर कई अभिनव पहलें शुरू की हैं। इनमें मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इस योजना के तहत आगामी वित्तीय वर्ष में 5000 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है। इनमें से 3376 हेक्टेयर क्षेत्र की पहचान की जा चुकी है, जबकि शेष क्षेत्र की पहचान की प्रक्रिया जारी है। इस योजना की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इसमें केवल पौधे लगाने तक सीमित नहीं रखा गया है, बल्कि स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप पौधों का चयन किया जा रहा है। योजना के तहत लगाए जाने वाले पौधों में लगभग 60% फलदार प्रजातियों को शामिल किया गया है। इससे एक ओर पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा तो दूसरी ओर भविष्य में स्थानीय समुदायों के लिए आय और स्वरोजगार के अवसर भी विकसित होंगे। इस योजना के पहले चरण में लगभग 600 हेक्टेयर बंजर भूमि पर सफलतापूर्वक पौधरोपण किया जा चुका है। इससे स्पष्ट है कि सरकार पर्यावरणीय लक्ष्यों को केवल कागजों तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि उन्हें धरातल पर प्रभावी रूप से लागू कर रही है। इसी दिशा में राजीव गांधी वन संवर्धन योजना

0: वन क्षेत्र के पुनर्जीवन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बनकर उभरी है। इस योजना के तहत बड़े पैमाने पर वन भूमि पर पौधरोपण किया जा रहा है और पौधों की देखभाल तथा संरक्षण के लिए विशेष वित्तीय प्रावधान किए गए हैं। पौधों की जीवितता दर सुनिश्चित करने के लिए लोगों और संस्थाओं को प्रति हेक्टेयर आर्थिक सहायता भी प्रदान की जा रही है। इस योजना की एक बड़ी विशेषता सामुदायिक भागीदारी है। स्वयं सहायता समूह, महिला मंडल, युवा मंडल और स्थानीय संस्थाएं सक्रिय रूप से इसमें भागीदारी निभा रही हैं। इससे पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर भी सृजित हो रहे हैं। ये पहल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। प्रदेश सरकार ने हरित विकास को जन भागीदारी से जोड़ने के उद्देश्य से ग्रीन अडॉप्शन योजना भी शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत निजी कंपनियां, उद्योग समूह और गैर सरकारी संगठन बंजर वन भूमि को गोद लेकर वहां पौधरोपण और संरक्षण का कार्य करेंगे। ये पहल कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण में निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित कर रही है।
1: मीडियम वेव और FM शिमला, हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों पर आप सुन रहे थे सामयिक चर्चा। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
2: 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM शिमला का प्रसारण।
3: हिमाचल में फिर से सज गया है लोकतंत्र का महापर्व, पंचायत चुनाव 2026।
4: 26, 28 और 30 मई को तीन चरणों में होने जा रहे हैं पंचायत इलेक्शंस, जहां आपकी एक वोट तय करेगी आपके गांव का कल।
3: सड़क, पानी, सफाई, रोजगार और गांव के विकास से जुड़े फैसलों में आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है।
4: इस बार बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए और चुनिएगा ईमानदार, योग्य और जिम्मेदार प्रतिनिधि। हिमाचल पंचायत इलेक्शंस 2026, मजबूत पंचायत, मजबूत हिमाचल।
2: आप सुन रहे हैं FM शिमला का प्रसारण। 3:10 हुए हैं। लीजिए पेश है ओल्ड हिट्स पर आधारित फिल्म संगीत। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में लीजिए सुनिए रात और दिन फिल्म का गीत। गीत के बोल हसरत जयपुरी की, संगीत शंकर जयकिशन का।

0: गांव की पहचान होती है उसकी मजबूत पंचायत से, और पंचायत मजबूत बनती है आपके एक वोट से।
1: क्योंकि ईमानदारी और बिना किसी के प्रभाव में आए दिए गए आपके वोट ही तय होते हैं गांव, और बनती है सड़क, पानी, स्वच्छता और रोजगार संबंधी नीतियाँ।
0: इसीलिए 26 मई, 28 मई और 30 मई को होने वाले पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर अपनी भागीदारी निभाएं।
1: अपने परिवार और गांव वालों को भी जागरूक बनाएं और 100% मतदान के संकल्प को हासिल करने का लक्ष्य बनाएं।
0: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।
2: हिमाचल प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण हेतु वचनबद्ध है। आइए सुनते हैं माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का संदेश।
3: नमस्कार। विश्व पर्यावरण दिवस हमें प्रकृति के संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास करवाने का महत्वपूर्ण अवसर है। हिमाचल प्रदेश को प्रकृति ने सुंदर पहाड़, साफ पानी और शुद्ध हवा का अनमोल उपहार दिया है। आइए हम सब मिलकर अपने पर्यावरण को स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित बनाने का संकल्प लें। पेड़ लगाएं, पानी बचाएं और प्रकृति की रक्षा में अपना योगदान दें। स्वस्थ पर्यावरण ही आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। आइए प्रकृति से प्रेम करें और हिमाचल को हरियाली और स्वच्छता का आदर्श बनाएं। जय हिंद, जय हिमाचल।
4: हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जनहित में जारी।
5: FM शिमला पर आप सुन रहे हैं ओल्ड हिट्स पर आधारित फिल्म संगीत। लता मंगेशकर की आवाज में लीजिए सुनिए उपकार फिल्म का गीत। गीत के बोल गुलशन बावरा के हैं, संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

0: चुनाव सिर्फ एक शब्द नहीं, ये है सच्चे लोकतंत्र की नींव, और मतदान है एक जागरूक नागरिक की पहचान, जिसे इस्तेमाल कर वो तय करते हैं अपने क्षेत्र, राज्य और देश की दशा व दिशा।
1: तो आइए अपनी जिम्मेदारी निभाएं, आगामी पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़ कर भाग लें और गांव के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।
0: आपका एक एक वोट तय करेगा पंचायत का भविष्य। तो निर्धारित तिथि को अपने नजदीकी मतदान केंद्र पर जाकर सोच समझ कर और बिना किसी प्रभाव के मतदान जरूर करें, क्योंकि ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारी ही नहीं अधिकार है।
1: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: लीजिए सुनिए मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में मेरे सनम फिल्म का गीत, गीत के बोल मजरूह के संगीत ओपी नैयर का,

लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में लीजिए सुनिए आवारा फिल्म का गीत, गीत के बोल शैलेंद्र के, संगीत शंकर जयकिशन का।

फिल्म संगीत अभी आपने सुना। आप सुन रहे हैं FM शिमला का प्रसारण। एक 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM शिमला का प्रसारण। 3:30 होने को हैं। लीजिए पेश है युववाणी कार्यक्रम।

नमस्कार युवा साथियों, पॉजिटिव वाइब्स, पीसफुल माइंड्स और एनर्जेटिक हार्ट के साथ आप सुन रहे हैं युवानी कार्यक्रम और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त और होस्ट मुस्कान ठाकुर। जी हां दोस्तों, जिंदगी फास्ट फॉरवर्ड में चल रही है, नोटिफिकेशन नॉन स्टॉप बज रही हैं, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं हमारी पीस मिसिंग है। लेट नाइट स्क्रोलिंग, एंडलेस टेंशन आज जनरेशनल फैशन बन चुकी है और बॉडी एंड माइंड बहुत थक चुके हैं। तभी हजारों साल पुरानी भारत की पूंजी आज भी हमें जीना सिखाती है, वो पूंजी है योग। क्योंकि जिंदगी सिर्फ भागने का नाम नहीं, खुद को समझाने का नाम भी है। फिटनेस सिर्फ बॉडी की नहीं, माइंड और सोल की भी ज़रूरी है। तो आज हम जानेंगे अष्टांग योग के 8 अंग और कैसे ये आज के यूथ को बदल सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज की ये जर्नी होगी पावरफुल और लाइफ चेंजिंग।

दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी यात्रा की जो शरीर से शुरू होकर मन और आत्मा तक जाती है। जी हाँ दोस्तों, तो गहरी सांस लीजिए और चलिए इस प्राचीन और अद्भुत यात्रा पर। अष्टांग योग कोई आज की खोज नहीं, इसकी जड़ें हजारों साल पुरानी भारतीय संस्कृति और वेदों में समाई हुई है। अष्टांग योग की स्थापना 5,000 वर्ष पूर्व महान ऋषि पतंजलि द्वारा की गई थी। महर्षि पतंजलि ने ईसा पूर्व 2री शताब्दी में योग सूत्र लिखे और बताया, योग के 8 अंगों के अभ्यास से अशुद्धियां दूर होती हैं और ज्ञान का प्रकाश फैलता है। यही है अष्टांग योग। तो आखिर ये अष्टांग योग के 8 अंग हैं क्या, चलिए जानते हैं। पहला अंग है यम, दूसरा अंग है नियम, तीसरा अंग है आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठा धारणा, सातवां ध्यान और आठवां और अंतिम अंग है समाधि। वाह, यही 8 सीढ़ियों का मार्ग इंसान को शून्य से शिखर तक ले जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज के कार्यक्रम में अब बढ़ते हैं आज के अगले गाने की ओर।

तो दोस्तों, चाहे प्राचीन काल के ऋषि हों या आज के मॉडर्न फिटनेस लवर्स, अष्टांग योग का मकसद एक ही है, तन का स्वास्थ्य, मन की शांति और आत्मा का आत्म साक्षात्कार। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अष्टांग योग के पहले अंग की, जो कि है यम। दोस्तों, यम का सीधा मतलब है नियम और संयम। ये वो नींव है जिस पर आपके पूरे जीवन की इमारत टिकी होती है। अगर नींव मजबूत हो तो इमारत कभी भी नहीं डगमगाती। यम हमें सिखाता है कि समाज और दूसरों के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। इसके 5 स्तंभ हैं, तो चलिए जानते हैं। पहला स्तंभ है अहिंसा, यानी मन, वचन और कर्म से किसी को भी हानि ना पहुंचाना। दूसरा स्तंभ है सत्य, हमेशा सच बोलना और प्रामाणिक रहना। अस्ते, चोरी ना करना, जो आपका नहीं है उस पर बुरी नज़र ना डालना। चौथा, ब्रह्मचर्य, अपनी ऊर्जा को सही दिशा देना और संयम बरतना। पांचवा और आखिरी, अपरिग्रह, ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों का लालच या संग्रह ना करना। देखा आपने, अगर हम इन 5 यम का अपने दैनिक जीवन में छोटा सा भी अभ्यास करें तो हमारे मन का तनाव आधा ऐसे ही हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं आज के कार्यक्रम के तीसरे गीत की ओर।

तो दोस्तों, पहले अंग यम पर बात करने के बाद अब वक्त है भीतर झांकने का। जी हाँ दोस्तों, अष्टांग योग के दूसरे अंग नियम की ओर। दोस्तों, यम अगर हमें समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना सिखाता है, वहीं नियम हमें खुद के साथ सही रहना सिखाता है। ये पांच व्यक्तिगत सिद्धांत हैं जो हमारे चरित्र की नींव रखते हैं। आइए जानते हैं क्या हैं ये पांच नियम। पहला, शौच, शरीर की बाहरी सफाई की नहीं बल्कि विचारों और मन की पवित्रता। संतोष, जो आपके पास है उसमें ही खुश रहना। तीसरा, तप, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए शारीरिक और मानसिक चुनौतियों का डटकर सामना करना। स्वाध्याय, खुद का अध्ययन करना, अच्छी किताबें पढ़ना और अपने विचारों पर नज़र रखना। पांचवा और आखिरी, ईश्वर प्रणिधान, अपनी पूरी निष्ठा के साथ ब्रह्मांड की उस परम शक्ति पर विश्वास रखना। तो दोस्तों, आज से ही अपने नियमों को मजबूत बनाइए और खुशहाल जीवन की ओर एक कदम बढ़ाइए।

दोस्तों, अष्टांग योग के दूसरे अंग की बात करने के बाद अब रुख करते हैं महर्षि पतंजलि द्वारा बताए गए तीसरे अंग की। जी हाँ, यम नियम के बाद तीसरा महत्वपूर्ण कदम है आसन। बहुत से लोग आसन को सिर्फ कसरत या व्यायाम समझ लेते हैं, लेकिन दोस्तों, आसन सिर्फ शारीरिक कसरत नहीं। महर्षि पतंजलि ने आसन को परिभाषित करते हुए बहुत ही सुंदर सूत्र दिया है, स्थिर सुखम आसनम, यानी वो मुद्रा जो स्थिर हो और सुखद हो। जब आप सोचेंगे इसमें नया क्या है, नई है हमारी सोच, हमारा दृष्टिकोण। जी हाँ, जब हम किसी भी मुद्रा में जैसे पद्मासन या ताड़ासन में बैठते हैं तो शरीर की सारी ऊर्जा केंद्रित होने लगती है। ये शारीरिक स्थिरता सीधे तौर पर हमारा मानसिक तनाव कम कर देती है। तो दोस्तों, आज से ही अपने व्यस्त दिन में थोड़ा सा समय निकालें और किसी भी एक आरामदायक आसन में कुछ देर बैठना शुरू करें। याद रखें, योग का ये तीसरा चरण हमारे शरीर रूपी मंदिर को मजबूत और स्वस्थ बनाता है, ताकि हम आगे के चरणों जैसे प्राणायाम और ध्यान की ओर आसानी से बढ़ सकें।

प्रत्याहार का अर्थ है अपनी इंद्रियों को बाहरी विषयों और विचारों से हटाकर भीतर की ओर मोड़ना। ये भारी अभ्यासों यानी यम नियम आसन प्राणायाम को आंतरिक धारणा ध्यान और समाधि से जोड़ने की एक अनूठी कड़ी है। अष्टांग योग का छठा अंग है धारणा, अर्थात मन को किसी एक विचार वस्तु या लक्ष्य पर स्थिर करना। अष्टांग योग का सातवां अंग है ध्यान यानी एकाग्रचित होकर बिना भटकाव के अपने ध्यान को एक जगह केंद्रित करना। अष्टांग योग का अंतिम और सबसे अनूठा अंग है समाधि। इसे योग को की सर्वोच्च अवस्था माना जाता है, जहां साधक का मन पूरी तरह शांत हो जाता है और आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। क्या कमाल की अवस्था है ना? तो चलिए दोस्तों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में थोड़ा वक्त अपने लिए निकालें और अपने शरीर के उस समाधि के सफ़र की ओर अपना पहला कदम बढ़ाएं। अपनी आंखें बंद करें और गहरी सांस लें और बने रहिए हमारे साथ।

दोस्तों, आज के सफ़र में हमने जाना कि कैसे योग हमें फिट बॉडी से लेकर एक सुपर कॉन्शियस स्टेट तक ले जाने का रास्ता दिखाता है। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे इसी समय इसी फ्रीक्वेंसी पर। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए और योग करते रहिए। नमस्कार।

0: युववाणी कार्यक्रम अभी आपने सुना।
1: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज FM शिमला। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 103.7 मेगाहर्ट्ज FM शिमला।

103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम शिमला का प्रसारण। शाम के 4 बजे हैं। लीजिए पेश है फिल्म संगीत।

एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ में मैंने प्यार किया फिल्म का गीत अभी आपने सुना। लीजिए सुनिए साधना सरगम और मोहम्मद अजीज की आवाज़ों में याद रखेगी दुनिया फिल्म का गीत, गीत के बोल समीर के, संगीत आनंद मिलिंद का।

लीजिए सुनिए अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ों में उस्ताद फिल्म का गीत, गीत के बोल इंदिवर के संगीत अन्नू मलिक का।

फिल्म संगीत में आज बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए FM शिमला का प्रसारण। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

हम आकाशवाणी शिमला से बोल रहे हैं। हिमाचली बोलियों में सबसे पहले सुनिए सिरमौरी कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी शिमला के साथ साथ आकाशवाणी FM शिमला से भी सुन रहे हैं।

नमस्कार, सुबिखे राम राम, सुबिखे मेरे ढाल। ये जो आकाशवाणी को शिमला केंद्र सो और ये भी टाइम रहा हो बड़के के 4:21:40 और ऐसे वक्त आकाशवाणी के शिमला केंद्र साथियों लो सुने सिरमौरी कार्यक्रम। सिरमौरी कार्यक्रम दा तुम साथी हाँ सो एतला तुम्हारा अपना नाड़ा भाई रे अमित वर्मा। सुभी सिरमौरी कार्यक्रम सुनने वालों है मेरे ढाल। एतलो उमर जू ऐसे कार्यक्रम दे बात करने ऐसे करने अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक दिवस गशी। अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र सैनिक दिवस असो का है खुद शुभ मनाए जाई और का इंदे मनानो का कारण असो ऐसी हमारे एतलो भद्दी बातों लानी और साथ साथ हमारे बातों लाने एतलो महिला सशक्तिकरण की। जे महिला सशक्तिकरण है सी एतलो के देसो दे क्यों जरूरी रोए का इंदे की जरूरत असो और महिला सशक्तिकरण से उन्दी क्यों नहीं लगी इंदी बाधाएं का उस और का कदम हमें छपल उठाने जो महिला सशक्तिकरण बोलो इंदे का शिव हमारे लो बात करने और साथ के साथ हमारे एतलो की कुछ खास देश और परदेशों की खबरें के भी बात करने जे एतलो देश और परदेश से का घटना घटित रही है ऐसी हमारे खबरें से पता करनी और इंदी के साथ साथ जो मेरे भाई सिरमौरी कार्यक्रम छोड़ने वाले हैं तुम सभी है तुम्हारी मनोरंजन का भी आम के पता सो तो सभी के मनोरंजन के एतलो मारे कुछ खास लोग गीत भी सुनने तो शुरू करबे एतलो का कार्यक्रम एतलो सभी से पहले करबे एतलो की देश परदेश की खबरें तो सुनो एतलो के आगे ही आगे समाचार। परदेश पंचायती राज संस्था के दूसरे चरण के चुनाव है से इजो पूरे रहे है और इजो के जो एज अ चुनाव भी थी है इंदे की जो मतदान है से 80% रो रहे प्रदेश दे भी तक के जितोड़े पंचायती राज चुनाव रहे तत्तोड़े मुझे जो ऐसा चुनाव थिया से सभी से ज़्यादा मतदान वाला चुनाव थिया। दूसरे चरण दे प्रदेश के कुल 1279 पंचायतों ते वोट डालेगी बयाली और दूसरे चरण दो सबसे ज़्यादा मतदान कुल्लू जिले दूर हो जो कोई 86% रू और जब हम बात करो सबसे कम मतदानों के तो हिमाचल प्रदेश के जो सबसे कम मतदान वाला जिला रू आशेर वाला लाहौल स्पीति। अब बात करबे चीज चरण के तो 30 तारीख यानी कि 30 मई द्वितीय से प्रदेश दे चीजी चरण के चुनाव होंगे जिनकी बदी तैयारी हो रही और जो मतदान है जिसो 7 बजे से बेलक के 6 बजे तक चल दो। प्रदेश दे पंचायती राज चुनाव जो द्वितीय मतलब 30 मई दे होंगे तीन देखे इजो प्रचार प्रसार भी बंद रहा है और जब इजो प्रचार प्रसार बंद भी रहा है तब लोग जो उम्मीदवार बसो ते नहीं अपने अपने साखसर में दो व्यक्तिगत

पिछु जायो गरे गरे जायो बोटो की गुहार ल करे और अपने जीत खे डाल लुई करे। परदेश जो चीजें चरण के चुनाव स इंदी 1187 पंचायतों दे प्रधान उपप्रधान और मेंबर के चुनाव दे। इंदे के साथ साथ जिला परिषद और बीडीसी मेंबर के भी दोती आखिरी वोट पड़ दे। जिला परिषद बीडीसी मेंबर और चार नगर निगम जिन्हें मुझे सोने मंडी पालमपुर और धर्मशाला के भी वोटों की गिनते 31 मई दी होंगे और 31 मई दाई इनका रिजल्ट देंदा जे कौन हारा और कौन जीता। अबे बात कर बे नशे के खिलाफ जागरूकता की। चंबा जिले के नशे और नशे के तस्करी करने वाले के खिलाफ ऐसे जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई शुरू करें। नशीली दवाई और वो जो नशीली चीज बस तेने रोकने के प्रशासन ऐसे बड़ा से बड़ा कदम ला उठाए और तेने वो की अधिकारी के भी स्पष्ट जे आदेश थे दे जे अपने जैसे तुम्हारी डिप्टी बस तथे और तथे के आसपास किसी भी तरह का जो नशीली चीज है से आने चाहिए थी। विशेष करके इंदा जो सबसे ज़्यादा ध्यान है सी थी स्कूलों और कॉलेज दा जे स्कूलों और कॉलेज दा किसी भी तरह से चिट्ठा और के नशीली चीज न पहुँचे चाहिए अच्छा से पहुँचा है तो तीन के बाद सख्त कार्रवाई करे ऐसा कदम उठाए। बात करबे ईद की। ईद उल अजहा मतलब बकरीद बकरीद को त्यौहार है सी मतलब पूरे प्रदेश तो बड़ी उत्साह और भाईचारे के साथ मनाए थो। ऐसे मौके दे जो मुस्लिम समाज के लोग बसो मुस्लिम समाज के मेरे भाई बसो तेनिया ईद गादा जाइयो ईद की नमाज पढ़े और एक दूसरे के का करो ईद की मुबारक दे। अब बात करबे मौसम के। राजधानी शिमला के साथ थी प्रदेशों के जो भूते भाग होते से मतलब मौसम साफ रहा है। प्रदेश था खतरनाक गर्मी का दौरा चले खास कर प्रदेशों के जो निचले निचले जिले बसो जैसे ऊना है हमीरपुर है बिलासपुर है कांगड़ा है सोलना है और सिरमौर के कुछ बाग सो इन दे ऐसे कड़ाके के गर्मी रह पड़े और इन्हें लोग है गर्मी का सामना ऐसे दस रात ला करें और मौसम विभागे अतलो कुल्लू मंडी शिमला सोलने और सिरमौर के जो ऊपरे ऊपरे वाले हिस्से बस तीनदा का है बरखा बगूर और शुरटली का ऑरेंज अलर्ट जारी था करें जबकि ओके बाकी जिले का है सी एल अलर्ट रहा। तो वजह थे अतलो कुछ खास समाचार। अब टाइम रहा है एक लोकगीत सुनो का जो तुम्हारी मनोरंजन के खास हो अतलो को लोकगीत है किले दे कुदरण जल पानी रे दिवे जिंदा का गीतांग्य स भाई चंद्रमोहन ठाकुर। तो सुनो ये जो लोकगीत भाई चंद्रमोहन ठाकुर को किले रे कुदरण जोड़ो।

तो ए जो थी बजाय बुढ़िया गीत किलेरे कुदरण जल पानी रेदी हुए। अब बात करबे अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक दिवस गशी। अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक दिवस है से हर वर्ष 29 मई दो मनाया जाए। ये जो दिवस तेनी सभी फौजी भाईड़ी है पुलिस वालों है और तेनी सभी लोगों और कर्मचारियों है सम्मान और इज्जत देने के समर्पित सो जिन्हें संयुक्त राष्ट्र दे शांति बनाने के लिए दस राती मेहनत करे और दस राती की मेहनत करियो पूरे संसार दे पूरे विश्व दे शांति बनाए। जिन्हें पूरे विश्व दे शांति बनाने के साथ साथ विश्व की सुरक्षा और स्थिरता के विकास करा योगदान करा। साथ ही जो देश है तेनी शांति फौजियों के भी श्रद्धांजलि देना खोसो जिन्हें अपने फर्ज निभाया ऐसे विश्व दे यो संसार दे शांति बनाने के ताइए लोगों के सुरक्षा देने के ताइए अपने जान ने भी गुवाई अपने फर्ज निभाया अपने प्राणों की आहुति भी दे अपने प्राणों का बलिदान भी करा। ये जो दे तीन के श्रद्धांजलि के कार्य भी खास होसो। अब जब हम बात करें देश मनानों के जो कुछ शुभ जो देश मनाई है फौजी भाई अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक ये जो देश उनतीस मई तो कब शुभ मनाए जाए तो हम बोले देव जो 29 मई 1948 का संयुक्त राष्ट्र एक अपना पहला शांति मिशन शुरू करा और अजा मिशन जो दुनिया का मध्य पूर्व एरिया भी थी आती युद्ध चालू थी है तेनी युद्ध रोकणों है और तेनी युद्ध रोकणों के देखभाल के खातिर तथा बनाए। और अजय एक ऐसी ऐतिहासिक घोषणा थी जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है 2002 के वर्षों था 29 मई अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक दिवस के रूप तो घोषित करा। अभी बात ऐसी भी हो जे एज ए शांति सैनिक वह कौन है तो बोले देव

संयुक्त राष्ट्र फौजे सजेव जिन्हें संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के अपने सेवा दे जिन्हें विश्व के शांति बनाने के ताई है युद्ध खत्म करने के ताई है अपने काम करा जो जो ठाँव दे रहा है जो जो देश दे रहा है फौज भाई है और पुलिस भाई है और जो ओके भी हमारे ऐसे नागरिक थी है जिन्हें शांति बनाने के जो विचार थो थे तेनी है अलग अलग तरीके से काम करें अब तिनका काम काका थी है काका से काम करो थी है जो शांति बनाए और काका तिनका काम हुआ तो आप बोले दो जो कुछ ही देशों के बीच होता कुछ मन मुटाव रहा चाले या कुछ झगड़ा रहा चाले तेने रुकना है काम करना तिनकी कोशिश करने और देखभाल करने ऐसा इनका काम हो शांति सैनिक का। दूसरा का काम हो लोगों की सुरक्षा करने किसी भी तरह के जब कुछ आपत्ति वाओ सज आपत्ति गुटाने और लोग का करने सुरक्षित होने इन्हें की देखभाल करने का काम भी कुछ का वो शांति सैनिकों का वो देश जो चुनाव हो तिन्हें की देखभाल कराने से चुनाव शांतिपूर्व तरीके से कराने और लोकतंत्र की जतड़ी भी प्रक्रिया हो तिन्हीं प्रक्रिया की सहायता भी कौन करो शांति सैनिक करो या पुलिसकर्मी करो मानसो के सो भी बात की सहायता देना और कानून की जो व्यवस्था हुआ सत्या भी ठीक ठाक बनाया था उन्हें जो कुछ बड़े बड़े क्राइम नहीं हुआ जो कुछ गलत नहीं हुआ सज बाध्य काम भी कुछ कहती नक देख रेख करने का काम भी शांति सैनिक का वो। अब बात कर बे अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक दसों कशी भारत का योगदान सो जब भारत का भी ना कुछ योगदान सो है तो सुनो भारत संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों का सहयोग करने वाला एक सबसे बड़ा योगदान करता है सभ्यताओं का भारत देशों के फौज भारत देशों के पुलिस वाले ओके भाद्य योगदान देने वाले लोग जिन्हें देशों भित्री शांति बनाने के तैयार क्या करे दस रात मेहनत करे और त्यों मेहनत के तय शांति बनाने के तैयार तीन अपनी जान की भी आहुति थी अपने प्राण में दे थे भारत के औजारों की संख्या थे फौजी से जो जो ठाँ थे सेवाएं दे अपना फौज निभाया और बहुत फौजी इन क्या करे अपने प्राणों का बलिदान भी था जिंदे स्वामी बोली सको जो इंदा भारत का भी सबसे बड़ा साथरा रहे। तो ऐसी बात थी अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक दिवस गशी जो का थी कुछ का इंदा साथरा रहा कुछ का रोने रही। अब हमारा अगली बात कौन है महिला सशक्तिकरण की महिला सशक्तिकरण का सो और क्यों जरूरी है तो महिला सशक्तिकरण की गशी बात करने से पहले हमारा टाइम रहा है एक लोकगीत सुनो का जिंदा के गीत सो मारे भी सुखे जाना और इंदा का जो गीतांगी है से है धर्मपाल चौहान तो सुनो जो लोकगीत धर्मपाल को।

चीजी बात थी एवे टाइम रहा एक लोग सुनो का सुनो एक लोक गीत जिनका गीतांग सो हरिचंद चौहान और लोक गीत के बोलो सो कुणी लाइए जी।

तो ये जो थी ओ सिरमौरी लोकगीत और मु विश्वास से तू एतु बढ़िया रोलो लागे लोकगीत कोणिया लाए तो वैसे मौत जिंदा का गीतांगी थिया भाई हरिचंद। तो एतु लोकगीत खत्म होने के साथ साथ एतलो का सिरमौरी कार्यक्रम भी खत्म हुआ। तो सभी खे एक बार दूजल ये अमित वर्मा के राम राम ढाल एवं बेटू बे एतवार बेलके के 4:20 सिरमौरी कार्यक्रम दे तो तब ताऊ खे तुम सभी खे नमस्कार।

सिरमौरी कार्यक्रम अभी आपने सुना। हम आकाशवाणी शिमला से बोल रहे हैं, आइए अब सुनते हैं महास्वी कार्यक्रम।

महासवी कार्यक्रम सुनने वाले बादे श्रोताओं के मेरा नमस्कार। ता जी आ जाओ आए रेकड़ी जी जानकारी समाचार और लोकगीत साथी।

सो इंदे दूसरी रोखे ऊर्जा भेटो। अगर सही मात्रा दी ली जाओ तो ए कई बीमारियों री रोकथाम दी जो सो फायदेमंद असो। आयोडीन मिनरल कैल्शियम पोटाशियम जिने खास मिनरल आसो जिंदे दूजो सो शरीरों दी खून री कमी दूर हुआ और हड्डी जो सो मजबूत हुआ और इंदे रे इलावा जो सो शरीरों री मांसपेशिया और तंत्र तंत्रिकाएं भी जो सो सही रोआ। कई माणी छे इनो सोचो कि जो सो वसा शुगर हमुखे ठीक नहीं हो सो पर कसी भी चीज़ों रा जो सो जरूरत तू ज़्यादा लेना लेनो जो सो शरीरों के नुकसान ही पहुँचाओ। सही मात्रा दी जो सो वसा और मीठो खाने दू जो सो शरीर ठीक रोआ। संतुलित खाने दी जो सो विटामिन खास असो विटामिन भी कई तरह रहे हुआ जिन्हें कि कोई चामड़ी खे कोई हड्डी खे और कई रोग प्रतिरोधक रोधकों के और कई खूनों के तो कई मांसपेशियों के जरूरी हुआ। तो सही खान पान दी जो सो अपने विटामिनों रा ध्यान ढाणू भी भरी जरूरी आसो। अगर संतुलित और सही खान पान री बात करी तो फाइबर भी भरी जरूरी आसो। फाइबर आड़ो खाणो खाने दू पाचन तंत्र सही रखने के जरूरी आसो। कहीं के फाइबर लेने दू कई तरह री शारीरिक समस्याएं जिन्हें की पेटोरी परेशानी सूजन कब्ज और हृदय रोगों रा जोखिम जो सो कम हुआ। सही खान पान दी जो सो हर देश अपने खाने दी शामिल एक आसान तरीका असो कि हरी पत्तेदार सब्जी और जिन्हें की पालक धनिया साग गाजर खीरा बीन्स और दूजी सब्जियां जो सो शामिल करनी चाहिए। सब्जियों जिन्हें ही फल भी अपने खान पान दी शामिल करनो जरूरी असो। इंदे दू ना केवल पोषक तत्व भेटो बल्कि ए शिगड़ी पाचो भी। खाने साथी साथी सही मात्रा दी पानी पीनो भी जरूरी असो। कम पानी पीने दूजो सो शरीर बीमारियों रा घर बनो। बीमारियां दूर छाने के सही मात्रा दी पानी पीनो चाहिए जिन्हें कि हर देश कम दू कम जो सो 8-10 गिलास पानी पीने चाहिए। संतुलित खाने साथी कुछ बातों रा ध्यान रखनो भी भरी जरूरी है। सो रोज खाने साथी सूखे मेवे और फल जिन्हें जरूर लेने चाहिए। खाने दी जरूरी पोषक तत्व भी होने चाहिए और सही वक्तों गई और खानो भी भरी जरूरी है। सो जरूरत तू ज़्यादा नमक मीठो तेलो आलो खानो नहीं खानो चाहिए एक ही ना कि जो सो हमारे शरीरों के नुकसान ही पहुँचाओ। सही खान पान और पोषण दो भरपूर खाने साथी रोज कसरत व्यायाम करने भी करनो भी जरूरी है। सो सही खाने दू हमारे शरीरों दी जो हमारे जीवनों दा जो सो खास महत्व असो पर साथ ही अपनी दिनचर्या दी बदलाव आननो भी भरी जरूरी असो ताकि सही वक्तों गाई बूंजनो सुतनो अपने नीज पूरे लेने तनाव दूर रोने री कोशिश करने चाहिए और इन बादी चीज़ों दू जो सो हमें अपनी समस्याओं दू भरी समस्या दू बचने दी ए मदद करो ताजी अवे सुनी ले एक लोकगीत।

बिंद्रे चली बनियो दादा गायक कलाकार थे भुवनेश आनंद। तांजी अकेलो रहनो एक आसान बात हो सो और अकेले रहनो जो सो एक अलग बात हो सो। ए समझने खे गेड़ियो अकेलेपन और अकेलो होने मांजी जो सो अंतर समझनो भरी जरूरी हो सो। अकेले होने रा मतलब असो कि तुम्हें कोसी भी साथी नहीं हो सो, तुम्हें जो सो अकेले हो सो। पर अकेलेपन जो सो कोई की भी और कोई भी साथी हो सको कि तुम्हें भीड़ों दे भी अकेले हो सको, दोस्तों मांझी भी अकेले हो सको और टांपरे मांझी भी हो सको। अकेलोपन महसूस करनो खास तौर दू अकेले होने रा एहसास आसो। अकेलेपन बाध्य दू विनाशकारी भावनाओं मांझी एक आसो। कहीं खे अकेलो पंजो सो तनाव अवसाद आत्महत्या जिनी बुरी चीज़ों भी मंदी।

रुंदे लागे चेंके गायक कलाकार थी अंजना भारद्वाज। तांजी साहित्य जो सो समाज और दर्पण सो कई खे ए समाज और विचार समस्याएं जीवन शैली गाई जो सो रोशने पाओ। साहित्यकार जो सो अपने वक्त और समाजिक राजनीतिक और सांस्कृतिक जो परिवेश हो सो तिंद गाई जो सो अपनी रचनाएं लिखो। साहित्य जो सो ना केवल समाज री वर्तमान स्थिति दिखाओ बल्कि ए समाज और सुधार बदलाव री दिशा दी प्रेरणा भी दो। ए समाजिक असमानता अन्याय होर कुरीतियों बुरी रीति रिवाजों का ही भी प्रकाश पाओ। साहित्य जो सो समाजों के नई दिशा दो और जागरूकता दो जित वजह का जो सो समाजों दी बदलाव और उत्थान भी हुआ। और साहित्य जो सो अकेले बंधु जूझने आले मंचों के साथी प्रेरणा और आशा भी दो। माणिच अपनी जो सो भावनाओं साथी आगू बढ़ी सको क्योंकि अकेलेपन दी जो सो माणिच साहित्य दी कविता उपन्यास नाटक पढ़ियो जो सो अपनो अकेलोपन जो सो दूर करी सकी क्योंकि मंचोरा बद तू खास जो मित्र सो से किताबो ही असो। ताजी अब वक्त सो कुछ समाचारों रा प्रदेश दी काले 30 मई के पंचायतों रे चुनाव रे तीजे और आखिरी मतदान होले। मतदान जो सो जिशी 7 बजे तू 3 बजे ताई होले। मतदानों रे तुरंत बासे पंचायतों रे प्रधान उप प्रधानों के पड़े वोटों री गिनती होली। जबकि जिला परिषद और पंचायत समिति रे मतदानों री गिनती 31 मई के होली। 31 मई के ही प्रदेश और 4 नगर निगमों सोलन मंडे बिलासपुर और धर्मशाला के हुए चुनाव और मतगणना भी होले। पंचायती राज संस्थाओं रे तीजे चन्नों रे चुनाव के 1187 पंचायतों दी जो सौ वोट डाले जाने। अब रेखी खबर सो कि प्रदेश और निचले और मैदानी इलाकों दी भीषण गर्मी असो। उन्ना दी काले 42.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज कियो। मौसम विभाग आज कुल्लू मंडी शिमला और सिरमौर जिले रे कुछ इलाके दी बारिश और ओले तेज हवाएं चलने रा जो सर ऑरेंज अलर्ट। जबकि चंबा कांगड़ा और सोलन जिले दी जो सौ की बारिश रा येलो अलर्ट जारी कियो। विभागे उन्ना बिलासपुर हमीरपुर साथी जनजातीय जिले जिन्हें की लाहौल स्पीति किन्नौर दी जो सौ मौसम विभागे जो सो मौसम साफ रहने री जो सो संभावना जताए। ताजी एती कुछ खास खास खबरी अबे सुनी ले एक लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे महास्वी कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए पेश है किन्नौरी कार्यक्रम।

किन्नौरिंग बाई सही नमस्ते जूले टाशी देलेक स्वागत हो किन्या से किनू किन्नौरिंग प्रोग्रामों को मो बाई सी गधन कुमारी तोरो हे प्रोग्राम रेशे साजिर तेकने हो दोक बाई सही किन्या दामते चाहे ग आशालान

किनोरिंग बाई सही नमस्ते जूलिए टाशी देलैक स्वागत हो किन्या से किनू किनोरिंग प्रोग्रामों को मो बाई सी ग धन कुमारी तोरो हे प्रोग्राम रेशे सासिर तक ने हो दोक बाई सही किन्या दम ते चाहे ग आशालान तक ने हो किन्या से की राजी खुशी सुनी तीच दंग सी दोक दाइस का मानस ठोनंग तो ता प्रोग्राम ली रोंजो नी तीच बाई सी दोक तुरुकसु प्रोग्रामों दम दम गिथंगा ता काशी दी तो दोकाइत खास खास खबर न एके महिला सशक्तिकरण उबार्यो आइत जु काशानु हुनोक्सु युवा पीढ़ी नंग एके जु काशानु बुजुर्गानु तालमेल उबार्यो ली दाइस जानकारी काशी तो न्यो बैसी ख्यांता जु काशानु जु हुनोक्सु युग आधुनिकता नंग तकनीकु युग न्यो विज्ञान नंग तकनीकी विकासस जु काशा मियु जीवनता वाल आसान हाचस न्यो लेकिन जू नंग एके जू काशानु नाता रिश्ता अनु को मोसया दूरियां बोधो भी उदू मदे जू खास कर हुनोक्सु पीढ़ी नंग बुजुर्गानु माचो जू तालमेल ओम्स जैतरा मजबूत तांगी माबदो दूनियो दोकलो शमाली खेंता जू निश्की पीढ़ियां अनेगानु को मो दोक अधूरा मदे बैसी जू बुजुर्ग पेरा काशानु परिवार नंग समाजू अमूल्य धरोहर नाशित ने हो आने गांदा जीवनु अनुभव नंग एके ज्ञान नीस मदे बुजुर्ग पेरा आने गानु दोक तजर्बास दोक न्यूंग पीढ़ी तंग सही ओमजांग चीज दोक आई दोक आई काचंग से दोक हुनोक्सु युवा पीढ़ी ख्यांता जू न्यूंग सोच ऊर्जा नंग एके आधुनिक ज्ञानस भरपूर मदे अगर दोक निश की पीढ़ियां एक ही हजम साले ना दोक परिवार को मो दोक वाली तरकी हजम सोकेस मदे बाईसी हुनक सुबेर घेंदा दू चे चे काचिंग जू बदलाव तांगी मुदो दुन्यो जू हजेर उनसे बदलाव को मो जू दोक बुजुर्गानु प्रति मीनू सोच ली बदले दो तांगी मुदो दू मदे हालेगा ई देखें मो बुजुर्ग पेरानु बोझ सालो आश्रम शोंग पप तो या ई दंगे दोक एके ताताली दोक आनेगा नु होतरा दम माख्यो जू वाली जोरियु बातंग दू मदे बैसी खें जू तो निशोंग सु जू न्यूंग जमानो मदे दोक जू दोक उम्रु फरोक नेमिक देंसली उश मीनंग न्यूंग पीढ़ियु माजो जू निश्की नु सोच खेची खेची हाचो बेओ न्यो दोक निश की पीढ़ी नेसनंग लो आपसो दोक हातु ही समझन महानो मदे न्यूंग पीढ़ी उश्मी नु बातानु पुराना सोच रेंगो दा माचा लो हनी दोक उश्मी ली दोक समय अनुसार अनेगानु कोमो बदलाव कान महानो हालेगा इदंके दोक उश्पेरा ता समझदा ली नीज की दोक किन्या हाली लाना ली लानीच जू किन्या नु खुशी रिंगो हने रिंग से आली नीज इदंके दोक आओ माई चस लानो रेंगो दुखंग तंग से आली नीज वैसी दोक जू परिवारों को मो जू निश की पीढ़ियों विचार माड़िक शिमिक देंस दोक परिवार टूटे दो मदे देरंग दोक खेसी खेसी तो शिमिंग हाचो वैसी हनी उबेरिंग खेंता जू कशा न्यूंग पीढ़ी तंग दाइस तोक समझदारी चस कामंगला नम गया मिगने हो बुजुर्गानु बातानु मारी मसाल चल इकानंग रोंचस आई कानंग स्पेरंग तो दोशे निंग से मदे बैसी जो बुजुर्ग पेरानु उम्र बोधेन निकू कारणस दिमाग ली तोक होत्रा कामंगा मालांस ने हो दाइस दाइस बातानु तांगेस उचो केच चोटप नंग दोक रोशंगा तांगस दोक बात मुबेरंग लोशित ली तोस मदे की जुखेंदा घाटो छांगा नंग सियानोमी इदी रुक्षित नीच रिंग।

मदे मानिया बाईसई बाईसई जु तोलिंगसोंग चु व्यस जीवनु कोमो काशानी दोग मो बुजुर्ग पेरानु हत्रा समेरान महानो उमर भी मो युम कानंगसा माथास्मिक देंस तोक जोरस जोरस बत्यामु पड़ेस रिंगो बॉडी बातंगा दी काशा मा बत्यास आई तोक ई बातंगु दियारी दियारी ई चीत बाईसई दोक जु बातंगता स्वाभाविक नियो कि खेंता जु रोजा यंगजे हाची रिंग मदे जु मोनंग चंचल हाचित आई दोक खेंता देरंग दोक बाताली दोक बोशम मुझ हदो तांगे सी ई बातंगु दियारी दियारी ई चीत मदे देरंग काशा दोक मा देन संयम ताता ऐसा दोक दामकस बातंगलो नि ग्यामिक नियो मानिमा खेंता जु तोलिंगसोंग जु काशानु बुजुर्ग पेरा वाली दोक अकेलापन महसूस लानो जू उमरो आने गानु ना जामु लालचनीस ना फोक्षमु देरंग दोक हातस इचू दाम बातंगलोन ना इचू हातस बेंडिंगस बातंगलोन ना दोक होदोई दाम चाल्स मदे बैसी दोक जू बातंग काशानुली माबोशम ग्यामिक नेओ कि खेंता जू इम्या बारी काशा चे की रुजा यंगजे हाची दी तो सोदाई जवान ता हाथी मातुषित तोरो काशा खेंदा दोक मो आमा बोनु मो आपी ते तेनु दम माख्यामा तंगमा मदे दोक ना सोम काशा नुरी मो छांगा दम माख्या चित थुल लोन्ना तंगमा खेंदा जु काशा छांगा नु दोक जु मारी ओम काशा सी जांगो मदे वैसी दोक जु से समस्या नु समाधान बेंडिंग सम्मानिंग एके समझदारी नियो युवा गानु ली ग्यामी की मो बुजुर्ग पेरानु आदर लर्निक सेया आने गानु बातानु ध्यानस रोंचिमिक सेया दोकाइत बुजुर्ग पेरानु ली दोक बुजुर्ग पेरानु लिखेंदा दोक जु न्यूंग पीढ़ियु भावनानिंग एके समय को मो बदलाव हाचो जमानो हिसाबस जु चीजें बदले दो जूतंग समझनु कोशिश लानम गया मिंग मदे मैसी तोक जू काशानु की मो बुजुर्ग पेरानु उपस्थिति जू आशीर्वाद नंग बराबर नाशित न्यो आने का ख्यांदा जू परिवारु जोड़्या ताम नंग एके दम संस्कार केच हदंगी तोक युवा पीढ़ी ली परिवारु को मो होंस लानंग एके खुशियां का चैनीस मदे होदो तांगेस तोक निश्की पीढ़ियानु मेल समाजु मजबूती उतांगेस वाली जरूरी ने हो बैसी दोक ग आशा लांद किने अंगशीत बातानू गोल लांतीच काश्ता बैसी दोक जू बातंग देन ईद गिथंग रोंची रोंचीच बैसे ही गिथंग

Baisi dok barci koram nima manmanu the dosh ranik koram dam gya ma dok dam ka manglanik ringo jugi thang dok hema watis sunya cheshneo kajta baisi dok gakiryanu ju khas khas khobar sunya chakneo pardesho nasamju nizo sai emai mya panchayati raj sansthan uchunavu tisre nang antim charanu tanges matdan hachitya मतदानु तांगेस चुनाव आयोगस सही तैयारियां लंशित मतदानु युम्स पंचायतानो प्रधान उपप्रधान नंग सरपंचानु तांगेस जू शेषित वोटानु गिनती हाचितया तंगसी जू जिला परिषद नंग पंचायत समितियु सदस्यनु तांगेस हाचिशित मतदानु गिनती सेया निजो सिकित महिम्या हाचितया होदोम्याई दोक परदेशु पर नगर निगम सोलन मंडी पालमपुर नंग धर्मशालो तांगेस जू हाचिशित चुनाव मतगणना ली हाचितया पंचायती राज संस्थानु जू तीसरे चरणु चुनाव तांगेस नासम दोक ई हंजार नंग राव पर्निजो तीस पंचायतानो वोट शेडनिक से मदे आयत खबर तो चंबा जिलो कुमो नशा नंग नशा तस्करियों खिलाफ जीरो टॉलरेंस जू नीति तहत कड़ी कार्रवाई लानो नशीली शैला मादक द्रव्यों नु रोक्यामु नंग दोगानु सुम्मु तांगेस

प्रशासनस ठोस कदम थोशीत। दंग से दुख संबंधित विभागों अधिकारियों ली निर्देश रंशित की मोमो कार्य क्षेत्रों खासकर दुख स्कूले नो नंग कॉलेजा नो जू चिट्टा नंग आई आई नशा तंग रोक्यामु तांगेस ठोस कदम थोमु बातंग लोशीत। आयत खबर तो न्यो परदेशो शोंका चंगजू मैदानी इलाका नो भीषण गर्मियों दौर चाल दीदू ऊना मेक्सु अधिकतम तापमान निशनिजो शुम दशमलव निश डिग्री सेल्सियस दर्ज लंशीत। जिला प्रशासनस बोधी गर्मी हचमिक देंस एडवाइजरी जारी लानोई मीन सतर्क तो शमुनंग स्वास्थ्य सुरक्षा उपाय अपने मुसला केशीत। जूमा जो मौसम विभागस तोरो कुल्लू मंडी शिमला नंग सिरमौर जिलों कोमो ई पंगलागेस शोरू नंग एकी निशनी जो 100 किलोमीटर प्रति घंटों रफ्तारस जू तेज लान चालनु आई तो दंगसी जू चंबा कांगड़ा नंग सोलन जिलों को मोली ई पंग लागेस नंग लान चालनु येलो अलर्ट जारी लानशीत। विभागस ऊना बिलासपुर हमीरपुर जनजातीय जिला लाहौल स्पीति नंग किन्नौरिंग जिलो जू मौसम साफ निमु संभावना जत्याशीत। वैसी तो जुताते के न्यू खास खास खबर काश्ता वैसी दुख गीथंग रोंची रोंची वैसई गीथंग।

वैसी दोक जू किसंगू कलाकारे तिकेश न्यू कलावती नंग रघुभक्ति जी। काश्ता वैसी दोग किन्या नू दायित जानकारी जू महिला सशक्तिकरण बारे के तक न्यो। वैसी खेंता दोक जो ओमस्ता जू सशक्तिकरण नो निक थे नीज जू बारे समझन निक जरूरी न्यो। महिला सशक्तिकरण मतलब खेंता जू मनारिंग जानू सामाजिक आर्थिक शैक्षिक नंग जू राजनीतिक रूपस सक्षम जुरैमिंग से मदे मनारिंग जानू मो जिंदगी बारे थेतली फैसला उंचू मुनीमा दो तांगेस स्वतंत्रता पोरेस गैमिंग से आ आई दोक मनारिंग जानू सामाजिक नंग आर्थिक स्थिति उली सुधार करनी से आ जूत से नंग एके एके मनारिंग जानू तालीम नंग रोजगारू का चंग बोनायुंग जान नंग बराबरी अधिकारी पोरेस गैमिंग मदे वैसी दोक ख्यांता जू महिला सशक्तिकरण तांगेस जू तालीम हासिल लाने जू सबसे जरूरी ने हो इत शिक्षित मंडरिंगजी अनु अधिकारानु बारे उनेस कानूनु बारे उनेस मदे हने मनारिंगजा आने गानु देन हाचो अत्याचारानु सहन लानु म्यास मदे दोक हने ख्यांता जू देशंगानु तोशी दिया मनारिंगजा होतरा जागरूक मास मो अधिकारानु बारे होतरा मानेस आई दोक ईदे दोक हुशेश चेशेस मनारिंग जाली दोक जोता सोरम जाल हृदय सी दोक कई सामाजिक बंधन नंग अत्याचारानु सहन नानो दोषित मदे बैसी ख्यांता जू हुनाऊ बेरंग जू दोक मनारिंग जा बोनायुंग जा नंग एके कंदा से कंदा मिलाइया कामा लानो चाहे दो राजनीति उद्यो या खेल जगत उद्यो या सेनो कोमो बढ़ती हचमुनी माँ या दोक चिकित्सा क्षेत्रों तालीमु का चंगसली तोलिंगशोंग चेमेदाई दोक ओम्स को दो दो हेत बास्केंग खेंता जू व्यापारू का चंगसली मनारिंग जा आने गानू दोक दाम प्रति बो परिचय रानो मदे जू से महिला सशक्तिकरण ही परिणाम ने हो वैसे जू महिला सशक्तिकरण सिर्फ जू मनारिंग जानू मुद्दा मानी ने हो बल्कि जो पूरा समाज विकासु आधार में दे थूलो न तंग मा भारत को मो ते माइस खेता जो आदंग फीसदी आबादी सिर्फ मन रिंगजुई ने हो देशु विकासु तांगेस जो आदंग आबादी सशक्त हाचमिक वाल जरूरी में दे बच्चे दयारो तांगेस जो आदंग आबादी तंग सशक्त मलन्ना तंग मा दोक देशु विकास संभव मास ने हो वैसी दोक देशु विकसित लानु गया मातंगमा मदे जू बातंग जरूरी ने हो कि जू बोनायुंग जानुली महिला सशक्तिकरणु बढ़ावा रानम गया मेक थूलन्ना तंगमा ख्यांता जू मनारिंग जानु सुरक्षो ख्याल तमा मदे मो चिमेदानु दाम तालीम रानना तंगमा दोकी दो आदोक आत्मनिर्भर हाचित दोक चिमेदाली खेंता मो अमा बोआ हुचे

किन्नौरी कार्यक्रम अभी आपने सुना। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी शिमला। लीजिए पेश है लोकगीत।

0: 774 किलोहर्ट्ज और डीटीएच पर आकाशवाणी शिमला एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर एफएम शिमला जन जन की वाणी ये है आकाशवाणी।
1: अगली प्रस्तुति कृष्णलाल सहगल की आवाज में।

लोकगीत अभी आपने सुने। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं, कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी शिमला। अब प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ आप डीटीएच सेवा, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और आकाशवाणी FM शिमला से भी सुन रहे हैं।

0: मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार डॉक्टर वाईएस परमार विद्यार्थी ऋण योजना के तहत विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए 20 लाख रुपए तक का ऋण 1% ब्याज दर पर उपलब्ध करवा रही है। मुख्यमंत्री ने आज शिमला में उनसे मिलने आए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना से लाभान्वित अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र के 21 विद्यार्थियों से बातचीत के दौरान ये बात कही। उन्होंने विद्यार्थियों से इस सुविधा का भरपूर लाभ उठाकर जीवन में अपने लक्ष्य हासिल करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश के 156 से अधिक स्कूलों में CBSE पाठ्यक्रम शुरू किया है। इन स्कूलों में विद्यार्थियों को कला, विज्ञान और वाणिज्य संकायों में शिक्षा प्रदान की जा रही है। प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण की गणना 16 जून से 15 जुलाई 2026 तक आयोजित की जाएगी। हिमाचल प्रदेश जनगणना कार्य निदेशालय की निदेशक दीपशिखा शर्मा ने शिमला में बताया कि इस बार जनगणना पूरी तरह डिजिटल तकनीक, मोबाइल ऐप और स्वगणना की सुविधा से लैस होगी। इसके लिए हजारों प्रगणकों और पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जनगणना पर 86 करोड़ रुपए खर्च होंगे। दीपशिखा शर्मा ने बताया कि पहला चरण मकान सूचीकरण व आवास गणना का होगा, जो 16 जून से 15 जुलाई तक चलेगा, जबकि इस बार नागरिकों को स्वगणना की सुविधा भी दी जाएगी।
1: हिमाचल प्रदेश में जो मकानों की गणना एवं मकान सूचीकरण है, यानी प्रथम चरण, उसे 16 जून से 15 जुलाई में कंडक्ट किया जा रहा है। इस बार स्वगणना का विकल्प भी रखा गया है, मतलब कि यदि कोई आम नागरिक अपने आप अपनी जानकारी दर्ज करना चाहता है तो उन्हें यह सुविधा दी गई है, जिसके लिए स्वगणना पोर्टल है। आप sc.census.gov.in टाइप करके उस पोर्टल पर पहुंचकर अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं 16 जून से 15 जुलाई के भीतर। तो उस वक्त जो प्रगणक है वो हर घर में, हर स्ट्रक्चर में विजिट करेंगे। उस वक्त उनसे उस सेल्फ इन्यूमरेशन आईडी को शेयर किया जाएगा और वो सेल्फ इन्यूमरेशन आईडी के मैच करने पर जो भी घर में उपस्थित होते हैं उनके साथ उन प्रश्नों को वेरीफाई करके उसको फाइनली सबमिट कर देंगे। मैं हिमाचल की जनता से यह भी आह्वान करूंगी कि वो ज्यादा से ज्यादा स्वगणना करके इस प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करें।
0: प्रदेश में कल 30 मई को पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के तीसरे व अंतिम चरण के लिए मतदान होगा। मतदान के लिए चुनाव आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतदान सुबह 7 बजे शुरू होगा और दोपहर बाद 3 बजे तक चलेगा। मतदान के तुरंत बाद पंचायतों में प्रधान, उप प्रधान और सरपंचों के लिए पड़े वोटों की गिनती होगी, जबकि जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए हुए मतदान की गिनती 31 मई को होगी। 31 मई को ही प्रदेश के 4 नगर निगमों सोलन, मंडी, पालमपुर और धर्मशाला के लिए हुए चुनाव की मतगणना भी होगी। पंचायती राज संस्थाओं के तीसरे चरण के चुनाव के लिए कल 1187 पंचायतों में वोट डाले जाएंगे। उधर सिरमौर के जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त प्रियंका वर्मा ने बताया कि कल अंतिम चरण में जिले की 89 पंचायतों में मतदान होगा। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण व निष्पक्ष तरीके से संपन्न करवाने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर दी गई हैं।
2: इसमें हमारी टोटल 89 पंचायतें रहेंगी और 515 वार्ड्स रहेंगे जहां कल मतदान किया जाएगा। अब तक का जो मतदान हमारे 2 चरणों में रहा है वो काफी पीसफुल रहा है। लोग भारी संख्या में आए हैं मतदान देने के लिए। मैं उन सबकी बहुत बहुत आभारी हूं कि इतने गर्म मौसम में भी वो अपना मताधिकार एग्जीक्यूट कर रहे हैं और आगे आके प्रतिनिधित्व चुन रहे हैं। कल का भी हमारा क्योंकि अंतिम चरण है, मैं अपील करूंगी आप सभी से कि आखिरी दिन जो हमारा 89 पंचायत है वहां के जितने भी कंसर्न हमारे सिरमौरवासी हैं कल आए और अच्छे से वोट करें।
0: अकादमिक अनुसंधान और कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय और महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी बिहार के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया। ये समझौता राष्ट्रीय शिक्षा नीति और भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के दिशा निर्देशों के तहत किया गया है। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सत प्रकाश बंसल ने कहा कि इस MOU के तहत दोनों विश्वविद्यालय संयुक्त रूप से कई अकादमिक और शोध गतिविधियों को आगे बढ़ाएंगे।
3: आने वाले समय में हम कुछ कोर्सेज को ज्वाइंट प्रोग्राम के तहत और ड्यूअल डिग्री भी स्टार्ट करेंगे। कुछ स्किल एनहांसमेंट के लिए वर्क करेंगे, एक हम ज्वाइंट जनरल चलाएंगे और कुछ हम कॉमन इश्यूज पे कुछ कंपेंडियम वो हम तैयार करेंगे। जो उनकी स्ट्रेंथ्स है वो हम लेंगे, जो हमारी स्ट्रेंथ्स है वो लेंगे और हम आगे बढ़ेंगे मिलकर के। और इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मैंडेट को भी ध्यान में रखा गया है।
0: इसी के साथ ये

0: समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचार आप हमारे हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों से भी सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। डीजे पेश है बिलासपुरी कार्यक्रम।

तां जी एह् लोक गीत सुनेआ तुसें मनसा पंडित होरी दी आवाजा च। हुण असें गल करनी नशे दे बारे च। तां दिक्खा अजकना युग जी आ तां एह् इक आधुनिकता और प्रतिस्पर्धा दा युग आ। लोक अपने जीवना च सफलता पाने खातर दिन रात मेहनत कराएं, पर इस भाग दौड़ा रा जिंदगी च कुछ लोग जैसे तनाव, गलत संगति और बुरी आदतों के कारण नशे के पासे जाए दे। नशा सिर्फ माणू रे शरीर जो ही नहीं बल्कि परिवार, समाज और पूरे राष्ट्र जो भी नुकसान पहुँचावा। शराब, तंबाकू, गुटका, बीड़ी, सिगरेट, अफीम, चर्स, गांजा और भी कई नशे की चीज़ा अज समाज तेजी ने फैलिया दियाँ। खास युवा वर्ग नशे का शिकार होंदा चाहिदा और ये बहुत चिंताजनक गल ही। अहां जो नशे ते दूर रहना चाहिए और दूजे जो भी इसरे दुष्परिणामों के बारे च जागरूक करना चाहिए। नशा सह अवस्था ही तिश जे माणू किसी नशे वाली चीज़ा जो खाई ने अपना मानसिक और शारीरिक संतुलन जैसे खोई दुआ। आस्ते आस्ते ये आदत इतनी ज़्यादा बढ़ी वहीं कि आदमी इस नशे रे बिना नहीं रह सकता। शुरुआत च लोग इस जो शौक या फैशनर रूप च लेवाए, फिर बाद च यही आदत तिन्हारी जिंदगी बर्बाद कर दुआई। नशा जिया ता ये कई तरह रा, तियां जे शराबा रा नशा, सिगरेट रा, गुटका, पान मसाला, अफीम, चर्स और गांजा, ड्रग्स और इंजेक्शन रा नशा। इना सारे नशे रा असर माणु रे शरीर और दिमाग पर बहुत बुरा पवा। नशे री लत लगने रे कई कारण होए, इना चाते कुछ जे तो सह ए। कई बार जवान बच्चे अपने दोस्तों रे कहने च आए ने नशा करना शुरू कर दवाए और आस्ते आस्ते ये तिन्हारी आदत बनी वही। कुछ लोग जीवना री समस्या ते परेशान हुए ने नशे रा सहारा लवाए। तिन्हां जो लगा कि नशा करने ते तिन्हारी चिंता दूर हो जानी, पर इसते समस्या घटने री बजाय और बढ़िया वही। कई बच्चे तो दूजे की नकल करने खातर भी नशा कराएं। फिल्मा और सोशल मीडिया का भी इस पर असर पैदा। जे टबरा च कोई माणू नशा करा तो बच्चों पर भी तीसरा बुरा असर पवा। कुछ लोग असफलता और बेरोजगारी के कारण निराश हो भी नशा करा दे। नशे का जीवना पर बहुत गंदा असर पैदा। नशा शरीर जो अंदरा ते कमजोर कर दुआ।

इससे कैंसर, हृदय रोग, फेफड़े की बीमारी और मानसिक रोग जी कई भयंकर समस्या हो जाएं। तंबाकू और सिगरेट से तो मूँह और फेफड़े का कैंसर होने का खतरा भी बढ़ जावा। नशा करने वाला माणु अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा नशे च खर्च कर दवा। कई बार लोग इस खातर अपनी जमीन तक बेची दवाएं। नशे रे वजह ने परिवार च लड़ाइया बढ़ जावी, घर का वातावरण खराब हो जावा और सारा टब्बर दुखी रवान। नशा सोचने समझने की शक्ति जो घट कर दवा। कई लोग चोरी, हिंसा और कई दूजे अपराधों च शामिल हो जावा। नशा करने वाले बच्चे पढ़ाई भी ध्यान नहीं देंदे, तिन्हारा भविष्य भी अंधकारा च हो जावा। जे युवा वर्ग ही नशे का शिकार हो जाए तो राष्ट्र की प्रगति रुक जावी। नशा समाज के विकास च बाधा बनी जावा। युवा किसी भी देश की शक्ति होए, जे युवा नशे की चपेटा च आई जाए तो देश का भविष्य खतरे च पई जावा। बच्चे स्कूल और कॉलेज के दिनों च ही नशे की आदत च पई जाए, इससे तिन्हारा स्वास्थ्य, शिक्षा और भविष्य पर भी असर पैदा। बच्चे गलत गतिविधियों का सहारा लिया दे और इन गतिविधियों से शामिल होया दे। नशे ते बचाओ ही सभी ते अच्छा उपाय है। इस खातर अहां जो कुछ कड़े कदम चकने पौने। अहां जो अच्छे दोस्त बनाने चाहिए, सहजे नशा ना करते हो। माता पिता जो भी अपने बच्चों की गतिविधियों का ध्यान रखना चाहिए और तिन्हां जो अच्छे संस्कार देने चाहिए। नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान चलने चाहिए। खेल कूद, योग और व्यायाम से मन और शरीर दोनों स्वस्थ रहे, इससे भी आदमी नशे से दूर रह सका। स्कूलों कॉलेजों भी नशे के गंदे परिणामों के बारे बच्चों को समझाना चाहिए और नशे के अवैध व्यापारों पर जो है कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। नशा एक एड़ी बुरी आदत ही सहजे माणुए रे जीवन जो बर्बाद कर दो। ये सिर्फ एक आदमी रे नहीं बल्कि पूरे परिवार और समाज जो प्रभावित करा। अहां जो अपू जो नशे ते दूर रखना चाहिए और दूजे जो भी इसरे नुकसान रे बारे च दसना चाहिए। खास युवा बच्चों जो जागरूक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे अहारे देश रे भविष्य है। जे अहें सारे मिली ने नशे के खिलाफ आवाज़ चकीए तो एक स्वस्थ और खुशहाल समाज का निर्माण कर सकें। आखिर यही बोलना ठीक रहना, नशा छोड़ो, जीवन जोड़ो। तो यह गल की जी अहें नशे बारे च। हुण सुनो एक लोक गीत।

तां जे लोक गीत सुने तुसें लीना शर्मा और तिन्नरे साथियें री आवाजा च। हुन असें गल करनी प्रगति आह्ले पथ पर अग्रसर आहरा बिलासपुर। आहरा बिलासपुर अज शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, परिवहन, उद्योग और सामाजिक विकास सारे क्षेत्र च निरंतर तरक्की करे दा। आधुनिक सुविधा रे विस्तार और विकास योजना रे प्रभावी जिलों जो नौवीं ऊंचाई तक पहुँचाया दा। अपनी ऐतिहासिक विरासत और सांस्कृतिक मूल्यों जो संजोए रखते हुए बिलासपुर विकास सारी नौवीं कहानी लिखे दा। बिलासपुर जिला आज विकास और प्रगति रे नए आयाम स्थापित करेगा। प्राकृतिक सौंदर्य, ऐतिहासिक विरासत और सांस्कृत समृद्धिया खातर बिलासपुर हुण आधुनिक विकास सारी दिशा च भी बहुत जल्दी आगे बढ़ता जाएगा। सड़क, शिक्षा, जल विद्युत और ग्रामीण विकास जे कई कम्में बिलासपुर जो प्रदेश रे

अग्रणी जिलों से शामिल कर ले रहा। बिलासपुर का गठन 1 जुलाई 1954 जो जिले के रूप में होया था और ये हिमाचल प्रदेश के खास जिलों से एक का। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जिले च कई नई सड़कों का निर्माण और पुरानी सड़कों का सुधार किया गया। इससे ग्रामीण क्षेत्रों की जनता जो अच्छी सुविधा मिली। जिले च करोड़ों रुपए की लागत ने सड़कों का काम होया था और इससे दूर दराजे के गाँव भी मुख्य सड़कों ने जुड़े दे। शिक्षा क्षेत्र च भी बिलासपुर बहुत प्रगति की। डिजिटल शिक्षा, स्मार्ट क्लासा और आधुनिक शिक्षण संसाधन के माध्यम से बच्चों जो शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। स्वास्थ्य सुविधा च सुधारों के कारण लोगों जो उचित चिकित्सा सेवा भी मिले दियाँ। जिला अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र च आधुनिक उपकरणों की व्यवस्था की गई रही। कई स्वास्थ्य योजना के माध्यम से गरीब और जरूरतमंद लोगों जो इलाज करवाने खातर सुविधा दी जाए दियाँ। पर्यटन क्षेत्र च बिलासपुर अगे बढ़ता जाएगा। गोबिंद सागर झील, नैना देवी मंदिर, बहादुरपुर किला और कई प्राकृतिक स्थल पर्यटकों जो आकर्षित कराएं। पर्यटन रे विकास, सड़क संपर्क और सुविधा मिलने ते जिले च पर्यटकों की संख्या बढ़ने लग रही। इससे इत्थे रे लोगों खातर रोजगार रे नए मौके पैदा हुए दे। बिलासपुर की पहचान जल विद्युत और ऊर्जा क्षेत्र च खास ही। भाखड़ा बांध और गोबिंद सागर झील ना सिर्फ ऊर्जा उत्पादन च योगदान देवाए बल्कि जिले की अर्थव्यवस्था जो भी मजबूती देवाए। औद्योगिक विकास भी बिलासपुर की प्रगति का महत्वपूर्ण आधार है। बरमाणे च स्थापित सीमेंट उद्योग और कई छोटे बड़े उद्योग स्थानीय युवा बच्चों जो रोजगार दे दे। उद्योगों के विकास से जिले की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होया दी और व्यापार गतिविधियां भी बढ़िया दियाँ। औरतों के सशक्तिकरण खातर स्वयं सहायता समूह और कई सरकारी योजना के माध्यम से रोजगार और स्वरोजगार के मौके दिते जाए दे। इससे औरतों की आर्थिक स्थिति जी से भी मजबूत होया दी। आखिर च यही बोली सकें कि बिलासपुर जिला विकास रे पथा पर हमेशा आगे बढ़िया था। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, उद्योग और ग्रामीण विकास सारे क्षेत्र होने लगे रहे काम जिले जो नई ऊंचाइय पर लेने जाए थे। जे इसी तरह विकास की गति बनी रही तो आने वाले साल बिलासपुर हिमाचल प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश खातर प्रगति और समृद्धि का एक अच्छा उदाहरण बनी आना। ये तो गल की है बिलासपुर की प्रगति के बारे में। हूँ सुन लिया कुछ खास खास खबर। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा और कल 30 मई जो हिमाचल दौरे पर आने रहा कार्यक्रम आ। इस दौरान तिने बिलासपुर जिले रे विजयपुर च पंचायत चुनाव च अपने मता रा उपयोग करना। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी स्वदेश ठाकुर होरी दस्या कि नड्डा राजकीय प्राथमिक पाठशाला विजयपुर च अपने बूथ पर परिवार सौगी मतदान करना। कल पंचायती राज संस्था रे तीजे और आखिरी चरण रा मतदान होना। यह चुनाव सवेरे 7 बजे शुरू होना और दिना रे 3 बजे तक चलना। चंबे जिले च नशे और नशा तस्करी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नशीली दवाई, मादक द्रव्य की रोकथाम और इनारी धड़पकड़ खातर कार्यतंत्र जो ज्यादा प्रभावी बनाने खातर प्रशासन ने जरूरी कदम चुके। उत्थे संबंधित महकमे रे अधिकारियों जो निर्देश दिए गए कि सह अपने अपने कार्यक्षेत्रों खास करी ने स्कूलों और कॉलेजों चिट्टा कने दूजे मादक पदार्थों की रोकथाम खातर ठोस और प्रभावी कदम चके। अगली खबर है राजधानी शिमला सौगी प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों आज भी मौसम साफ रहा। प्रदेश गर्मिया का दौर जारी है। खासकर राज्य के मैदानी जिलों ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा, सोलन और सिरमौरा के अलग अलग जगह लोगों जो भीषण गर्मिया का सामना करना पड़ा। तिस्ते जे तापमान वृद्धि दर्ज की जाएगी। मौसम विज्ञान केंद्र शिमले आज कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिले च बारिश, तूफान और ओलावृष्टि जिले ने ऑरेंज अलर्ट जबकि दूजे जिले च येलो अलर्ट जारी किया गया। तो ये थी कुछ खास खास खबर। हूँ सुन लो एक लोकगीत।

पैंदे भेदभाव नहीं केरी सका सा। कितरे अधिकार प्राप्त नहीं होंगे, पुराने टाइम ने बेटड़ी बे कितरे अधिकार प्राप्त नहीं होंगे, समानता रा अधिकार बेटड़ी बे मर्द री बराबरी रा अधिकार दिया सा। दूजा सा शिक्षा रा अधिकार, पुराने टाइम ने छोरी बे कौम ही केरना पड़ा सा, उस कोलारी वक्तन बेटड़ी छोरी सभी कौमन आगू सा, सभी छोरी वे शिक्षा लेने रा अधिकार सा, सरकार भी छोरी री पढ़ाई री तई है कितरी योजना चलाई चलांदी लागी सा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और भी कितरी योजना सा। एवे ऐसा गल केरनी घरेलू हिंसा ने सुरक्षा, जंड की तुसा वे पता सा औज कोलारे टेमन बिटड़ी संगे कितरे दुर्व्यवहार हुआ सा, कोई घरन पति होर परिवार बिटड़ी री बड़ी ही बुरी दशा केरा सी, जंडे मारपीट मानसिक प्रताड़न आर्थिक शोषण शारीरिक शोषण इनारी तई है महिला घरेलू हिंसा ने संरक्षण अधिकार 2005 बणू सा, ये अधिनियम बेटड़ी और छोरी री सुरक्षा वे बणू सा। है बेगल के नी कार्यस्थल पेंदे सुरक्षा रा अधिकार, नौकरी करने वाली बेटड़ी और छोरी वे सुरक्षित वातावरण रा अधिकार, कार्यस्थल पेंदे छेड़छाड़ वे रुकने री तई है ए कानून बणू सा, कार्यस्थल पर महिला के यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 लागू हुआ सा। एवे ऐसा गल केनी बाल विवाह न सुरक्षा, 18 वर्षन कम आयु वाली छोरी रा ब्याह केना कानूनी अपराध सा, कि बे की 18 वर्ष तक न पहले छोरी रा पूर्ण मानसिक वे शारीरिक विकास नहीं होंदा, हुसी उम्रन ब्याह के नेरे नुकसान भी बहुत सा। एवे ऐसा गल केनी संपत्ति रा अधिकार, छोरी वे भी परिवार ने छोरू रे बराबर ही संपत्ति रा अधिकार सा, जंडे की तुसा वे पता सा पहले जमाने ने छोरी वे अपने मायके ने संपत्ति पेंदे अधिकार नहीं होंदा थी, पर उस कोलारे जमाने ने छोरी वे अपने ससुराल संगे मायके ने भी संपत्ति पेंदे छोरू रे बराबर ही अधिकार हुआ सा। धेजा रे खिलाफ अधिकार, दहेज लेना और देना दुए अपराध सा, उस कोलारे जमाने ने दहेज लेना भी बहु बड़ी समस्या सा, लोग दहेज लेने री तई है बेटड़ी पेंदे कितरे अत्याचार केरा सा, बेटड़ी वे जिंदा जला सा, आत्महत्या वे उकसा सा, शारीरिक चोट दिया सा, उई री तई ही ए कानून बनू सा। मुफ्त कानूनी सहायता अधिकार, जरूरतमंद बेटड़ी वे मुफ्त कानूनी सहायता पाने रा अधिकार भी सा, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण रे माध्यम ने तुसे सहायता प्राप्त करी सका। एबे ऐसा समझना बिटड़ी और छोरी बे अपने अधिकार रा पता होना जरूरी सा, कि बे की कैंडे भी प्रकार रा शोषण हिंसा होर भेदभाव रा डट केरिया सामना केरी सका सा, कानूनी होर व्यक्तिगत अधिकार री जानकारी तीना बे समाजी रूपन आर्थिक वे आजाद बे आत्मनिर्भर बना सा, जोखिम से अपने परिवार बे बढ़िया निर्णय ले सका सा। बिटड़ी वे ए अधिकार देने पेंदे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रा बहुमूल्य योगदान सा, अंतन महिला रा समान और सुरक्षा समाजारी सभी ने बड़ी जिम्मेदारी सा। एवे सुना तुसे कुछ समाचार, प्रदेशा ने कोल 30 मई ने पंचायती राज संस्था रे चुनाव बारा तीसरे वे अंतिम चरण रे मतदान होने सा, मतदान वे चुनाव आयोग सभी तैयारी पूरी केरी सा, मतदान दोथी 7 बजे ने शुरू होने हुर दिहाड़ी ने बाद 3 बजे तई सोलने, मतदान रे बाद पंचायत रे प्रधान उप प्रधान और सरपंच ले भी वोटारी गिनती होनी, जैबे की जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य वे मतदान री गिनती 31 मई ने होनी, 31 मई वे प्रदेशा रे 4 नगर निगम सोलन मंडी पालमपुर और धर्मशाला रे चुनाव मतगणना भी होने सा, पंचायती राज संस्था रे तीसरे चरण रे चुनाव वे कोल 81,187 पंचायत ने वोट पड़ने सा, यह संगे कॉल होने बाड़े अंतिम चरण रे चुनाव ले औज उम्मीदवार अपनी जीत सुनिश्चित करनी लई राज्य रे अलग अलग हिस्से ने घोर घोर ने जाइए वोट मांगने, भारत स्वच्छ ऊर्जा रे क्षेत्र ने भी एक ही ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की सा, केंद्रीय नवीन ते नवीनकरण

ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी सोशल मीडिया पोस्ट न बोलू कि पीएम सूर्य घोर योजना रे अंतर्गत एबे तई 40 लाख मकान री छता पेंदे सोलर पैनल लगाए सी। तिने बोलू कि ए योजना सिर्फ नवीकरण ऊर्जा री पहल नहीं होती बल्कि ए नागरिका वे बिजली उपभोक्ता रे बिजली उत्पादन बनी रहनी सा। ए योजना तिना परिवार वे बिजली रे खर्चन कम लानी सरकारी सब्सिडी रा लाभ उठाना और शून्य बिजली री होर बढ़ने वे मदद मिलनी। ए थे औजारे कुछ समाचार। एबे सुना तुसे एक और लोकगीत टिंकू री आवाज़ ना।

कार्यक्रमारा अंतिम चरणान आसा हे ध्याडीरा महत्व समजणा। सबीन पहले हे दिवस हे मिशन कई देशान भाईचारा बढ़ा सा, होर विश्व एकता बढ़ा सा। भाईचारा मानवतारी सबीन बड़ी ताकत साजुण लोका वे एकी दूजे संगे प्रेम समान और सहयोगन रोहा, तबे ही समाज और दुनिया ने शांति बनी रहा सा। मानवतारी सेवा भी हुआ सा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी हुआ सा। दुनिया ने सब भी देश मिली जुलिए शांति विकास और मानव कल्याण रहता है संगे कौम के रासा। शांति रा महत्व भी बहुत सा, शांति मानव जीवन री सब भी न बड़ी आवश्यकता सा। जोखे शांति हुआ सा तोखे ही सुख विकास प्रेम सहयोग और भाईचारा होना भी जरूरी सा। शांति रक्षक से सैनिक पुलिस अधिकारी और नागरिक कर्मचारी होर सा जुड़े संयुक्त राष्ट्र दुनिया रे संघर्षग्रस्त क्षेत्र ने भेजा सा। उई नी संगे कुल भी कार्यक्रम रा वक्त समाप्त हुआ सा। ए थी औजारी गलबात, संगे ही तुसे सुनू शुभले गीत। एबे सभी सुनने वाले लोका वे नमस्कार।

0: स्वागत है आप सभी का 103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ। 7:10 हो चुके हैं, लीजिए सुनिए किसान और बागवान भाइयों के लिए कार्यक्रम कृषि जगत।
1: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान और बागवान भाई बहनों को हमारा नमस्कार। किसान भाइयों, कृषि जगत के इस अंक में मैं हूँ रीता
2: और मैं निशा शर्मा।
1: तो हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम कृषि जगत लेकर के, और हमें उम्मीद है कि आप भी बैठ गए होंगे फुर्सत के चंद लम्हों में अपना रेडियो सेट ऑन करके। तो बिल्कुल जी, हम हाजिर हैं आपके लिए। निशा जी, सबसे पहले बात करते हैं कि इन दिनों जो हमारे खेत और खलिहान बगीचे हैं उनमें कौन कौन से काम जो हैं वो

0: इन दिनों कर रहे हैं हमारे किसान भाई।
1: जी बिल्कुल। देखिए रीता जी, आजकल जो हमारे किसान भाइयों के लिए मुख्य काम था वो था रबी की फसलों को इकट्ठा करना, यानी कि उनकी कटाई करनी, गहाई करनी और इसके बाद इनका भंडारण करना।
0: जी
1: वो लगभग हमारे निचले और मध्यवर्ती क्षेत्रों के किसान भाई जो हैं वो कर चुके हैं। तो किसान भाइयों, अगर भंडारण आपने अभी तक नहीं किया है तो वो देखिए बहुत अच्छी धूपें लग रही हैं, तो अपनी फसलों को अच्छी तरह से सुखाएं और सुनिश्चित कर लें कि जब आपकी फसल अच्छी तरह से सूख जाए उसके बाद ही आप उसका भंडारण जो है वो करें, ताकि आपकी फसल जो है वो कीड़ों मकोड़ों से सुरक्षित रह सके।
0: जी बिल्कुल सही बात कही आपने निशा जी। इसके अलावा किसान भाइयों, आप जब फसल का भंडारण कर रहे हैं तो उससे पहले ये भी ध्यान रखें कि जहां आप फसल का भंडारण कर रहे हैं वो स्थान कैसा है। अगर आप कच्ची जगह में फसल का भंडारण कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, वहाँ पर अच्छी तरह से मिट्टी गोबर की लिपाई कर दें और कमरे को खोल करके रखें ताकि हवा का संचार बना रहे और किसी तरह की सीलन वहाँ ना रहे।
1: जी
0: इसके अलावा अगर आप बोरियों में जो है अनाज का भंडारण कर रहे हैं तो बोरियों को जो है वो कीटनाशक दवाइयों से उपचारित कर लें, और फसल तभी आप भंडारित करें जब वो अच्छी तरह से सूख जाए। दाने को आप दांत के नीचे दबा करके देखें, अगर कट की आवाज आती है तो इसका मतलब है कि आपका अनाज जो है वो अच्छी तरह से सूख गया है, अब वो भंडारण करने लायक हो गया है। साथ ही साथ चूहों की जो बिलें हैं उनका भी ध्यान रखें, वहां पर आप सीमेंट आदि भर सकते हैं, और अगर पक्के कमरे में आप अनाज का भंडारण कर रहे हैं तो वहां चूने आदि की लिपाई जरूर कर लें।
1: जी बिल्कुल रीता जी। और इसके साथ ही देखिए, हमारे किसान भाइयों ने गर्मियों की सब्जियां जो हैं वो भी अपने खेतों में लगा रखी हैं। तो किसान भाइयों, अगर बारिशें नहीं होती हैं तो आप उनमें समय समय पर सिंचाई का प्रबंध भी करते रहें, और खरपतवार जो हैं वो भी आप समय समय पर अपनी लगी हुई फसलों से निकालते रहें।
0: जी
1: इसके अलावा आने वाले दिनों में कई तरह के रोग हैं वो भी आपकी लगाई हुई सब्जियों में लग जाएंगे, तो आप ध्यान रखें, अपनी फसलों का निरीक्षण करते रहें कि कहीं उनमें किसी तरह के कोई रोग या फिर कीट तो नहीं लग गए। और अगर आपको लक्षण दिखाई देते हैं रोगों के या कीटों के, तो किसान भाइयों समय रहते उनका उपचार भी आपने करना है।
0: जी
1: तो रीता जी, क्या कुछ खास लेकर आए हैं आज के इस कार्यक्रम में अपने किसान बागवान भाई बहनों के लिए?
0: जी निशा जी बिल्कुल, हम हाजिर हैं। देखिए ना, काम की बातों में हम अपने किसान भाइयों को जानकारी देंगे सिंचाई की विभिन्न विधियों के बारे में, और इसके अलावा लोकगीतों से उनका मनोरंजन करवाया जाएगा। हर रोज की तरह हम अपने श्रोताओं को सुनाते हैं जानकारीपूर्ण बातचीत, और जानकारीपूर्ण बातचीत का पुनः प्रसारण आज भी हम उनको सुनवाने जा रहे हैं। विषय है टमाटर की फसलों के रोग। डॉक्टर पूजा भरमेरा से जानकारी हासिल कर रहे हैं रामकुमार। तो आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और काम की बातों में जानकारी देते हैं सिंचाई की विभिन्न विधियों के बारे में।
1: जी बिल्कुल।
0: किसान भाइयों, कृषि उत्पादन में जल सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत है। टिकाऊ उत्पादन के लिए जल का विवेकपूर्ण प्रयोग करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। बढ़ती हुई आबादी और घटती प्रति व्यक्ति भूमि और जलवायु परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सिंचाई की महत्वता और भी बढ़ जाती है। हमारे देश में जल संसाधनों की प्रचुर मात्रा उपलब्ध है, फिर भी सिंचाई और जल उपयोग की मात्रा कम है। वर्तमान विकसित जल संसाधनों के दुरुपयोग के कारण जल की कमी बढ़ती हुई एक चुनौती बन गई है।
1: जी बिल्कुल। देखिए, कृषि योग्य क्षेत्र वर्षा पर आधारित होता है। बहुमूल्य वर्षा जल को परिस्थिति के अनुसार फसल में ही नमी संग्रहण विधियों द्वारा और अतिरिक्त फालतू बह रहे जल को संग्रह करके पुनः फसल में अधिक उत्पादन के लिए सिंचाई के रूप में उपयोग करना चाहिए। जलवायु की विषमता और प्राकृतिक संसाधनों का उचित प्रबंध न होने पर इन कारणों से क्षेत्रों की उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इन क्षेत्रों से उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि की उन्नत तकनीकें अपनाने की बहुत जरूरत है।
0: जी किसान भाइयों, सिंचाई के पानी का प्रयोग, खेत की सिंचाई करने की विधियां, स्थलाकृति, मिट्टी के किस्म, उगाई जाने वाली फसल, फसल के मूल्य तथा उपलब्ध जल आपूर्ति पर निर्भर करती है। सिंचाई की विधि चाहे जो भी हो, फसल द्वारा सिंचाई जल के सबसे दक्ष और प्रभावी उपयोग के लिए प्रणाली को तैयार करना अति आवश्यक है। सिंचाई की विधियों की बात करें किसान भाइयों, हम तो सतही सिंचाई, फुहारक छिड़काव या स्प्रिंकलर भी हम इसे कहते हैं, बूंद बूंद या फिर टपक ड्रिप सिंचाई। सतही सिंचाई की बात करें तो सिंचाई भूमि की सतह पर पानी को अवरुद्ध करके या पानी को सतह पर बहाकर की जाती है। प्रत्येक मामले में पानी को नियंत्रण में रखने के लिए कुछ साधन उपलब्ध करवाए जाने चाहिए ताकि फसल की पानी की

0: आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए पानी समुचित गहराई तक प्रवेश कर सके। गहन, अंततः गहन, अंत श्रावण और रिसन द्वारा पानी की अत्यधिक क्षति भी एक प्रभावी और दक्ष सिंचाई प्रणाली में बाधा है। मेड़ों पर लगाई गई फसलें, जिस तरह आलू को एक नाली छोड़कर 3/4 नाली पानी से भरकर सिंचाई देने से फसल से अच्छी पैदावार मिलती है। आलू के खेतों को कभी पूरा पानी से नहीं भरना चाहिए, इन बातों का आप ध्यान रखें।
1: जी, अब बात करते हैं फुहारक सिंचाई, जिसे कि स्प्रिंकलर भी कहा जाता है। इस विधि में पानी फुहारे के रूप में भूमि की सतह के ऊपर दिया जाता है, जो कुछ कुछ वर्षा से मिलता जुलता है। ये विधि उन क्षेत्रों के लिए अच्छी मानी जाती है जिनकी स्थलाकृति ऊंची नीची होती है और जहाँ पर भूमि कटाव का खतरा रहता है। ये पानी के एक समान वितरण को सुनिश्चित करती है और मिट्टी की अधिकांश किस्मों के लिए अनुकूल होती है और फार्म उपकरणों के प्रयोग में कोई बाधा नहीं करती। इसकी मूल लागत ज्यादा होती है। ये विधि केवल ऊंचे मूल्य वाली फसलों के लिए अच्छी मानी जाती है। इसमें पानी की दक्षता सही सिंचाई की तुलना में दुगनी होती है, जिसमें कि इस विधि द्वारा अपेक्षाकृत अधिक भूमि की सिंचाई की जा सकती है और भूमि को समतल बनाने का काम आवश्यक नहीं होता।
0: इसके अलावा किसान भाइयों, हम बात करते हैं बूंद बूंद या फिर टपक सिंचाई, इसे हम ड्रिप इरिगेशन भी कहते हैं। ये विधि सबसे दक्ष पाई गई है, क्योंकि इस विधि द्वारा मात्र 10% पानी ही व्यर्थ जाता है, जबकि सतही सिंचाई में इसकी मात्रा 60% और फुहारक विधि में 20% रहती है। इसे टपक सिंचाई भी कहते हैं। सिंचाई छोटे व्यास वाली PVC ट्यूबों का प्रयोग करके की जाती है, जिनमें संयंत्रों के आधार के पास चुने हुए स्थानों पर टपककारी ड्रिपर नामक युक्तियां और उपकरण लगे होते हैं।
1: जी बिल्कुल। अब बात कर लेते हैं सिंचाई की दक्षता बढ़ाने के लिए क्या कुछ आप कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, भूमि को उसकी श्रेणीकरण के अनुरूप समुचित रूप से समतल करें। भूमि में जैविक खादें डालकर जीवांश को बढ़ाएं। खरपतवारों को समय समय पर नियंत्रित करें। सही प्रकार के उर्वरकों का प्रयोग करें। फसल के विकास की समुचित अवस्थाओं में खेत की सिंचाई करें और इसके अलावा किस्मों का उचित चयन करें। सिंचाई के स्रोत के अनुसार प्लॉट का उचित आकार करना है आपने, और साथ ही सिंचाई के पानी की सही मात्रा का प्रयोग करना है और सिंचाई के पानी की समुचित विधि का प्रयोग आप करें।
0: किसान भाइयों, खेत का अच्छा प्रबंधन, जिस तरह सही समय पर बुआई तथा पौधों की समुचित संख्या को बनाए रखें, कीटाणुओं और रोग के नियंत्रण के लिए पौधों की उचित सुरक्षा करें, सिंचाई जल की दक्षता को बढ़ाने के लिए ये आवश्यक है कि मिट्टी के प्रबंधन तथा सिंचाई के स्रोत विधि को ध्यान में रखकर खेत में उपयुक्त आकार के प्लॉट बनाए जाएं। हल्की प्रकार के मिट्टी में प्लॉट छोटे आकार के होने चाहिए, ताकि उनमें पानी की गति तीव्र हो। बड़े प्लॉटों में पानी की गति आगे की अपेक्षा नीचे की ओर अधिक होगी तथा सिंचाई की दक्षता कम होगी। सिंचाई फसलों में क्रांतिक अवस्थाओं पर जल उपलब्धता के आधार पर दें। किसान भाई, पॉली हाउस में उगने वाली फसलों, सब्जियों और फूलों को जल तनाव मापी की सहायता से भी सिंचाई देने की प्रक्रिया को संचालित कर उपलब्ध जल की अधिक उत्पादकता प्राप्त कर सकते हैं। पॉली हाउस में तो आवश्यकता के अनुसार जल पौधों को मिलने के लिए स्वचालित पद्धतियों पर भी समावेश कर सकते हैं।
1: जी बिल्कुल रीता जी। तो देखिए, ये तो बात हुई सिंचाई की विधियों के बारे में। तो अब कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अपने किसान बागवान भाई बहनों को सुनवाते हैं कृष्ण लाल सहगल की आवाज में ये लोकगीत।

0: किसान भाइयों, कृष्ण लाल सहगल की आवाज़ में ये तो सुना आपने लोकगीत। किसान भाइयों, हर रोज़ की तरह हम आपको विभिन्न तरह की जानकारियाँ देते हैं। आज जानकारी का विषय रहेगा टमाटर की फसलों के रोग। डॉक्टर पूजा भरमेरा से जानकारी हासिल कर रहे हैं राम कुमार। तो आइए हम सुनते हैं इस जानकारी पूर्ण बातचीत का पुनः प्रसारण।
1: किसान भाइयों, आज हमारे आकाशवाणी स्टूडियोज में हमारे साथ है डॉक्टर पूजा भरमेरा। डॉक्टर साहब, आपका हमारे आकाशवाणी स्टूडियोज में स्वागत है।
2: धन्यवाद राम जी, सभी किसान भाई बहनों को मेरी ओर से नमस्कार।
1: किसान भाइयों, आज डॉक्टर साहब हमें जिस विषय में जानकारी देंगे वो है टमाटर की फसलों के रोगों के बारे में।
2: टमाटर हिमाचल प्रदेश में मुख्य रूप से नकदी फसल के तौर पर मध्य पर्वतीय क्षेत्रों जैसे सोलन, सिरमौर, कुल्लू, मंडी में मई जून के माह में बरानी फसल के रूप में अथवा फरवरी मार्च में सिंचाई की सहायता से उगाई जाती है
1: जी।
2: इसके साथ साथ निचले पर्वतीय क्षेत्रों विशेषकर कांगड़ा व बिलासपुर जिलों में जून जुलाई में बरानी फसल तथा मई जून में सिंचाई की सहायता से किसान टमाटर की पैदावार से आमदनी कमा रहे हैं। टमाटर में कई रोगों और कीटों के आक्रमण से पैदावार में कमी किसानों को समस्या पैदा करती है। आज इस बातचीत के माध्यम

0: से टमाटर में होने वाले विभिन्न रोगों और कीटों के आक्रमण तथा उसके रोकथाम मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगी।
1: जी डॉक्टर साहब, टमाटर की फसल के मुख्य मुख्य रोग जो है उसके बारे में आप हमारे किसान भाइयों को जानकारी देंगे और उन रोगों के उपचार क्या क्या है।
0: जी राम जी, टमाटर की फसल के मुख्य बीमारियां पौध का कमर तोड़, बक आई रॉट, ऑल्टरनेरिया झुलसा रोग, पत्तों पर सेप्टोरिया फफूंद के धब्बे, बकाई व ऑल्टरनेरिया फल सड़न, पत्तों के अन्य फफूंदी रोग, बैक्टीरियल विल्ट, बैक्टीरियल कैंकर, टमाटर का शू स्ट्रिंग रोग और चूर्ण लासिता रोग है। इसमें मैं पहले पौध का कमर तोड़ के बारे में आपको बताना चाहूंगी, जिसका रोग जनक पिथियम अफेनिडर्मेटम है। इसमें बीज से पौधा पैदा होते ही मुरझा जाता है, प्रभावित पौधा जमीन पर गिर जाता है। इसके उपचार के लिए क्यारियों को फॉर्मलिन से रुपाई के 15-20 दिन पहले शोधित करें। बीज तभी बोएं जब मिट्टी से फॉर्मलिन की गंध आनी बंद हो जाए। इसके लिए फॉर्मलिन की मात्रा है 1 लीटर फॉर्मलिन प्रति 7-10 लीटर पानी में।
1: जी
0: क्यारियों को मैंकोजेब 25 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी में या फिर कार्बेंडाजीम 5 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी में घोलकर रोग के लक्षण देखते ही सींचे। दूसरी बीमारी है बकाई रॉट, जिसका रोग जनक है फाइटोपथोरा पैरासिटिका। इसमें प्रभावित हरे फलों के ऊपर हल्के और गहरे भूरे रंग के धब्बे चक्कर के रूप में दिखाई देने लगते हैं। इसके उपचार के लिए रोग रोधी किस्में लगाएं, पौधों को सहारा देकर सीधा खड़ा रखें, उनके निचले फैलाव में 3-45 सेंटीमीटर ऊंचाई तक के पत्ते मानसून के आरंभ होते ही तोड़ दें, सड़े फलों को नष्ट कर दें, जल निकासी का उचित प्रबंध रखें, फसल पर रिडोमिल एमजेड जो कि 25 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी में उसका छिड़काव करने के 10-15 दिनों के बाद मैंकोजेब इंडोफिल M45 या बोर्डो मिश्रण का छिड़काव करें। इसके बाद है ऑल्टरनेरिया झुलसा रोग, जिसका रोग जनक है ऑल्टरनेरिया लिनरेई। इसमें पत्तों पर गहरे भूरे धब्बे चक्कर बनाते हुए उभर आते हैं जो पत्तों पर पीलापन लाते हैं, फलों पर भी ऐसे लक्षण आ जाते हैं। इसके उपचार के लिए बीज रोग मुक्त फल से ही लें। बीज का उपचार थिरम 75 WP से करें। पौधों पर 8-10 दिन के अंतराल पर हेक्साकैप या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 30 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी या मैंकोजेब 25 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी का छिड़काव करें। पौधों पर मैंकोजेब FP की दर 0.55% की दर से 15 दिन के अंतराल पर बीमारी के लक्षण आते ही छिड़काव करें। संपूर्ण रोकथाम के लिए 4 छिड़काव की जरूरत पड़ती है।
1: जी।
0: इसके अलावा पत्तों पर सेप्टोरिया फफूंद के धब्बे, बकाई व ऑल्टरनेरिया फल सड़न है, जिसका रोगजनक सेप्टोरिया लाइकोपर्सिसी है। इसके उपचार के लिए फसल पर मैंकोजेब 75 का 25 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी की मात्रा में 3-4 छिड़काव करें। मैंकोजेब 75 WP और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का बारी बारी से छिड़काव करें। फसल पर बेलीटॉन या इंडोफिल M45 25 ग्राम प्रति 10 लीटर या बेनिफल या बेनेट या सॉफ या इंडोफिल M45 का 15 दिन के अंतराल में 3 बार छिड़काव करें, जिनकी मात्रा 1 ग्राम प्रति 1 लीटर पानी, 2 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी तथा 25 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी है।
1: डॉक्टर साहब, बैक्टीरियल विल्ट में टमाटर की रोग प्रतिरोधी किस्में क्या क्या है?
0: जी राम जी, ये किस्में हैं सोलन वज्र, पालम पिंक, पालम प्राइड, पालम टोमेटो हाइब्रिड 1 या फिर हिम पालम टमाटर हाइब्रिड 2। इस बीमारी का रोगजनक है राल्स्टोनिया सोलनेशियम, जिसमें पौधे किसी भी अवस्था में मुरझा जाते हैं। इसके लिए 3 वर्षीय फसल चक्र अपनाएं, जिसमें टमाटर प्रजाति की फसल ना हो, रोग मुक्त तथा स्वस्थ पौध का ही रोपण करें। इसके अलावा अगली बीमारी है बैक्टीरियल कैंकर, जिसका रोगजनक है क्लेविवेक्टर मिशिगनेसिस सब स्पीशीज मिशिगनेसिस। इसमें निचले फैलाव के पत्ते मुरझा जाते हैं, तने पर भूरे रंग की धारियां और फलों पर सफेद रंग से घिरे छोटे भूरे धब्बे दिखाई देते हैं।
1: जी।
0: इसके उपचार के लिए रोग मुक्त स्वस्थ पौध लगाएं, रोगी पौधे उखाड़ कर नष्ट कर दें, 3 वर्षीय फसल चक्र अपनाएं और ऐसी फसल उगाएं जिस पर इस रोग का प्रभाव ना हो। टमाटर में एक विषाणु रोग भी है, जिसका नाम शू स्ट्रिंग रोग है। इसमें पत्तियां विशेषकर आकार में मोज़ेक नमूने बनाती हैं तथा नीचे को मुड़ने लगती हैं। पत्तों के अग्रभाग तंतु जैसे हो जाते हैं। रोगग्रस्त पौधे पर देरी से फूल आता है तथा फल छोटे रह जाते हैं और इसका रोगजनक है क्यूक्यूम्बर मोज़ेक वायरस।
1: जी, तो डॉक्टर साहब, अगर हमारे टमाटर की फसल में इस प्रकार का रोग लग जाए तो उसकी रोकथाम के लिए हम क्या करेंगे?
0: जी राम जी, इसके रोकथाम के लिए रोग प्रतिरोधी किस्में जैसे S12 लगाएं, रोग को आश्रय देने वाले खरपतवार जैसे धतूरा तथा मक्को को निकाल दें और इसमें मेलाथियन 50 EC के घोल का छिड़काव तेला का नियंत्रण करने के लिए करें, जिससे यह बीमारी फैलती है
1: जी।
0: क्योंकि तेला इस वायरस का वेक्टर की तरह काम करता है
1: जी।
0: इसके अलावा जो अन्य रोग टमाटर की फसल में पाया जाता है वो है चूर्ण लासिता।

0: जिसका रोगजनक ओडियम लाइकोपर्सिकम है। इसमें फफूंद के कारण पत्तों के ऊपर के हिस्से पर धब्बे पड़ जाते हैं। पहले यह हल्के रहते हैं पर बाद में बीमारी बढ़ने पर एकत्रित होकर बड़े बन जाते हैं। प्रभावित पौधे पीले पड़कर मरने लगते हैं।
1: जी तो डॉक्टर साहब, ये तो आपने लक्षणों के बारे में हमारे किसान भाई को जानकारी दी। डॉक्टर साहब, अब इस रोग की रोकथाम के लिए हमारे किसान भाइयों को क्या करना है?
0: इसमें किसान भाइयों को पौधों में बीमारी के लक्षण आते ही हेक्साकोनाजोल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी से छिड़काव करना है। इसके पश्चात डाइनोकैप 10 ग्राम प्रति लीटर पानी में डालकर किसान भाई इसका फसल पर छिड़काव करें। 10 दिन के अंतराल पर एक अन्य छिड़काव फिर करें।
1: जी तो डॉक्टर साहब, ये तो आपने हमें जानकारी दी टमाटर की रोग प्रतिरोधी किस्मों के बारे में। डॉक्टर साहब, अब हमारे किसान भाई आपसे ये जानना चाहेंगे कि टमाटर की फसल में कौन कौन से फफूंद रोग लग जाते हैं और इन रोगों की रोकथाम के लिए उन्हें क्या करना है?
0: टमाटर के फफूंद रोग जिसे मैंने पहले भी बताए वो है चूर्ण लासिता रोग, बकाई रॉट, सेप्टोरिया के दाग धब्बे और पौध का कमर तोड़। फफूंद रोग के उपचार हेतु संयुक्त छिड़काव की सारणी मैं किसान भाई बहनों के साथ साझा करूंगी। बिजाई से पूर्व क्यारियों को बिजाई से 20 दिन पूर्व फॉर्मलिन 1 लीटर प्रति 7-10 लीटर पानी से शोधित करें।
1: जी।
0: बीज स्वस्थ फलों से ही लें। बीज को थिरम 75 WP या हेक्साकैप 75 WP से उपचार करें।
1: जी।
0: रोपाई के समय निरोग पौध का रोपण करें। पौधों को सहारा देकर सीधा रखें और नीचे के 15 सेंटीमीटर भाग पर पत्ते ना रहने दें।
1: जी।
0: रोपाई के बाद और मॉनसून से पूर्व पौधों पर मैंकोजेब 25 ग्राम प्रति 10 लीटर या बोर्डो मिश्रण, चूना 80 ग्राम नीला थोथा 10 लीटर पानी में डालकर या ब्लाइटॉक्स 50 या फाइटोलान 10 का छिड़काव करें। फल आने पर प्रभावित पौधों व फलों को नष्ट कर दें। पौधों पर रिडोमिल MZ 10-15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करने के बाद कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या ब्लाइटॉक्स 50 या मैंकोजेब इंडोफिल M45 का छिड़काव करें।
1: जी।
0: पौधों में फल तोड़ने से 8 दिन पूर्व अगर कंपेनियन का एक छिड़काव किया जाए तो तोड़ने के पश्चात फफूंदों द्वारा बीमारियों को नियंत्रण में रखा जा सकता है और फल स्वस्थ रहते हैं।
1: जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये तो आपने हमें जानकारी दी फफूंद रोगों की रोकथाम के बारे में। तो डॉक्टर साहब, अब हमारे किसान भाई आपसे ये जानना चाहेंगे कि टमाटर की फसलों में कीटों का आक्रमण भी होता है और उन कीटों का प्रबंधन किस प्रकार से हमारे किसान और बागवान भाइयों को करना है?
0: जी राम जी, टमाटर की फसल में मुख्य कीट हैं फल छेदक, फल मक्खी, कटुआ कीड़ा और रूट नॉट नेमाटोड।
1: जी।
0: फल छेदक के आक्रमण में इसकी सुंडियां कोमल पत्तियों पर पलती हैं और बाद में छेद करके फल के अंदर पलने लगती हैं। इसके लिए किसान भाइयों से मेरा निवेदन है, कराटे 5 EC को 100 लीटर पानी में घोलकर फूल आने के समय छिड़काव करें। इसके बाद फल मक्खी यह फल में अंडे देती है और फिर इसका प्रकोप फल के अंदर फैल जाता है और फल खाने योग्य नहीं रहता।
1: जी।
0: इसके लिए किसान भाई बहन मई जून में जब कीट के प्रौढ़ फसल पर दिखाई देने लगे तभी उन्हें आकर्षित करने हेतु 50 ग्राम खांड या गुड़ और मेलाथियन 10 मिलीलीटर 5 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इसमें किसान भाई बहन पालम ट्रैप का भी प्रयोग कर सकते हैं।
1: जी।
0: इसमें कुछ सावधानियां भी किसान भाई बहनों को बरतनी है जिसमें पौधों पर छिड़काव करने के बाद 15 दिन के बाद ही फल तोड़ें। रोगग्रस्त फल एकत्र करके मिट्टी में दबा दें या किसी ऊपर बताए गए कीटनाशी रसायन द्वारा नष्ट कर दें।
1: जी।
0: इसके अलावा कटुआ कीड़ा जो गंदी भूरी सुंडियां भूमि में छिपी रहती हैं और रोपण के समय से ही पौध के कोमल तने को रात के समय मिट्टी के धरातल के बराबर वाले स्थान से काट देती हैं और इससे फसल को भारी हानि पहुंचती है। इसके लिए किसान भाई बहन खेत को तैयार करते समय 80 मिलीलीटर क्लोरपाइरीफॉस 20 को 1 किलोग्राम रेत में मिलाकर प्रति कनाल में अच्छी तरह मिला दें और गली सड़ी गोबर की खाद का ही प्रयोग करें।
1: जी।
0: अंत में जो कीटनाशक टमाटर की फसल को बेहद नुकसान पहुंचाता है वो है रूट नॉट निमेटोड। ये सूक्ष्मदर्शी जीव मिट्टी के अंदर रहते हैं। इसके प्रकोप में जड़ों में गांठें बन जाती हैं, पौधों के ऊपरी भाग पीले पड़कर मुरझा जाते हैं तथा पौधों की बढ़ोतरी रुक जाती है। इनका प्रभाव खेतों में टुकड़ों के रूप में दिखता है। अधिक प्रभावित फसल या पत्तों का मुड़ना और दिन में अस्थायी तौर पर मुरझाना इसके मुख्य लक्षण हैं। इसके उपचार के लिए किसान भाई बहन रोगग्रस्त खेतों में टमाटर और इसके वंश के अन्य पौधे जैसे शिमला मिर्च, लाल मिर्च, बैंगन, आलू आदि फसल लेने के बाद तुरंत दूसरी फसल ना लें। खेत में फेरबदल के लिए अनाज वाली फसलें ही उगाएं। रोगग्रस्त खेतों में 2-3 वर्ष के लिए इसकी प्रतिरोधी किस्में जैसे कि S120 ही लगाएं। सूत्र कृमि रहित पौधशाला से ही पौध लें तथा प्रतिवर्ष पौधशाला का स्थान बदलें। और इसके अलावा किसान भाई बहन ग्रसित खेतों को

0: 2 किलोग्राम फोरेट के दाने प्रति कनाल के हिसाब से डालकर ही खेत में डालें।
1: जी, तो किसान भाई, डॉक्टर साहब ने हमें जानकारी दी टमाटर की फसलों में कीटों का आक्रमण और उसकी रोकथाम के बारे में। डॉक्टर साहब, अब आप हमारे किसान और बागवान भाइयों को टमाटर की खेती के लिए कुछ सुझाव देना चाहेंगे?
0: किसान भाई बहनों से मेरा यही निवेदन रहेगा कि फसल की बीमारियों में छिड़काव करते टाइम वह जो छिड़काव के मुख्य नियमों का पालन करके अपनी सेहत और फसल की सेहत का ध्यान रखें।
1: जी, तो किसान भाइयों, डॉक्टर पूजा भरमेरा जी ने हमारे आकाशवाणी स्टूडियोज में आकर हमारे किसान और बागवान भाइयों को टमाटर की फसलों के रोगों के बारे में जानकारी दी। निश्चय ही हमारे किसान और बागवान भाई इस जानकारी का फायदा उठाएंगे और अपनी आमदनी को बढ़ाएंगे। तो डॉक्टर साहब, आप हमारे आकाशवाणी स्टूडियोज में आए और आपने हमारे किसान और बागवान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद राम जी, सभी किसान भाइयों को मेरी ओर से फिर से नमस्कार।
2: किसान भाइयों, आपने सुनी जानकारी पूर्ण बातचीत, विषय था टमाटर की फसलों के रोग, जिसमें डॉक्टर पूजा भरमेरा से जानकारी हासिल कर रहे थे राम कुमार। उम्मीद है आप जरूर कुछ न कुछ लाभ इससे उठाएंगे। तो रीता जी, अब कार्यक्रम में समय हो चला है एक और लोकगीत का, तो अपने किसान बागवान भाई बहनों के साथ हम भी सुनते हैं उमा कौशल की आवाज में ये प्यारा सा लोकगीत।

0: किसान भाइयों, उमा कौशल की मधुर आवाज में ये सुना आपने लोकगीत। इसी लोकगीत के साथ कृषि जगत कार्यक्रम का समय भी समाप्त हुआ। सभी श्रोताओं से अनुमति चाहेंगे। नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता दीपक।

अभी आपने सुना कार्यक्रम कृषि जगत 103.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी FM शिमला से बोल रहे हैं। कृपया हमारी अगली घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का शिमला केंद्र। अब प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ आप डीटीएच सेवा, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और आकाशवाणी FM शिमला से भी सुन रहे हैं।
1: गांव की पहचान होती है उसकी मजबूत पंचायत से, और पंचायत मजबूत बनती है आपके एक वोट से।
2: क्योंकि ईमानदारी और बिना किसी के प्रभाव में आए दिए गए आपके वोट ही तय होते हैं गांव और बनती है सड़क, पानी, स्वच्छता और रोजगार संबंधी नीतियाँ।
1: इसीलिए 26 मई, 28 मई और 30 मई को होने वाले पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर अपनी भागीदारी निभाएं।
2: अपने परिवार और गांव वालों को भी जागरूक बनाएं और 100% मतदान के संकल्प को हासिल करने का लक्ष्य बनाएं।
1: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए 1% ब्याज दर पर ऋण दे रही है राज्य सरकार। प्रदेश में 16 जून से शुरू होगा जनगणना 2027 का पहला चरण। डिजिटल तकनीक से पहली बार होगी जनगणना। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के तीसरे व अंतिम चरण के लिए कल प्रदेश की 1187 पंचायतों में होगा मतदान। सभी तैयारियां पूरी। पीएम विकास योजना के तहत प्रदेश के 2420 युवाओं व महिलाओं को मिलेगा प्रशिक्षण। और राजधानी शिमला सहित राज्य के अधिकांश स्थानों पर ओलावृष्टि व वर्षा, लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार डॉक्टर वाईएस परमार विद्यार्थी ऋण योजना के तहत विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए 20 लाख रुपए तक का ऋण 1% ब्याज दर पर उपलब्ध करवा रही है।

0: मुख्यमंत्री ने आज शिमला में उनसे मिलने आए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना से लाभान्वित अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र के 21 विद्यार्थियों से बातचीत के दौरान ये बात कही। उन्होंने विद्यार्थियों से इस सुविधा का भरपूर लाभ उठाकर जीवन में अपने लक्ष्य हासिल करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश के 156 से अधिक स्कूलों में CBSE पाठ्यक्रम शुरू किया है। इन स्कूलों में विद्यार्थियों को कला, विज्ञान और वाणिज्य संकायों में शिक्षा प्रदान की जा रही है। इस बीच एशियन कुराश कप सीनियर वर्ग के कांस्य पदक विजेता सौरभ सुमन ने भी आज शिमला में मुख्यमंत्री से भेंट की। सौरभ सुमन ने 22 से 25 मई तक उज्बेकिस्तान के नुकुस में आयोजित एशियन कुराश कप प्रतियोगिता में कांस्य पदक हासिल किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सौरभ सुमन की ये उपलब्धि प्रदेश के युवाओं को खेलों और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेगी। प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण की गणना 16 जून से 15 जुलाई 2026 तक आयोजित की जाएगी। हिमाचल प्रदेश जनगणना कार्य निदेशालय की निदेशक दीपशिखा शर्मा ने शिमला में बताया कि इस बार जनगणना पूरी तरह डिजिटल तकनीक, मोबाइल ऐप और स्वगणना की सुविधा से लैस होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जनगणना पर 86 करोड़ रुपये खर्च होंगे। दीपशिखा शर्मा ने कहा कि पहला चरण मकान सूचीकरण व आवास गणना का होगा, जो 16 जून से 15 जुलाई तक चलेगा, जबकि इस बार नागरिकों को स्वगणना की सुविधा भी दी जाएगी। इसके लिए 1 जून से 15 जून तक ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध रहेगा, जहां परिवार स्वयं अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहले चरण के सफल संचालन के लिए लगभग 20,630 प्रगणकों और पर्यवेक्षकों की तैनाती की जाएगी।
1: हिमाचल प्रदेश में जो मकानों की गणना एवं मकान सूचीकरण है, यानी प्रथम चरण, उसे 16 जून से 15 जुलाई में कंडक्ट किया जा रहा है। इस बार स्वगणना का विकल्प भी रखा गया है, मतलब कि यदि कोई आम नागरिक अपने आप अपनी जानकारी दर्ज करना चाहता है तो उन्हें यह सुविधा दी गई है, जिसके लिए स्वगणना पोर्टल है। आप sc.census.gov.in टाइप करके उस पोर्टल पर पहुँच कर अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं 16 जून से 15 जुलाई के भीतर। तो उस वक्त जो प्रगणक है वो हर घर में, हर स्ट्रक्चर में विजिट करेंगे, उस वक्त उनसे उस सेल्फ इन्यूमरेशन आईडी को शेयर किया जाएगा और वो सेल्फ इन्यूमरेशन आईडी के मैच करने पर जो भी घर में उपस्थित होते हैं उनके साथ उन प्रश्नों को वेरीफाई करके उसको फाइनली सबमिट कर देंगे। मैं हिमाचल की जनता से यह भी आह्वान करूंगी कि वो ज्यादा से ज्यादा स्वगणना करके इस प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करें।
0: प्रदेश में कल 30 मई को पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के तीसरे व अंतिम चरण के लिए मतदान होगा। मतदान के लिए चुनाव आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतदान सुबह 7 बजे शुरू होगा और दोपहर बाद 3 बजे तक चलेगा। मतदान के तुरंत बाद पंचायतों में प्रधान, उप प्रधान और सरपंचों के लिए पड़े वोटों की गिनती होगी, जबकि जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए हुए मतदान की गिनती 31 मई को होगी। 31 मई को ही प्रदेश के 4 नगर निगमों सोलन, मंडी, पालमपुर और धर्मशाला के लिए हुए चुनाव की मतगणना भी होगी। पंचायती राज संस्थाओं के तीसरे चरण के चुनाव के लिए कल 1,187 पंचायतों में वोट डाले जाएंगे। उधर सिरमौर के जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त प्रियंका वर्मा ने बताया कि कल अंतिम चरण में जिले की 89 पंचायतों में मतदान होगा। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण व निष्पक्ष तरीके से सम्पन्न करवाने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर दी गई हैं।
2: इसमें हमारी टोटल 89 पंचायतें रहेंगी और 515 वार्ड्स रहेंगे जहां कल मतदान किया जाएगा। अब तक का जो मतदान हमारे दो चरणों में रहा है वो काफी पीसफुल रहा है। लोग भारी संख्या में आए हैं मतदान देने के लिए। मैं उन सबकी बहुत बहुत आभारी हूं कि इतने गर्म मौसम में भी वो अपना मताधिकार एग्जीक्यूट कर रहे हैं और आगे आके प्रतिनिधित्व चुन रहे हैं। कल का भी हमारा क्योंकि अंतिम चरण है, मैं अपील करूंगी आप सभी से कि आखिरी दिन जो हमारा 89 पंचायत है वहां के जितने भी कंसर्न हमारे सिरमौरवासी हैं कल आए और अच्छे से वोट करें।
0: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, xhandle@AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश उद्यमिता विकास केंद्र को केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा पीएम विकास योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटिंग एजेंसी के रूप में चुना गया है। इस योजना के तहत प्रदेश के कुल 2,420 युवाओं और महिलाओं को कौशल विकास व उद्यमिता से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इस संबंध में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

0: और हिमाचल प्रदेश उद्यमिता विकास केंद्र के बीच आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश इलाकों में आज शाम के समय तेज वर्षा व ओलावृष्टि होने से तापमान में हल्की गिरावट आई है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से कुछ राहत मिली है। शिमला जिला के ऊपरी इलाकों में कहीं कहीं अत्यधिक ओलावृष्टि से सेब सहित अन्य फसलों को नुकसान पहुंचा है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे शिमला जिला संवाददाता।
1: हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में आज तेज बारिश और ओलावृष्टि हुई है। बारिश के बाद लोगों ने गर्मी से राहत ली है, लेकिन ओलावृष्टि से कई भागों में सेब व दूसरी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। शिमला जिला के खड़ा पत्थर और रोहडू, जबकि मंडी जिला के करसो के डींग व कथेड़ में ओलावृष्टि से सेब की फसलों को नुकसान पहुंचा है। कई जगह सेब को ओलावृष्टि से बचाने के लिए लगाए गए एंटी हेलनेट भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। मौसम विभाग ने अगले कल भी किन्नौर और लाहौल स्पीति को छोड़कर अन्य सभी 10 जिलों में आंधी तूफान व ओलावृष्टि के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कुछ स्थानों पर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेंगी। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा।
0: अकादमिक अनुसंधान और कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय और महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी बिहार के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया। ये समझौता राष्ट्रीय शिक्षा नीति और भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के दिशा निर्देशों के तहत किया गया है। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सतप्रकाश बंसल ने कहा कि इस MOU के तहत दोनों विश्वविद्यालय संयुक्त रूप से कई अकादमिक और शोध गतिविधियों को आगे बढ़ाएंगे।
2: आने वाले समय में हम कुछ कोर्सेज को ज्वाइंट प्रोग्राम के तहत और ड्यूअल डिग्री भी स्टार्ट करेंगे। कुछ स्किल एनहांसमेंट के लिए वर्क करेंगे, एक हम ज्वाइंट जनरल चलाएंगे और कुछ हम कॉमन इश्यूज पे कुछ कंपेंडियम वो हम तैयार करेंगे। जो उनकी स्ट्रेंथ्स है वो हम लेंगे, जो हमारी स्ट्रेंथ्स है वो लेंगे और हम आगे बढ़ेंगे मिलकर के। और इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मैंडेट को भी ध्यान में रखा गया है।
0: प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी के चलते वनों में आग की घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। प्रदेश भर में वनों में आग लगने की अब तक 263 घटनाएं दर्ज की जा चुकी हैं, जिनमें 3328 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है। प्रारंभिक आकलन के अनुसार वनों में आग लगने की घटनाओं से करीब 82 लाख रुपये से अधिक का नुकसान हो चुका है। मंडी सर्किल में वन अग्नि की करीब 87 घटनाएं दर्ज की गई हैं और 513 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र आग की चपेट में आया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा, विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए 1% ब्याज दर पर ऋण दे रही है राज्य सरकार। प्रदेश में 16 जून से होगा जनगणना 2027 का पहला चरण, डिजिटल तकनीक से पहली बार होगी जनगणना। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के तीसरे व अंतिम चरण के लिए कल प्रदेश की 1187 पंचायतों में होगा मतदान, सभी तैयारियां पूरी। PM विकास योजना के तहत प्रदेश के 2420 युवाओं व महिलाओं को मिलेगा प्रशिक्षण। और राजधानी शिमला सहित राज्य के अधिकांश स्थानों पर ओलावृष्टि व वर्षा, लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
3: प्रादेशिक समाचार आप हमारे हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों से भी सुन रहे थे। हम आकाशवाणी शिमला से बोल रहे हैं, लीजिए सुनिए देश का।

0: देश गान अभी आपने सुना। हम आकाशवाणी शिमला से बोल रहे हैं, कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी शिमला। अब आप सुनेंगे प्रसारण के 90 वर्ष के उपलक्ष्य पर प्रगतिशील किसान श्री खेमचंद कश्यप से भेंट वार्ता। भेंट करता है डॉक्टर हुक्म शर्मा। ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी शिमला के साथ साथ आप हमारे हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों पर और आकाशवाणी FM शिमला से भी सुन रहे हैं।
1: नमस्कार श्रोताओं, प्रसारण के 90 वर्ष और इसी कड़ी में आज एक और श्रोता हमारे आज के इस कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं। रेडियो का एक जाना पहचाना नाम खेमचंद कश्यप जी, आप कृषि बागवानी से बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं, आपके बहुत से लेख पत्र पत्रिकाओं में छप चुके हैं और साथ ही विभिन्न संस्थाओं द्वारा आपको सम्मानित भी किया गया है, यानी अनेक सम्मान आपने प्राप्त किए हैं इस विधा में, यानी कृषि और बागवानी की विधा की अगर हम बात करें। खेमचंद कश्यप जी रेडियो के लिए इसलिए भी जाना पहचाना नाम है क्योंकि आप न केवल एक श्रोता के तौर पर बल्कि आकाशवाणी के विभिन्न कार्यक्रमों में भी आप पार्टिसिपेट करते रहे हैं, वो आकाशवाणी की बात हो या दूरदर्शन की। कश्यप साहब, आकाशवाणी स्टूडियोज में आपका हम स्वागत करते हैं।
2: डॉक्टर शर्मा।

0: बहुत नमस्कार, धन्यवाद।
1: श्रोता जब हमारे आकाशवाणी के कार्यक्रमों में भाग लेते हैं तब भी हमें अच्छा लगता है, और जब आपकी प्रतिक्रियाएं हमें मिलती हैं पत्रों के माध्यम से या फोन लाइन के माध्यम से, फोन कॉल्स जो हमारे लाइव फोन इन प्रोग्राम्स हैं, तो वो हमारा मार्गदर्शन करती हैं एक तरह से, तमाम श्रोता जितने भी हमारे कार्यक्रमों से जुड़े होते हैं। और क्योंकि आकाशवाणी और श्रोता का संबंध तो जैसे घर से आंगन का एक संबंध होता है, या दूसरे शब्दों में जो कहते हैं कि एक चोली दामन का साथ होता है आकाशवाणी और श्रोता का। हम कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं, पेश करते हैं अपने श्रोताओं के लिए, श्रोता हमें सुनते हैं, पसंद भी करते हैं, कभी कोई हमसे अगर चूक हो जाती है, कोई त्रुटि रह जाती है, तो हमारा मार्गदर्शन भी करते हैं। आप उन्हीं श्रोताओं में हैं। तो कश्यप साहब, रेडियो से कब से जुड़ाव?
0: डॉक्टर शर्मा, रेडियो से तो मेरा बचपन से ही लगाव है। मैं आपको पीछे थोड़ा इतिहास बताऊं कि जो मेरी माता जी थे वो रेडियो को बहुत सुनते थे, और समय ऐसा था कि देखो वक्त की बात है कि हम अच्छे रेडियो का सेट नहीं खरीद पाते थे, क्योंकि हालात ऐसे थे, तो कहीं देसी सेट भी जाकर मिल जाता तो कहीं टूटा फूटा रेडियो भी, तो उसमें हम सारे प्रोग्राम जो है आकाशवाणी के सुनते रहते थे। मेरी माँ जो थी वो रेडियो से इतना लगाव था उनका कि वो एक एक कलाकार, चाहे वो लोक संगीत है चाहे वो फिल्मी संगीत है, कलाकार को पहचानती थी। तो उन्हीं माँ का आशीर्वाद हम जो है रेडियो को सुनते रहे, और आज दिन तक इतिहास की बात करें तो बहुत लंबा जीवन रह गया हमारा। तो मतलब हम रेडियो के साथ ही जिए, हमने सीखा भी और जो प्रेरणा ली वो लोगों को सिखाया भी।
1: तो कश्यप जी, अब तो आप वरिष्ठ नागरिकों में शामिल हो चुके हैं।
0: जी जी जी।
1: उम्र क्या है आपकी?
0: जी, मेरी उम्र 70 साल है। तो, और मैं मतलब मैं जब से मैंने होश संभाला मैं तब से रेडियो सुन रहा हूँ।
1: जी जी। तो हम ये माने कि लगभग 8-10 साल के आप रहे होंगे।
0: मैं कोई 10 साल का होगा जब मैं रेडियो में जुड़ा रहा।
1: जी, तो पिछले 60 वर्षों से तो बिल्कुल लगातार।
0: मैं 60 वर्षों से बिल्कुल जो है रेडियो को लगातार सुन रहा हूँ। और कैसे सुन रहा हूँ कि हर बारीकियों से लेकर, और जब तक सवेरे हिमांजलि से लेकर और शाम को जब तक जय हिंद नहीं कही, मैं तब तक रेडियो को सुनता रहता हूँ, और जितने भी कार्यक्रम आते हैं बारीकी से लेकर हर प्रोग्राम को सुनता रहता हूँ।
1: खेमचंद कश्यप जी, हमारे श्रोताओं को थोड़ा सा ये भी परिचय दें कि आप हमारे जो प्रदेश के किस क्षेत्र के रहने वाले हैं, और वहाँ पे जो आपका गाँव है और भी क्या लोग रेडियो सुनते हैं।
0: डॉक्टर शर्मा, मैं तहसील सुन्नी से, घेणी नाम जगह है वो, उस पंचायत का मैं संबंध रखता हूँ। गाँव की जो नाम है वो हलोट है, और मेरे गांव में जो बेसिकली जो है एक कृषि का हब है, मतलब कृषक लोग वहां पर अधिकतर रहते हैं और कृषि करते हैं, बहुत ही अच्छी उन्नत कृषि करते हैं। रही बात आपके रेडियो सुनने की, तो हर घर में आज रेडियो का प्रसारण सुना जाता है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये तो खैर हमारा एक शिमला के आसपास है, 35-40 किलोमीटर की दूरी पे है, परंतु डॉक्टर शर्मा मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है, हिमाचल ही नहीं मैं तो फॉरन तक भी गया हूं और बहुत से राज्यों में भी गया हूं, परंतु जो दूर दराज के क्षेत्र है, तो जहां किसी चीज की कोई पहुंच नहीं है, कोई साइंटिस्ट नहीं जाता, कोई वैज्ञानिक अधिकारी नहीं जाता, जो पिछड़ा वर्ग लोग है, मैंने बड़े ध्यान से इस चीज को देखा कि वहां के लोग जो है आकाशवाणी से ऐसे जुड़े हैं कि उनके पास कोई भी विकल्प नहीं है, और आकाशवाणी का उनके लिए मनोरंजन के लिए और ज्ञान के लिए एक मुख्य साधन है।
1: कश्यप जी, पुराने दौर से लेकर आज तक रेडियो में बहुत से परिवर्तन हुए हैं, प्रसारण की गुणवत्ता कहिए या एक प्रस्तुतिकरण का एक तरीका कहिए, तो आप बताएं कि आपने क्या क्या बदलता दौर देखा आकाशवाणी के इस 90 वर्ष का जो हमारा इतिहास रहा है प्रसारण का, और जिसमें कि आप कह रहे हैं कि लगभग 60 वर्षों से, तो जब से आपने होश संभाला तब से आप जुड़े हुए हैं।
0: जी जी।
1: तो पिछले 60 वर्षों में कुछ परिवर्तन आपने देखे क्या?
0: देखिए डॉक्टर शर्मा, एक आकाशवाणी शिमला का समय होता था, तो जब रेडियो जो बंद हो जाता था लगभग में वो 1 बजे खुलता था, 12:30 बजे हम जलंधर को सुनते थे क्योंकि वहां से प्रोग्राम आता था और इतना क्लियर नहीं आता था। आज आकाशवाणी शिमला की इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई कि हर घर में FM से लेकर और प्राइमरी चैनल तक जो चीज आप सुनना चाहते हैं, जो चीज आप अपने जहन में ग्रहण करना चाहते हैं, वो सुविधा आज हम, हालांकि पहले भी थे, ऐसा नहीं है, पहले लोग थे वो ज्यादा शिक्षित नहीं थे, थोड़े मतलब शिक्षित तो थे पर इतने ज्यादा नहीं थे, उनकी बोली भाषा, एक रिड़कू राम जी आते थे
1: जी।
0: इतना अच्छा वो ज्ञान करते थे, और टॉकर जो है वो वार्तालाप करते थे कि गोपालू नहीं अंदाजी, वो गोपालू है वो बोलिया, गोपालू ऐसे ही बोलिया, तो मतलब वो अपना पूरा जो टाइम जो है उसमें लगाते थे, और सोचे भाई गोपालू उनके सामने बात कर रहा है, वो चीज भी हमने देखी। तो हीरा जानकी जी होते थे कृषि में, उनके भी हमने अनुभव ग्रहण किए हैं। उसके बाद जैसे

0: जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई और जी आकाशवाणी ने बहुत बड़ी तरक्की की और लोग इससे जो बिल्कुल जुड़े हैं। और मैंने तो ये भी देखा है डॉक्टर शर्मा के शहरों में मेरी बहुत बड़ी पहचान है, तो वो कहते हैं यार आप लोग तो आपका प्रसारण नहीं आ रहा, आप तो बहुत अच्छा बोलते हैं। वो हालांकि आज शहरों में भी रेडियो सुना जाता है, गाँव में तो सुना ही जाता है, जहाँ तक दूर दराज का क्षेत्र है वो तो एक ज्ञान का और मनोरंजन का एक रेडियो ही एक साधन है।
1: जी, तो आपने गोपालू की बात की तो मुझे भी याद आया कि जो हमारा चुंबियाली कार्यक्रम था उसमें कृष्ण कालिया जी ने ऐसा करेक्टर उन्होंने डेवलप कर दिया था।
0: अरे क्या बात
1: कि
0: क्या बात,
1: लोगों को ये बार बार चिट्ठियां आती थी कि कभी हमें गोपालू की आवाज भी सुनाइए,
0: गोपालू की आवाज भी। हाँ, तो जितनी भी उनका वो चलता था तो सोचे कि भाई गोपालू जो उनके सामने बैठा है बस भाई उनकी कहानियां, वो तो इतना अच्छा प्रस्तुति
1: जी
0: कालिया जी के लोकगीत,
1: क्या
0: क्या कृष्ण कालिया जी के लोकगीत इतने प्यारे, क्या उनकी सुरीली आवाज, क्या उनका वो था, तो मतलब वो दौर भी हमने देखा है।
1: जी जी, और देखिए ये तो एक निरंतर प्रवाह है जी, और हमारा भी यही प्रयास रहता है कि जो प्राचीन चीजें हैं उनको भुलाया ना जाए, उनका भी संरक्षण किया है। हमारे लोक संगीत में ऐसी ऐसी विधाएं हैं जिनको सजीव और प्राचीन रूप में हमने सजोने का प्रयास किया है।
0: बहुत अच्छा।
1: आप क्या समझते हैं कि आकाशवाणी ने हमारी लोक संस्कृति के प्रचार प्रसार और उसके संरक्षण में भी क्या योगदान आकाशवाणी का रहा है और आज है?
0: देखिए, जहां तक लोक संस्कृति की बात है, अब थोड़ा सा, क्योंकि मैं हर चीज में शौक रखता हूँ
1: जी,
0: अब लोक गायक जी हमारे हेतराम तनवर जी, आज वो है नहीं है, आज वो स्वर्ग में है, उनकी आवाज आज आकाशवाणी में एक पहचान है। और उनका परिवार कृतिका तनवर जी, उनकी पोती है आगे है
1: जी,
0: इतना अच्छा गाती है, इतना अच्छा गाती है कि मतलब मैं कह सकता हूँ कि परिवार में उन्होंने कहीं ना कहीं आगे कोई ना कोई अपना छाप छोड़ी है, है? बहुत से गायक कलाकार है, बहुत से ऐसी लोक संस्कृति में अगर आप ध्यान से देखें, ध्यान से, मैं तो ध्यान से सुनता हूँ भाई इस लोकगीत में इतिहास क्या है, क्या गा रहा है, क्या है इसमें है? और संगति क्या है, है? संगति के लिए इतने अच्छे अच्छे यहाँ कलाकार रहे कि मैं कह सकता हूँ कि एक हमारे लोक संस्कृति को इतने जीवित रखा है कि हम ये सोचे कि भाई सुनते ही रहे।
1: जी जी, तो प्राचीन जो लोक गायकों में जैसे तनवर साहब थे और भी पूरे जिला भर से बहुत
0: नहीं
1: प्राचीन रिकॉर्डिंग,
0: बहुत अच्छे लोग है, बहुत अच्छे लोग गायक कलाकार, बहुत अच्छे लोग है, अच्छी संस्कृति है।
1: हाँ। हा?
0: और जी पूरे क्षेत्र की वो अपनी अपनी गाथाएं जो है गाते हैं, इतिहास को याद करवाते हैं, मगर हम श्रोता क्या समझ पाते हैं कि वो क्या गा रहा है, क्या है इसके पीछे इतिहास, वो चीज है। ये नहीं है कि हमने सिर्फ एक सुना है कि जी लोग इसका, उसके पीछे इतिहास क्या है,
1: जी, जी।
0: वो गायक कलाकार क्या बोल रहा है,
1: जी।
0: किस क्षेत्र की वो गाथा गा रहा है, तो ये चीज हमारे श्रोताओं के मन में भी तो होनी चाहिए ना कि भाई हम क्या सुन रहे हैं। वैसे ही साहित्यकार, साहित्यकार में भी इतने अच्छे अच्छे कलाकार मैंने सुने, इतने अच्छे अच्छे कलाकार सुने। मैं कल की बात करूं, किसी ने मेरे कोई साइंटिस्ट या डॉक्टर केडी वर्मा जी, उन्होंने एक चीज कही कि जी महुनाग का कहीं मैंने आकाशवाणी से प्रसारण सुना और महुनाग का इतिहास बताया, मुझे उसकी जानकारी चाहिए थी, कौन है, क्या है, तो हमें अच्छा लगता। तो ऐसे लोग है, वरिष्ठ लोग है जो कि आकाशवाणी को सुनकर, इतिहास को सुनकर, जो आपके साहित्यकार है, कहानीकार कोई भी है, सुनते हैं और उसे ज्ञान अर्जित करते हैं। डॉक्टर हुकुम शर्मा, आकाशवाणी का बहुत बड़ा रोल।
1: जी, तो हमारा तो यही प्रयास रहा है कि ना केवल अपने जिला की बल्कि पूरे प्रदेश भर की जो हमारी लोक संस्कृति है, हमारी जो रीति रिवाज हैं, उनको हम सेज कर रखें, क्योंकि आज का जो दौर है सोशल मीडिया का दौर है, और एक वक्त था कि सिर्फ आकाशवाणी और केवल आकाशवाणी था, लेकिन आज तो बहुत से प्राइवेट चैनल्स आ गए हैं, ये प्रतियोगिता का दौर है। इसके अलावा मैं ये भी आपसे जानना चाह रहा था कि हमारे कार्यक्रमों में किस तरह से और अधिक नवीनता आप चाहते हैं या कोई परिवर्तन चाहते हैं आपके, ये चीजें भी कार्यक्रम में शामिल की जानी चाहिए, क्योंकि एक लंबा दौर, अब 90 वर्ष का एक बहुत बड़ा इतिहास हम कह सकते हैं कि हम समेटे हुए हैं अपने आप में, तो आज की प्रतियोगिता के दौर में क्या कुछ और नवीनता चाहते हैं?
0: आपके सारे कार्यक्रम अच्छे हैं। थोड़ा सा सुझाव देना चाहता हूं कि आपके एक फोन इन कार्यक्रम होते हैं, फोन से संबंधित, तो ये देश विदेशों से लोग जुड़ते हैं, है? तो थोड़ा सा एक आग्रह करना चाहता हूं कि जो आपको फोन करता है, आप उनसे कोई बात संवाद करते हैं, थोड़ा सा उनसे क्षेत्र का
1: परिचय देना चाहिए,
0: पर वो थोड़ा सा, तो मतलब ये चीज है कि जो एक कार्यक्रम होते हैं, थोड़ा सा आप श्रोताओं के विषय में और उनसे थोड़ा सा, हालांकि समय की कमी होती है, पर थोड़ा सा लोग थोड़ा सा वातावरण भूमिका बनाई जाए अच्छी, ताकि कौन आपसे बात कर रहा है, क्या उनका इतिहास है, क्या उसका क्षेत्र का वो है, तो ये थोड़ा सा मेरा एक सुझाव है। बाकी जितने भी आपके कार्यक्रम है ये प्रशंसनीय है, मतलब मैं इसमें कोई कमी नहीं कहता हूं, मैं आपके जो अधिकारी लोग हैं, जितने भी आपके अधिकारी लोग हैं, मैं उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने आकाशवाणी के लिए इतने एक अच्छे स्तर पे पहुंचाया है, जो कि शुरू तो आपने एक बांध के

0: तो कश्यप जी, आप वार्ताओं में या दूसरी डिस्कशंस में तो अक्सर आकाशवाणी और दूरदर्शन के कार्यक्रमों में भाग लेते रहते हैं। आपने कहा कि 60 साल का आपका रेडियो का अनुभव है सुनने का।
1: जी जी।
0: तो देखिए, हमारी जो एक विधा है लोक संगीत, तो क्या कभी इससे जुड़ने का भी मन नहीं किया? क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि मैं अपनी जो प्रतिभा है थोड़ा गाने के क्षेत्र में भी, रेडियो में भी गाऊं, हर व्यक्ति चाहता है। कभी आपने भी क्या प्रयास नहीं किया?
1: डॉक्टर शर्मा, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि मैं बचपन से लेकर जो है गाने का शौक रखता था। और जी, मैंने यहाँ पर एक ऑडिशन दी थी, उसमें थोड़ा चूक हो गई। शशि जी होते थे जो यहाँ म्यूजिक को देखते थे, तो शायद वो 15 गाने की एक लिस्ट होती थी, उसमें कोई एक लोकगीत मैंने ऐसा डाल दिया कि वो शायद पूरा मेरे से गाया नहीं जाता, कुछ याद नहीं था, परंतु उसी लोकगीत को पूछा गया और उसमें थोड़ी सी चूक हो गई, तो मैं पिछड़ गया। तो फिर मैं रेडियो से तो लगाव था ही, तो धीरे धीरे मैं यहाँ पर आ गया। मैंने सोचा कि चलो मैं कम से कम आकाशवाणी जाऊं, तो यहाँ पर मैं लगभग मैं 1990 से लेकर आकाशवाणी में मेरे, उसके बाद चड्डा जी आया। चड्डा जी ने, एक अनिल चड्डा जी जो छणकुराम के नाम से लोग बहुत ही फेमस थे, वो उनको इतना आकर्षण था, लोगों को, लोग इतना सुनते थे उनको कि जी छणकुराम की बात तो सुन ही लड़ी अनिल चड्डा जी, आज वो स्वर्ग में है। और उनके साथ भी मेरा बहुत लंबा अनुभव रहा है। और डॉक्टर शर्मा, मैंने रेडियो से बहुत कुछ सीखा है। मेरा आज कृषि का जो एक रिसर्च का विषय है, वो आकाशवाणी के माध्यम से हमने उन जानकारों से सीखा है। तो जब हमने सीखा है, उसको प्रैक्टिकली किया है, जो प्रैक्टिकली किया है, तो मेरे पास हिमाचल प्रदेश के कई कोने कोने से जो है किसान आते हैं, और मैं उनको मार्गदर्शन देता हूँ, और जो मैं कुछ टेक्नोलॉजी करता हूँ, मैं उसका प्रचार प्रसार करता हूँ, आकाशवाणी से करता हूँ, दूरदर्शन से करता हूँ, बहुत सी किताबें हैं जिसमें मेरे आर्टिकल छपे हैं। तो इससे मेरा भी एक माध्यम रहा है कि भाई अगर मुझे अगर कोई ज्ञान अर्जित हुआ है, तो मैं उसका प्रसार प्रसार कहीं से ना कहीं से करूँ, ताकि लोग उससे लाभान्वित हो सके।
0: क्योंकि आपका जो क्षेत्र है कृषि बागवानी है, और हमारे आकाशवाणी शिमला से भी किसान बागवान भाई बहनों के लिए विशेष कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है।
1: जी,
0: आप क्या समझते हैं कि क्या हम जो किसानों तक, बागवानों तक अपनी जो सूचनाएं हैं, उनका मनोरंजन का भी ध्यान रखना चाहिए, तो क्या हम इसमें कितने सफल हो पाते
1: हैं? नहीं, देखिए डॉक्टर साहब, इसमें कोई बोलने की बात क्या है। अरे आप इतना अच्छा प्रोग्राम करते हैं, जितना भी आपका सुनहरी किरण कार्यक्रम आता है, पहली बात तो ये कि खेती बाड़ी संबंधी सवेरे जब किसान ने उठना है, तो उसने ये देखना है कि भाई मैंने करना क्या है आज। तो सवेरे उठते ही बागवानी के विषय में जो है पहली जानकारी सवेरे उठते ही मिल जाती है, ठीक है। हम दिन में आराम करते हैं, अपना खाना खाते हैं, तो सुनहरी किरण कार्यक्रम आता है, उसमें पूरी जानकारी है जो विस्तार से दी जाती है, साथ में मनोरंजन भी होता है, लोकगीत भी उसमें सुनाया जाता है। शाम को जब हम सारा कार्य करते हुए अपने घर में आराम करते हैं, तो कृषि जगत कार्यक्रम शाम को आता है, जिसमें पूरी जानकारी काम की बातों से लेकर और विशेषज्ञों से लेकर और लोकगीत उसमें सुनाए जाते हैं। तो आकाशवाणी ने हर क्षेत्र का जो है ध्यान रखा है, और उसको हर तरह से खुशहाल कार्यक्रम बना के रखा है।
0: जी खेमचंद कश्यप जी, जैसे कि हमने शुरुआत में भी कहा था कि प्रसारण के 90 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं आकाशवाणी के।
1: जी जी।
0: हमारा श्रोताओं से वही एक नाता है, जैसे घर के आगे आंगन जो होता है, तो इन दोनों का आपस में कितना गहरा रिश्ता, एक कितना गहरा नाता होता है, वही हमारा और श्रोताओं का है। आप सरीखे श्रोता कार्यक्रम से जुड़े रहते हैं, और आपके मार्गदर्शन, आपके सुझाव भी आकाशवाणी को प्राप्त होते रहते हैं। बहरहाल, आज आपने अपने जो अनुभव है रेडियो के साथ, तो वो तमाम अनुभव साझा किए। आकाशवाणी स्टूडियोज में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद शर्मा जी, नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रसारण के 90 वर्ष के उपलक्ष्य पर प्रगतिशील किसान श्री खेमचंद कश्यप से भेंट वार्ता। भेंट करता थे डॉक्टर हुकुम शर्मा। ये कार्यक्रम आप हमारे हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ आकाशवाणी FM शिमला से भी सुन रहे थे। हम आकाशवाणी शिमला से बोल रहे हैं, कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

गुड इवनिंग, नमस्कार, तहे दिल से स्वागत है आप सभी का 103.7 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी एफएम शिमला पर, जहां हाजिर हैं हम आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर वही ढेर सारे तराने, कुछ नए तो कुछ पुराने, बिल्कुल भूले बिसरे गीत लेकर आई हूं मैं आप सभी के लिए। और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो हम सफ़र रेखा ठाकुर।

0: कार्यक्रम का आगाज जल्द ही करेंगे, लेकिन आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: गांव की पहचान होती है उसकी मजबूत पंचायत से, और पंचायत मजबूत बनती है आपके एक वोट से।
2: क्योंकि ईमानदारी और बिना किसी के प्रभाव में आए दिए गए आपके वोट ही तय होते हैं गांव, और बनती है सड़क, पानी, स्वच्छता और रोजगार संबंधी नीतियाँ।
1: इसीलिए 26 मई, 28 मई और 30 मई को होने वाले पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर अपनी भागीदारी निभाएं।
2: अपने परिवार और गांव वालों को भी जागरूक बनाएं और 100% मतदान के संकल्प को हासिल करने का लक्ष्य बनाएं।
1: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।
2: चुनाव सिर्फ एक शब्द नहीं, ये है सच्चे लोकतंत्र की नींव, और मतदान है एक जागरूक नागरिक की पहचान, जिसे इस्तेमाल कर वो तय करते हैं अपने क्षेत्र, राज्य और देश की दशा व दिशा।
1: तो आइए अपनी जिम्मेदारी निभाएं, आगामी पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लें और गांव के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।
2: आपका एक एक वोट तय करेगा पंचायत का भविष्य। तो निर्धारित तिथि को अपने नजदीकी मतदान केंद्र पर जाकर सोच समझ कर और बिना किसी प्रभाव के मतदान जरूर करें, क्योंकि ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारी ही नहीं अधिकार है।
1: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: गर्मी के इन दिनों में और ठंडी ठंडी रातों में, जी हाँ दिन में खूब गर्मी, लेकिन इस वक्त की अगर हम बात करें तो भाई शिमला में तो ठंडी ठंडी बूंदें जो है वो बरसी है और हमें गर्मी से बहुत राहत मिली है, और चाहते हैं कि यही राहत आप सभी को भी मिले। तो गीतों के माध्यम से भेज रहे हैं ठंडी ठंडी हवाएँ आप सभी के पास। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत मन्ना डे और लता मंगेशकर की आवाज़ों में, फिल्म चोरी चोरी से।

0: आपका गांव है आपका गर्व, इसको विकसित बनाने के लिए आइए मिलके मनाएं लोकतंत्र का पर्व।
1: हो चुकी है देवभूमि हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा। ये मतदान 3 चरणों में 26, 28 और 30 मई को होगा। ऐसे में आए एक सच्चा नागरिक बनकर मिलकर निभाएं जिम्मेदारी और भारी संख्या में मतदान देकर दिखाएं अपनी भागीदारी।
0: आपका हर एक कीमती वोट आपके गांव की दशा और दिशा तय करेगा, तो अपने मताधिकार का प्रयोग करना ना भूलें। राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। हमारा गांव है हमारी पहचान, हमारा गांव है हमारा अभिमान। आइए मिलकर दें इसके विकास में अपना योगदान।
1: हम सब ने ठाना है कि 100% मतदान के लक्ष्य को पाना है।
0: पंचायत चुनाव आ रहे हैं, जहां आपका हर ईमानदारी से दिया गया वोट तय करता है गांव की दशा और दिशा, साथ ही बनता है गांव के विकास का आधार।
1: तो 26, 28 और 30 मई को होने वाले पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और अपने परिवार और आस पास के हर वोटर को मतदान के लिए प्रेरित करे।
0: राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।

0: ब्रिज फिल्म से सुन रहे हैं आप 103.7 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी एफएम शिमला।
1: हिमाचल के युवाओं, अब सिर्फ सोशल मीडिया पर ओपिनियन देने का नहीं, वोट देने का भी वक्त आ गया है।
2: इस पंचायत इलेक्शन में 50 लाख से ज्यादा वोटर्स अपने मत का अधिकार इस्तेमाल करेंगे और हजारों फर्स्ट टाइम वोटर्स भी बनेंगे इस बदलाव का हिस्सा। 26 मई, 28 मई और 30 मई, याद रखिए ये तारीखें।
1: आपकी एक वोट आपके गाँव की सोच, विकास और लीडरशिप को तय करेगी। तो निकलिए घर से और बनिए जिम्मेदार नागरिक। पंचायत चुनाव 2026, वोट जरूर करें।

आपके दिल को दे सुकून। जी हाँ, एक ऐसा ही गीत भेज रहे हैं हम आप सभी के लिए आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में। अदालत फिल्म का ये गीत पेश है आकाशवाणी FM शिमला के साथ।

0: और गर्मी से राहत तो मिली ही होगी, लेकिन दिल को भी आपको ज़रूर सुकून मिलेगा। ये गीत संगीत का जादू ही जनाब कुछ ऐसा है। इसी प्यारे से नगमे के साथ भूले बिसरे गीत में अभी बस इतना ही। 103.7 MHz पर आप हैं आकाशवाणी FM शिमला के साथ। फिल्म संगीत में लेकर कुछ गीत हम जो है जल्द ही हाजिर हो रहे हैं। आप बने रहे हम शिमला के साथ।
1: हिमाचल में फिर से सज गया है लोकतंत्र का महापर्व, पंचायत चुनाव 2026।
2: 26, 28 और 30 मई को तीन चरणों में होने जा रहे हैं पंचायत इलेक्शंस, जहां आपकी एक वोट तय करेगी आपके गांव का कल।
1: सड़क, पानी, सफाई, रोजगार और गांव के विकास से जुड़े फैसलों में आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है।
2: इस बार बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए और चुनिएगा ईमानदार, योग्य और जिम्मेदार प्रतिनिधि। हिमाचल पंचायत इलेक्शंस 2026, मजबूत पंचायत, मजबूत हिमाचल।
0: गीत संगीत के जादू को रखते हैं बरकरार, तो आइए एक और प्यारा सा नगमा आप सभी के नाम सुखविंदर सिंह की आवाज में लीजिए, सुनिए अस्तित्व।

0: हिमाचल प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण हेतु वचनबद्ध है। आइए सुनते हैं माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का संदेश।
1: नमस्कार। विश्व पर्यावरण दिवस हमें प्रकृति के संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास करवाने का महत्वपूर्ण अवसर है। हिमाचल प्रदेश को प्रकृति ने सुंदर पहाड़, साफ पानी और शुद्ध हवा का अनमोल उपहार दिया है। आइए हम सब मिलकर अपने पर्यावरण को स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित बनाने का संकल्प लें। पेड़ लगाएं, पानी बचाएं और प्रकृति की रक्षा में अपना योगदान दे। स्वस्थ पर्यावरण ही आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य की सबसे

0: सबसे बड़ी पूंजी है। आइए प्रकृति से प्रेम करें और हिमाचल को हरियाली और स्वच्छता का आदर्श बनाएं। जय हिंद, जय हिमाचल।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जनहित में जारी।
2: लीजिए पेश एफएम शिमला की तरफ से एक और प्यारा सा गीत आप सभी के लिए, सोनू निगम अलका याग्निक की आवाजों में फिल्म अग्नि साक्षी से। गीत के बोल लिखे हैं समीर ने और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

0: गांव की पहचान होती है उसकी मजबूत पंचायत से, और पंचायत मजबूत बनती है आपके एक वोट से।
1: क्योंकि ईमानदारी और बिना किसी के प्रभाव में आए दिए गए आपके वोट ही तय होते हैं गांव, और बनती है सड़क, पानी, स्वच्छता और रोजगार संबंधी नीतियाँ।
0: इसीलिए 26 मई, 28 मई और 30 मई को होने वाले पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर अपनी भागीदारी निभाएं।
1: अपने परिवार और गांव वालों को भी जागरूक बनाएं और 100% मतदान के संकल्प को हासिल करने का लक्ष्य बनाएं।
0: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।
2: एक से बढ़कर एक गीत सुनते हैं आप 103.7 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ, और इन्हीं गीतों के साथ हम भी होते हैं आपके साथ। तभी तो कहते हैं ना कि आप कभी भी अकेले नहीं हैं, क्योंकि हर वक्त कोई ना कोई एफएम

0: पर है आपके साथ। तो आइए एक और प्यारा सा गीत सुनवा रहे हैं अमिताभ बच्चन लता मंगेशकर की आवाज़ों में, सिलसिला फिल्म का ये नगमा।
1: तुम होती तो वैसा होता, मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

0: ये रात है या तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है।
1: गीत इतने खूबसूरत है कि मन करता है इन्हें सुनते रहे, लेकिन क्या करें, घड़ी की सुइयां जो है वो हमें इशारा कर चुकी है और इसी गीत के साथ फिल्म संगीत में अभी बस इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं आकाशवाणी फिल्म शिमला के साथ। 8:45 होने को है आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। अब आप सुनेंगे समाचार संध्या। रात्रि 9 बजे आप सुनेंगे News@9। बने रहिए फिल्म शिमला के साथ, सुनते रहिए।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रौद्योगिकी और नागरिक भागीदारी सहित 4 स्तरीय सुरक्षा उपायों के साथ सीमा प्रबंधन में बड़े बदलाव की घोषणा की। कहा, अवैध प्रवासन पर अंकुश देश की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण। सरकार ने किसानों को बीज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और योग्य छात्रों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में। और आईपीएल क्रिकेट में दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटन्स तथा राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन, रडार और आधुनिक बाड़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
3: BSF की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। चतुष्कोण

0: के कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
1: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों को पर्याप्त बीज उपलब्ध कराने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया गया है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में उन्होंने उर्वरक वितरण में पारदर्शिता, कालाबाजारी की रोकथाम तथा किसानों को उचित आपूर्ति सुनिश्चित करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सरकार नकली कीटनाशकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है।
2: सबने मिलकर यह तय किया है कि जो घटिया पेस्टिसाइड है वो एक बड़ी समस्या है। बीज भी गुणवत्तापूर्ण मिले और घटिया पेस्टिसाइड, उस पर जितने सैंपल उठाना चाहिए उतने सैंपल उठाएं। लैब्स कई राज्यों में है लेकिन उनको परफेक्ट करने का काम करें। NABL प्रमाणित लैब वहाँ उन राज्यों में हो, इस पर भी व्यापक पैमाने पर चर्चा हुई है। हम लोग इस पर भी नकली के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, व्यापक अभियान चलाया जाए।
1: कृषि मंत्री ने बताया कि देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 376 करोड़ टन से अधिक हो गया है। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और ऊर्जा बचाने की अपील की।
3: सरकार सभी घरों तक LPG सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स से अपील है कि वो ऑथराइज प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
1: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ वाणिज्यिक पोत निसोस केरोस होरमूज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है और 3 जून तक इसके विशाखापट्टनम पहुंचने की आशा है। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग कल 5 दिन की भारत यात्रा पर आ रहे हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता में आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करने पर चर्चा होगी। भारत और अमरीका के बीच व्यापार वार्ता पर उन्होंने बताया कि अगले सप्ताह अमरीका के व्यापारिक दल के भारत आने की उम्मीद है। भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए गठित कार्य समिति की हाल की बैठक पर श्री जायसवाल ने कहा कि चर्चा रचनात्मक रही। दोनों पक्षों ने परिसीमन, सीमा प्रबंधन, कार्यतंत्र निर्माण और सीमा सहयोग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत में रह रहे सभी अवैध नागरिकों पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in।

0: या afcat.edcil.go.in पर।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। DD न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया।
2: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है हमारी ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है। जो रक्षक था वही भक्षक हुआ। जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है। उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने एक कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे। उनके षड्यंत्र के शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारी प्रयास।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। दिल्ली में 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के लिए परीक्षार्थी DTC की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट प्रवेश पत्र दिखाना होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनः मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। छठे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में बताया गया है कि भारत ने मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। 95.9% गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल मिली है। गर्भावस्था की पहली तिमाही में जांच कराने वाली महिलाओं की संख्या 70% से बढ़कर 76.2% हो गई है। भारत की कुल प्रजनन दर 2 बनी हुई है। 12 से 23 माह के 96% से अधिक बच्चों को जरूरी टीके लगाए गए हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसंख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने आज नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि इस एकेडमी की शुरुआत से संस्थान पारंपरिक मीडिया शिक्षा से आगे बढ़कर भविष्य की मीडिया तकनीकों पर काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि AI की जानकारी केवल बड़े शहरों के न्यूज रूम तक सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि पूरे भारत के मीडिया क्षेत्र तक पहुँचनी चाहिए। वाइस एडमिरल अजय कोचर ने आज 48वें नौसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। पुणे में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल अजय कोचर ने जुलाई 1988 में भारतीय नौसेना में कमीशन प्राप्त किया था। रिजर्व बैंक की बैलेंस शीट इस वर्ष मार्च के अंत तक 20.6% की वृद्धि के साथ

0: 96,97,000 करोड़ रुपए हो गई। रिजर्व बैंक की आज जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार ये बढ़ोतरी घरेलू निवेश तथा स्वर्ण और विदेशी निवेश में वृद्धि के कारण हुई है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है अमित गोयल।
1: घरेलू शेयर सूचकांकों में आज लगभग 1.5% की गिरावट दर्ज हुई। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 1092 अंक के नुकसान से 74,776 के स्तर पर रहा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 359 अंक की गिरावट से 23,548 के स्तर पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 70 पैसे की मजबूती से 95 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ।
0: मौसम विभाग ने कहा है कि देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भीषण गर्मी में कमी आई है और कल से मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में भी गर्मी कम होने की संभावना है। आज से 31 मई तक देश के उत्तर पश्चिमी, मध्य और पूर्वी हिस्सों में गरज के साथ आंधी वर्षा का अनुमान है। मध्य महाराष्ट्र और गुजरात में तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में ओलावृष्टि और आंधी तूफान की संभावना है। राजस्थान में भी धूल भरी आंधी की आशंका है। पाकिस्तान अपने मानवाधिकार रिकॉर्ड को लेकर लगातार आलोचना का सामना कर रहा है। मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर से पश्तून तहफूज मूवमेंट पीटीएम के कार्यकर्ता फरीदुल्ला अफरीदी को कथित रूप से जबरन अगवा किए जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी ने पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो ने मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में सात्विक और चिराग ने मलेशिया के कांग खई शिंग और आरोन ताई को हराया। न्यू चंडीगढ़ में आईपीएल क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक राजस्थान ने 15वें ओवर में 5 विकेट पर 137 रन बना लिए हैं। मैच की विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रौद्योगिकी और नागरिक भागीदारी सहित 4 स्तरीय सुरक्षा उपायों के साथ सीमा प्रबंधन में बड़े बदलाव की घोषणा की। कहा, अवैध प्रवासन पर अंकुश देश की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण। सरकार ने किसानों को बीज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन में सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो मिक्स डबल्स सेमीफाइनल में और आईपीएल क्रिकेट में दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटन्स तथा राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani. I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Home Minister Amit Shah announces major shift in border management leveraging technology and four-layered security involving citizens, says eradicating illegal immigration is vital to protect nation's demography. Government establishes national seed reserve of 1,74,000 quintals to ensure seed availability to farmers. Education Minister Dharmendra Pradhan assures strict action against examination mafias and protection for deserving students. Indian shuttlers Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty enter men's doubles semi-final of Singapore Open Badminton. Mixed doubles duo Dhruv Kapila and Tanisha Krasto also advance to semi-final. And in IPL cricket, crucial qualifier 2 match underway between Gujarat Titans and Rajasthan Royals in New Chandigarh. And now the news in detail. Union Home Minister Amit Shah has announced a major structural shift in border management with the introduction of a new quadripartite security grid. He said, securing our borders and eradicating illegal immigration is vital to protecting the nation's demography. He was addressing the troops and public gathering after inaugurating the strategically crucial G7 and G13 border outposts along the India-Pakistan border in Bhuj, Gujarat today.
3: We have decided to completely transform the concept.

स्वागत आप सभी का 103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ हाजिर हो चुके हैं आप सभी के लिए लेकर प्रोग्राम एक फिल्म से। कौन सी है हमारी आज की फिल्म, जानना चाहते हैं ना आप भी? तो लीजिए सुनिए और जानिए समझिए और फिर देखते हैं कितने लोग हैं, कितने हमारे श्रोता हैं जो इस फिल्म को पहचान पाते हैं। खैर फिर उस फिल्म के बारे में भी ज़रूर आपसे बातें करेंगे।

जी बिल्कुल दोस्तों, आज की हमारी फिल्म है जांबाज, जो कि रिलीज हुई थी सन 1986 में, जिसका निर्माण और निर्देशन किया था फिरोज खान ने। इसमें अनिल कपूर, डिंपल कपाड़िया जो है वो नजर आए थे। साथ ही आपको बताया कि फिल्म में दो भाइयों की कहानी दिखाई गई है, रणबीर सिंह और अमर सिंह। दोनों एक अमीर और प्रभावशाली परिवार से संबंध रखते हैं, लेकिन दोनों की सोच बिल्कुल अलग होती है। यहाँ पर एक बेटा जिम्मेदार और

0: परिवार की इज्जत को रखने वाला है और दूसरा बेटा जो है वो थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीने वाला है। अमर बिल्कुल बेफिक्र और रंगीन मिजाज का लड़का होता है और साथ में अपनी ज़िंदगी को सिर्फ अपने हिसाब से ही जीना चाहता है। उसके पिता हमेशा उसे नाराज़ रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अमर अपनी ज़िंदगी यूँ तो बर्बाद कर रहा है। कहानी के बारे में और भी जानकारी देंगे, लेकिन आइए संदेश के बाद।
1: चुनाव सिर्फ एक शब्द नहीं, ये है सच्चे लोकतंत्र की नींव, और मतदान है एक जागरूक नागरिक की पहचान, जिसे इस्तेमाल कर वो तय करते हैं अपने क्षेत्र, राज्य और देश की दशा व दिशा।
2: तो आइए अपनी जिम्मेदारी निभाएं, आगामी पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़ कर भाग लें और गांव के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।
1: आपका एक एक वोट तय करेगा पंचायत का भविष्य। तो निर्धारित तिथि को अपने नजदीकी मतदान केंद्र पर जाकर सोच समझ कर और बिना किसी प्रभाव के मतदान जरूर करें, क्योंकि ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारी ही नहीं अधिकार है।
2: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: पंचायत का भविष्य, तो निर्धारित तिथि को अपने नजदीकी मतदान केंद्र पर जाकर सोच समझ कर और बिना किसी प्रभाव के मतदान जरूर करें, क्योंकि ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारी ही नहीं अधिकार है।
1: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

अमर अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीने वाला लड़का है, लेकिन उसकी जिंदगी तब बदलती है जब उसकी मुलाकात रेशमा यानी कि डिंपल कपाड़िया से होती है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं और अमर जिंदगी में पहली बार किसी लड़की से सच्चा प्रेम करता है। दूसरी तरफ अमर के भाई ने अपनी प्रेमिका सीमा को खोने का दर्द अनुभव जो है वो झेला है, और शहर में साथ ही ड्रग्स और अपराध का नेटवर्क इतना फैल रहा होता है कि उसे इस कारोबार के खिलाफ खड़ा होना पड़ता है। लेकिन हालात तब बिगड़ते हैं जब अमर गलत लोगों के बीच फंसने लगता है। उसकी लापरवाही परिवार की इज्जत और रिश्तों पर असर डालने लगती है।

और राजेश चाहता है कि शहर से जो है वो नशे का कारोबार खत्म हो जाए, जिसके लिए वो दिन रात मेहनत करता है। इसी बीच उसे पता चलता है कि रेशमा का भाई उसी गैंग के लिए जो है वो काम करता है, जिस लड़की से अमर प्रेम करता है। दोनों भाइयों के बीच इस बात को लेकर बहस हो जाती है और आपस में दूरियां भी बढ़ जाती है। रेशमा को जब इस सच के बारे में पता चलता है तो वो टूट जाती है और अमर से दूर होने की कोशिश भी करती है। यही साथ शहर के पुराने गोदाम में अंतिम सौदा होने वाला होता है। चारों तरफ हथियार, पुलिस, धोखा और गोलियों की आवाजें। और यहाँ पर जो है दोस्तों क्लाइमैक्स देखने को मिलता है कि दोनों भाई पहली बार एक साथ खड़े होते हैं जुर्म के खिलाफ। इसी लड़ाई में अमर को गोली लग जाती है और जो है राजेश उसे संभालते हुए कहता है कि भाई तू बिगड़ा हुआ तो जरूर था लेकिन कभी बेवफा नहीं था।

यहीं रेशमा अमर का हाथ पकड़ती है और रोती है। तभी जो है अमर धीरे से आंखें खोलता है और कहता है कि इतनी आसानी से नहीं मरूंगा, अभी तुम्हारे साथ जिंदगी जो जीनी है। और कुछ महीनों बाद समंदर किनारे फिर से वही जगह, ठंडी हवा, और रेशमा और अमर एक साथ बिठाई देते हैं। साथ में जो है वो बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा होता है, जिस गीत को अभी आप

फिल्म के गीत, जी हाँ फिल्म के गीत जितने मशहूर उस वक्त थे आज भी उतने ही मशहूर हैं। और आपको बताएं कि फिल्म में आपको कलाकार नज़र आते हैं फिरोज़ खान, अनिल कपूर, डिंपल कपाड़िया, लेकिन इनके अलावा भी कुछ कलाकार थे जो कुछ समय के लिए ही से लेकिन नज़र आते हैं, जो कि थे रेखा और श्रीदेवी।

जांबाज फिल्म के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे थे, जो कि रिलीज हुई थी 1986 में। साउंड ट्रैक कल्याण जी आनंद जी द्वारा रचित था। इस फिल्म के गीत आज भी मन को भा जाते हैं। फिलहाल इसी के साथ प्रोग्राम में अभी बस इतना ही। सुन रहे हैं आप 103.7 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी FM शिमला। तो आइए दोस्तों, इस सफर में आगे बढ़ते हैं और अब आपके लिए पेश करते हैं दिल की आवाज़ भी सुन, कुछ बेहतरीन नगमे जो आपके दिल की आवाज़ को आपके अपनों तक ज़रूर पहुंचाएंगे। अनु मलिक, कुमार सानू, अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में पेश करने जा रहे हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत, हम आपके दिल में रहते हैं, फिल्म से।

ज़मीर फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना उदित नारायण की आवाज़ में। सुन रहे हैं आप दिल की आवाज़ भी सुन आकाश में फिल्म शिमला के साथ। एक और प्यारा सा गीत सुनवाने जा रहे हैं हम आप सभी को, तो आइए सुनते हैं अलग अलग फिल्म का ये नगमा किशोर कुमार की आवाज़ में। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने, संगीत दिया है आर डी वर्मन ने।

तभी आपने सुना अलग अलग फिल्म से। जी हाँ, किशोर कुमार की आवाज़ में इस गीत का आनंद आपने लिया हमारे साथ। कुछ ऐसे ही नगमे और भी लेकर आए हैं हम आप सभी के लिए, तो लीजिए एक और बढ़िया सा गीत सुनवाने जा रहे हैं हम आप सभी को, अमित कुमार, लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में आखिर क्यों फिल्म का ये नगमा।

आइए एक और प्यारा सा गीत आप सभी के नाम, जो प्यारे प्यारे लिसनर्स हमें सुन रहे हैं, तो आइए एक खूबसूरत सा नगमा पेश कर रहे हैं अनवर की आवाज़ में अर्पण फिल्म से ये गीत।

जी बिल्कुल, FM शिमला पर गीत ऐसे जो आपके मन को भा जाए और जिन्हें जब भी सुनो मन को सुकून दे के जाए, कुछ ऐसी ही गज़लें भी लेकर आए हैं हम आप सभी के लिए। तो आइए सफ़र में अब आगे बढ़ते हैं। ये खूबसूरत सा शानदार सा सफ़र आप और हम मिलके तय कर रहे हैं 103.7 MHz आकाशवाणी FM शिमला के साथ। तो आइए आगाज़ कर रहे हैं हम गुलाम अली की आवाज़ में इस गज़ल के साथ।

मिताली सिंह की आवाज़ में, जी हाँ, गज़लों में आज बस इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ, और हम और आप मिलके तय कर रहे हैं ये सफ़र। रात्रि के 10:30:25 हो चुके हैं। चलते चलते अब आप पहुँचे हैं उस पड़ाव पर जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं सदाबहार नगमे। तो आइए कुछ बेहतरीन, कुछ शानदार गीत आपको सुनवाते हैं हमारे साथ एफएम शिमला पर। मन्ना डे और लता मंगेशकर की आवाज़ों में कार्यक्रम का आगाज करने जा रहे हैं। गीत के बोल लिखे हैं मन्ना डे ने और संगीत दिया है शैलेंद्र ने।

शानदार सा गीत अभी आपने सुना। जी हाँ, मन्ना डे और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। गीत के बोल थे शैलेंद्र के और संगीत था शंकर जयकिशन का। आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे FM शिमला पर। तो आइए कार्यक्रम में पेश करने जा रहे हैं हम अगला गीत, सच्चा झूठा फिल्म से ये गीत। सुनिए मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में।

सदाबहार गीतों का आनंद आप ले रहे हैं एफएम शिमला पर। साथ साथ फिल्म का गीत पेश करने जा रहे हैं। आवाजें हैं जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की। गीत के बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने और संगीत दिया है कुलदीप सिंह ने। तो आइए सुनते हैं ये नगमा।

किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ों में गीत अभी आपने सुना शालीमार फिल्म से। जी हाँ, आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे 103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ। तो आइए पेश करने जा रहे हैं एक और नगमा हेमंत कुमार की आवाज़ में, सोलवा साल फिल्म से। गीत के बोल लिखे हैं मजरूह ने और संगीत दिया है एस टी वर्मन ने।

रोटी कपड़ा और मकान इस फिल्म के गीत के साथ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आवाज़ें थी लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों की। चलते चलते बस आपसे यही कहेंगे कि खुश रह कीजिए, अपना ख्याल रखिए। आपसे जल्द ही मुलाकात होगी आकाशवाणी एफएम शिमला पर। सुन रहे हैं आप 103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम शिमला। रात्रि के 11 बजने को हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। 11:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। बने रहिए एफएम शिमला के साथ, सुनते रहिए।

0: समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन रडार और आधुनिक बाढ़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
1: BSF की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BSF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। DD न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। दिल्ली में 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के लिए परीक्षार्थी DTC की बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट प्रवेश पत्र दिखाना होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को

नींद सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने आज नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि इस अकादमी की शुरुआत से संस्थान पारंपरिक मीडिया शिक्षा से आगे बढ़कर भविष्य की मीडिया तकनीकों पर काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि AI की जानकारी केवल बड़े शहरों के न्यूज रूम तक सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि पूरे भारत के मीडिया क्षेत्र तक पहुंचनी चाहिए। वाइस एडमिरल अजय कुचर ने आज 48वें नौसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। पुणे में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल अजय कुचर ने जुलाई 1988 में भारतीय नौसेना में कमीशन प्राप्त किया था। न्यू चंडीगढ़ में IPL क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी रहा। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान ने गुजरात को निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 215 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में ताज़ा समाचार मिलने तक गुजरात ने 15 ओवर में 2 विकेट पर 182 रन बनाए हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।